सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्र मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 31 अगस्त 2026। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं, हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: जीवन सौरभ।
1: एक गांव की चार महिलाएं कुएं पर पानी भरने गईं। पानी भरते समय चारों महिलाएं इधर उधर की बातें कर रही थीं। कुछ समय बात करने के बाद वे अपने बेटों की तारीफ करने लगीं। पहली महिला बोली, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है। वह संस्कृत विषय का बड़ा विद्वान हो गया है। बड़े से बड़ा ग्रंथ उसे मुंह जुबानी याद है और वह बड़े विश्वविद्यालय में नौकरी भी करने लगा है। वहीं दूसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने विज्ञान की पढ़ाई की है। वह वैज्ञानिक बन गया है और एक दिन सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा। तीसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने अच्छी शिक्षा ली है और वह शिक्षक बन गया है और दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है। चौथी महिला इन सब की बातें चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बाकी महिलाओं से रहा नहीं गया तो उन्होंने उस महिला से पूछा, बहन तुम भी तो बताओ कि तुम्हारा बेटा आजकल क्या करता है। इस पर चौथी महिला ने थोड़ा संकोच करते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, वह खेतों में काम करता है। ये सब बातचीत होने के बाद चारों महिलाएं पानी का घड़ा लेकर अपने अपने घरों को चली। तभी पहली महिला का बेटा आता दिखाई दिया। उसने अपनी माँ के साथ अन्य महिलाओं को नमस्कार किया और आगे चला गया। इसी तरह दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी रास्ते में मिले और सभी को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद चौथी महिला के बेटे ने जब रास्ते में अपनी माँ को सिर पर पानी का घड़ा लेकर आते देखा तो वह दौड़कर आया। उसके सिर से घड़ा उतारा और बोला, माँ तुम क्यों चली आई, मुझे कह दिया होता। यह कहकर वह घड़ा अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल दिया और तीनों महिलाएं देखती रह गईं।

0: श्रोताओं, जिंदगी में केवल किताबी ज्ञान ही काफी नहीं होता, बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। किताबी ज्ञान केवल हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है और उस ज्ञान का उपयोग हमें इस दुनिया में करना है, लेकिन हमारे व्यवहार के तौर तरीके तो हमें इस दुनिया से ही सीखने होते हैं।
1: जीवन सौरभ।

अभी आपने सुना जीवन सौरभ। आइए अब आपको बता देते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। आपसे ठीक बात सुनने का कार्यक्रम अक्षय निधि सूक्त नौ, और उसके बाद आनंद लीजिए भक्ति संगीत का।

रोजाना की तरह सुबह 8 बजे सुनिए कार्यक्रम वतन का राग। कन्हैया लाल दत्त की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का।

सुबह 8:30 पर सुनिए इस कार्यक्रम सुनो कहानी, विषम समस्या मुंशी प्रेमचंद की कहानी। कार्यक्रम स्वर है संदीप शर्मा का। कला कल्लोलिनी, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:00। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा दानिश खान और स्वाति गिरी का। हमारा विशेष कार्यक्रम भगवती चरण वर्मा की जयंती पर सुनिए सुबह 9:30 पर। दस बजे सुनिए परिक्रमा।

और 10:30 पर सुने आजाद हिंद। रतन सिंह पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम आजाद हिंद। शब्दों के शिल्पकार, यह कार्यक्रम सुनिए 11 बजे। अमृता प्रीतम की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। युग प्रवर्तक विवेकानंद, ये कार्यक्रम सुने सुबह 11:30 पर।

तो अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि एक विराम के बाद।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 9वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक, देवता है अग्नि और छंद है त्रिष्टुप।
1: नी होता होत्री शदने विदानस्त्वेशो दीदिवाम असदत्सु दक्षः अदब्ध व्रत प्रमतिर वसिष्ठः सहस्रं भरः शुचि जिह्वो अग्निः। हे अग्निदेव, होता मेधावी प्रदीप्त पोषक बलशाली तेजस्वी उत्तम बल से युक्त नियमों पर आरूढ़ आश्रयदाता हजारों का भरण पोषण करने में समर्थ तथा सत्यवक्ता हैं, ऐसे अग्निदेव होता के सदन में प्रतिष्ठित हों। त्वं दूतस्त्वं नः परस्पास्त्वं वस्य आवृषभ प्रणेता अग्ने तोकस्य नस्तने तनूना मप्रयुच्छन्दीद्य द्वो वधि गोपाः। हे बलशाली अग्निदेव, आप ही हमारे दूत तथा आप ही हमारे रक्षक हैं, आप धन प्रदाता हैं, अतः हमारी संतति को प्रमाद रहित तथा दीप्तिवान बनाकर हमारे कुल का विस्तार करें तथा भली भांति प्रज्वलित होकर हमारे शरीर की रक्षा करें। विधेम ते परमे जन्मन्नग्ने विधेम स्तोमै रवरे सधस्थे यस्माद्योने रुदारिथा यजे तं प्रत्वे हवींषि जुहुरे समिद्धे। हे अग्निदेव, आपके उत्पत्ति स्थान द्युलोक में हम स्तुतियों द्वारा आपका पूजन करें। द्युलोक से नीचे अंतरिक्ष में भी स्तुति युक्त वचनों से आपका पूजन करें और जहां आप प्रकट हुए हैं उस पृथ्वी लोक में यज्ञ में प्रज्वलित होने पर हविष्यान्न समर्पित करके हम आपका पूजन करें। अग्ने यजस्व हविषा यजीयान सृष्टि देशनमभि गृणीहि राधः त्वं ह्यसि रईपति रईणां त्वं शुक्रस्य वचसो मनोता। हे अग्निदेव, आप श्रेष्ठ याज्ञिक हैं, अतः स्वीकार करने योग्य हमारे उपयुक्त पदार्थ एवं धन हमें शीघ्र प्रदान करें। आप हमारी स्तुतियों पर ध्यान दें, आप धनाधिपति हैं। उभयम् तेन क्षीयते वसव्यम् दिवे दिवे जायमानस्य दस्म कृधि क्षुमन्तम् जरि तारमग्ने कृधि पतिम् स्वपत्यस्य रायः। हे दुखनाशक अग्निदेव, आपके द्वारा प्रदत्त दिव्य तथा पार्थिव दोनों प्रकार का धन कभी भी नष्ट नहीं होता, अतः आप स्तोताओं को यशस्वी बनाएं और उत्तम संतति युक्त धन प्रदान करें। सैनानीकेन सुविदत्रो अस्मे यष्टा देवाम आयजिष्ठः स्वस्ति अदब्धो गोपा उत नः परस्पा अग्ने दुमदुत रेवदिद्दीहि। हे अग्निदेव, आप अपनी तेजस्वी ज्वालाओं के द्वारा हमें उत्तम ऐश्वर्य से युक्त करें। आप किसी से भी तिरस्कृत न होने वाले उत्तम याज्ञिक देवताओं के पोषक तथा संकटों से पार करने वाले श्रेष्ठ रक्षक हैं। आप तेजस्वी, ऐश्वर्यवान तथा कल्याणकारी रूप में सर्वत्र प्रकाशित हों।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 9वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी।

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। अपनी स्वाधीनता के लिए क्रांति का वो समय केवल एक सामान्य जन आक्रोश नहीं था, बल्कि एक समृद्ध समुन्नत राष्ट्र के स्वप्न ने क्रांति का वो मार्ग प्रशस्त किया था। स्वाधीनता के उद्देश्य को लेकर कितनी ही विचारधाराएं जन्मी, संगठन बने, क्रांति का बिगुल बजा और हम आजाद हुए। बंगाल क्रांतिकारियों द्वारा गठित एक ऐसे ही प्रभावी संगठन का नाम था अनुशीलन समिति। इस समिति की स्थापना के समय जारी घोषणा पत्र से हम उन क्रांतिकारियों के विचार और उनके उद्देश्य को समझ सकते हैं। इस घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अनुशीलन की कल्पना के समाज में अनपढ़ और गरीब लोग नहीं होंगे, कायर, दुष्ट और अस्वस्थ लोग भी नहीं होंगे। ऐसे समाज के निर्माण के लिए सभी प्रकार की विषमताओं को समाप्त करना होगा। विषमता के बीच मानवता विकसित नहीं हो सकती, इसलिए मानव समाज से धन की विषमता, सामाजिक विषमता, सांप्रदायिक विषमता और प्रादेशिक विषमता दूर कर सभी मनुष्यों में समानता लानी होगी। केवल राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही ऐसा किया जाना संभव है। पराधीनता की दशा में अनुशीलन के स्वप्न के समाज की स्थापना संभव नहीं है, इसलिए अनुशीलन पराधीनता के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करती है। अनुशीलन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता चाहती है। एक पूर्ण विकसित स्वस्थ राष्ट्र के स्वप्न से जन्मी इसी अनुशीलन समिति के सदस्य थे प्रसिद्ध क्रांतिकारी कन्हई लाल दत्त। चंदन नगर, जो कि उन दिनों एक फ्रांसीसी उपनिवेश था, यहीं जन्माष्टमी की रात 31 अगस्त को उनका जन्म हुआ था। कन्हई जब 4 वर्ष के थे तभी उनके पिता उन्हें लेकर मुंबई आ गए थे, लेकिन 9 वर्ष की उम्र में वो वापस चंदन नगर आ गए और यहीं उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई। चंदन नगर के डुप्ले कॉलेज से उन्होंने स्नातक की परीक्षा दी थी। इसी कॉलेज के एक प्राध्यापक चारूचंद्र रॉय के सानिध्य में आकर ही उन्होंने क्रांति पथ को अपनाया। चंदन नगर में सबसे पहले क्रांति की योजना बनाने वाले थे संध्या के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय। कन्हई लाल दत्त उनके संपर्क में भी अपने प्राध्यापक के माध्यम से ही आए थे। 1905 में बंगाल विभाजन विद्रोही आंदोलन में कन्हई लाल दत्त ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और उसके नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से उनका मिलना हुआ। वे बहुत प्रभावित हुए। स्नातक की परीक्षा देने के बाद वे युगांतर कार्यालय में कार्य करने लगे, जिसे अरविंद घोष चलाते थे। कलकत्ता की अनुशीलन समिति से संपर्क के बाद कन्हई लाल दत्त ने न सिर्फ उसकी सदस्यता ली, बल्कि उसकी एक शाखा भी अपने घर में स्थापित की। इन शाखाओं में व्यायाम तथा लाठी आदि चलाने की शिक्षा दी जाती थी। बाहर से देखकर कोई उसे विप्लवी समिति की शाखा नहीं समझ सकता था। इस तरह कन्हई लाल दत्त ने विप्लवी बनने की दीक्षा अमावस की एक रात वटवृक्ष के तले ली और इस मार्ग पर कभी न रुकने का संकल्प लेकर वो चलते गए।

अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड पर आक्रमण किया। इस बम कांड के बाद अंग्रेजों की नींद हराम हो गई। सारा अंग्रेजी शासन चौकन्ना हो गया। संदिग्ध लोगों की खोज प्रारंभ हुई। काफी दौड़ धूप के बाद पुलिस को मालूम हुआ कि इन क्रांतिकारियों का अड्डा मानिक तल्ला के एक बागीचे में है। ये बागीचा अरविंद घोष के भाई सिविल सर्जन डॉक्टर वारिंद्र घोष का था। क्रांतिकारी गुप्तचरों से अनभिज्ञ थे। इसका परिणाम ये हुआ कि गुप्तचर विभाग को सफलता मिली। उसने देश के सर्वप्रथम बम षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। इसमें बागीचे के मालिक वारिंद्र घोष, उनके भाई अरविंद घोष और कन्हैयालाल दत्त सहित लगभग 35 देशभक्त बंदी बना लिए गए। सभी बंदियों को अलीपुर कारागार में रखा गया और वहीं इन क्रांतिकारियों पर अभियोग चलाया गया। इसी कारण इस अभियोग का नाम अलीपुर षड्यंत्र रखा गया। इस अभियोग में नरेंद्र गोस्वामी नाम का एक व्यक्ति भी बंदी बनाया गया था, जिसने सरकारी गवाह बनना स्वीकार कर लिया था। उसके इस देशद्रोह से क्रांतिकारियों के रहे सहे प्रयत्नों पर भी पानी फिर जाने की आशंका होने लगी। सरकार ने नरेंद्र गोस्वामी को 2 सरकारी अंगरक्षक दे दिए थे। उधर कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बसु जेल में ही इस देशद्रोही को सबक सिखाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने सबसे पहले जेल के अधिकारियों से घनिष्ठता बढ़ाई। परिणामस्वरूप मछली और कटहल के बीच छुपाकर भेजी गई 2 पिस्तौल प्राप्त करने में वे सफल हो गए। ये पिस्तौल किन लोगों के सहयोग से उन्हें भेजी गई, ये आज भी एक रहस्य है। सितंबर महीने की वो तिथि नजदीक आ रही थी जिस दिन नरेंद्र गोस्वामी को अपना वक्तव्य देना था। दोनों ने इस वक्तव्य से पहले ही नरेंद्र गोस्वामी को समाप्त करने की योजना बना ली थी। समस्या थी 2-2 अंगरक्षकों के होते हुए भी नरेंद्र गोस्वामी तक पहुंचना। लेकिन दोनों का संकल्प दृढ़ था कि चाहे जो परिणाम हो, भविष्य में चलाई जाने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों की रक्षा के लिए नरेंद्र गोस्वामी को रोकना ही होगा, चाहे देश हित में उन्हें अपने प्राणों का उत्सर्ग ही क्यों न करना पड़े।

अनुशीलन समिति का उद्देश्य भारत की पूर्ण स्वाधीनता इन दोनों क्रांतिकारियों के जीवन का परम लक्ष्य था। इन दोनों ने एक नाटक रचा। पहले सत्येंद्र बसु बीमार बनकर अस्पताल में भर्ती हुए, फिर यही नाटक कन्हैयालाल दत्त ने भी किया। दोनों ने वहां से नरेंद्र गोस्वामी को संदेश भेजा कि वे जेल के जीवन से बिल्कुल ऊब गए हैं और उसी की तरह सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। नरेंद्र इस बात से प्रसन्न हो गया कि उसके साथ दो और लोग जुड़ गए। कुछ दिनों बाद वे परस्पर मिलकर योजना बनाने लगे, विचार विमर्श करने लगे कि अदालत में किस तरह का वक्तव्य देंगे। इस तरह जेल में तीनों की मुलाकात रोज होने लगी। धीरे धीरे वो तिथि पास आने लगी जब उन्हें ये वक्तव्य देना था। 31 अगस्त सन 1909 के दिन भी नरेंद्र गोस्वामी रोज की तरह कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बसु से मिलने आया। वो खड़ा खड़ा बात कर ही रहा था कि उसका अंगरक्षक किसी काम से दूसरी तरफ गया। तभी सत्येंद्र ने सिरहाने रखी पिस्तौल से मुखबिर नरेंद्र पर वार किया। गोली उसके पैर में लगी पर वो गिरा नहीं। तभी सत्येंद्र ने दूसरी गोली चलाई। इस बीच एक अंग्रेज अंगरक्षक ने सत्येंद्र का हाथ पकड़ना चाहा, पर तीसरी गोली ने उसे घायल कर दिया। वो हट गया। नरेंद्र गोस्वामी जान बचाने के लिए वहां से चिल्लाता हुआ भागा। जेल में कोहराम सा मच गया। तब तक कन्हैयालाल दत्त भी अपनी पिस्तौल लेकर आ चुके थे। दोनों ने उसका पीछा किया। वो एक कक्ष से दूसरे कक्ष होता हुआ गेट से बाहर निकलकर आंखों से ओझल होने लगा था कि गेट के सिपाही ने संकेत से बता दिया कि वो किस दिशा में गया है, और दोनों ने उसके निकट पहुंचकर उसे मार गिराया। ये समाचार चारों ओर फैल गया। उधर ब्रिटिश शासन ने अपने अगले नाटक की तैयारी की। अदालत, अभियोग, साक्षी, वाद विवाद और अंत में दंड विधान, प्राण दंड। दोनों को अपने कार्य की सफलता की इतनी प्रसन्नता थी कि अभियोग चलकर फांसी पर जाने के दिन तक उन दोनों का वजन 16 पौंड बढ़ गया। कन्हैयालाल दत्त को 10 नवंबर 1909 को फांसी देने का दिन तय किया गया, जबकि सत्येंद्र बसु को इसके 2 दिन बाद। फांसी से पहले जब कन्हैयालाल दत्त के भाई उनसे मिलने जेल आए तो उसी दिन उनका बीए का परीक्षा परिणाम सामने आया था, जिसमें वो बहुत अच्छे अंकों से पास हुए थे। भाई ने जब इस परिणाम की चर्चा की तो कन्हैया ने कहा, उस उपाधि पत्र को मेरे साथ फांसी पर लटकवा देना। मात्र 20 वर्ष की आयु में फांसी पर लटकाए जाने के बाद जब कन्हैयालाल दत्त की शव यात्रा निकली तो लाखों नर नारी रोते बिलखते इसमें शामिल हुए। ये शव यात्रा बंगाल के इतिहास में चिरस्मरणीय बन गई। इसे देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने सत्येंद्र बसु के पार्थिव शरीर को जेल से बाहर नहीं जाने दिया। जेल में ही उनकी अंत्येष्टि करने के लिए उनके परिजनों को विवश किया गया। नमन देश के ऐसे महान वीर सपूतों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: यूनियन नामक जुड़वा जहाज, एक कॉरपोरेट गृह युद्ध की कहानी। क्या आप जानते कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में समुद्र की लहरों पर एक अजीब संयोग देखने को मिला था? दो कट्टर प्रतिद्वंदी कंपनियों के पास दो बिल्कुल एक जैसे जहाज थे और दोनों का नाम था यूनियन। ये जहाज बनाने वालों की कोई गलती या कल्पना की कमी नहीं थी, बल्कि ये जुड़वा जहाज अंग्रेजी मसाला व्यापार के अस्तित्व को बचाने के लिए की गई एक हताशा का प्रतिनिधित्व करते थे। इस भ्रम को समझने के लिए आपको उस कॉरपोरेट गृह युद्ध को देखना होगा जिसने लंदन शहर को दो हिस्सों में बांट दिया था। लगभग एक सदी तक पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण एकाधिकार का आनंद लिया था, लेकिन 1690 के दशक तक उन्हें उन राजनेताओं और व्यापारियों ने घेर लिया जो उनके विशेष अधिकारों को एक असंवैधानिक अवशेष मानते थे। क्या आप जानते हैं कि ये प्रतिद्वंदिता कितनी तीव्र थी? दोनों कंपनियों ने केवल काली मिर्च के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ तोड़फोड़ का युद्ध छेड़ दिया। सूरत में नई कंपनी की कौंसिल सर निकोलस वेट ने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर पुरानी कंपनी के अध्यक्ष सर जॉन गियर को 9 साल तक जेल के एक गंदे छेद में बंद रखा। हिंद महासागर के पार दोनों फर्मों के एजेंटों ने स्थानीय राजाओं के सामने एक दूसरे को चोर और समुद्री डाकू घोषित कर दिया, जबकि उनके कर्मचारी एक दूसरे को कालकोठरी में फेंक रहे थे। लंदन में बैठे निदेशकों ने जब अपने बैंक खातों को देखा तो वे कांप गए। इस आंतरिक युद्ध की लागत अनुमान से अधिक थी। इसके अलावा फ्रांस के साथ एक नया युद्ध, वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन, करीब आ रहा था और ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि रॉयल नेवी दो विभाजित और झगड़ालू बेड़ों की सुरक्षा का खर्च नहीं उठा सकती। दोनों कंपनियों को एहसास होने लगा कि अगर वे विलय नहीं करती हैं तो दोनों दिवालिया हो जाएंगी। अतीत में उन्होंने स्पीड वेल या ट्रेड्स इंक्रीज जैसे आशावादी नाम चुने थे। अब दोनों ने यूनियन नाम से एक जहाज का निर्माण कराया जो इस बात का संकेत था कि विलय ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अप्रैल 1702 में अंततः इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूनियन पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन यहां सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि यूनियन ने वास्तव में भ्रम को समाप्त नहीं किया? 7 साल की संक्रमण अवधि के लिए तकनीकी रूप से एक साथ 3 कंपनियां काम कर रही थी, पुरानी नई और नई बनी यूनाइटेड कंपनी, जो अपने अलग अलग ऋणों को निपटाने की कोशिश कर रही थी और एक ही जहाज साझा कर रही थी। बंगाल में इसने पूर्ण भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, जहां दो प्रतिद्वंदी अध्यक्ष हर हफ्ते बारी बारी से गवर्नर की कुर्सी पर बैठते थे। दो जहाज जिनका नाम यूनियन था, उस समय के प्रमाण हैं जब व्यापारिक लालच ने एशिया में ब्रिटिश उपस्थिति को लगभग नष्ट कर दिया था। केवल जहाज के पतवार पर लिखा वह हताश नाम उस यूनाइटेड कंपनी की ओर इशारा कर रहा था जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य पर राज करने वाली थी।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुना रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखी कहानी विषम समस्या।

मेरे दफ्तर में चार चपरासी थे। उनमें से एक का नाम गरीब था, बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, घुड़कियां खाकर चुप रह जाने वाला, यथा नाम तथा गुण गरीब मनुष्य था। मुझे इस दफ्तर में आए साल भर हो गया था, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया था। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी दरी पर बैठे हुए देखने का ऐसा आदी हो गया था मानो वो भी इस इमारत का कोई अंग है। इतना सरल है कि किसी की बात टालना जानता ही न था। एक चपरासी मुसलमान था, उससे सारा दफ्तर डरता था, मालूम नहीं क्यों। मुझे तो उसका कारण सिवाय उसकी बड़ी बड़ी बातों के कुछ और नहीं मालूम होता। उसके कथनानुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में कोतवाल थे। उसे सर्वसम्मति ने काजी साहब की उपाधि दे रखी थी। शेष 2 महाशय जाति के ब्राह्मण थे। उनके आशीर्वाद का मूल्य उनके काम से कहीं अधिक था। ये तीनों कामचोर, गुस्ताख और आलसी थे। कोई छोटा सा काम भी करने को कहिए तो बिना नाक भौं से कोड़े न करते थे। क्लर्कों को तो कुछ समझते ही न थे, केवल बड़े बाबू से कुछ डरते, यद्यपि कभी कभी उनसे भी बेअदबी कर बैठते थे। मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं थी जितनी बेचारे गरीब की। तरक्की का अवसर आता तो ये तीनों नंबर मार ले जाते। गरीब को कोई पूछता भी ना था और सब 10-10 रुपए पाते थे, पर बेचारा गरीब 7 रुपए पर ही पड़ा हुआ था। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते थे। यहां तक कि तीनों चपरासी भी उस पर क्रोध जताते और ऊपर की आमदनी में उसे कोई भाग न देते। तिस पर भी दफ्तर के सब कर्मचारी से लेकर बड़े बाबू तक उससे चिढ़ते थे। उसको कितनी ही बार जुर्माना हो चुका था और डांट फटकार तो नित्य का व्यवहार था। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मुझे उस पर दया आती थी और अपने बर्ताव से मैं ये दिखाना चाहता था कि उसका आदर मेरी दृष्टि में अन्य तीनों चपरासियों से कम नहीं है। यहां तक कि कई बार मैं उसके पीछे कर्मचारियों से लड़ भी चुका था। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। वो तुरंत मेज साफ करने लगा। दैव योग से झाड़न का झटका लगा तो दवात उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू ये देखते ही आपे से बाहर हो गए। उसके दोनों कान पकड़कर खूब बैठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत सुनता था, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बड़े बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने उससे भी बड़ा अपराध किया होता तो भी उस पर इतना कठोर वज्र प्रहार ना होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब

0: मानिए बड़ा पोढ़ा आदमी है और बला का मक्खी चूस। यदि ऐसा ही हो तो भी कोई अपराध नहीं है। अभी कुछ आप यहां दिन और रहिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये कितना कमीना आदमी है।
1: एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर मनो दूध होता है, मनो जुआर चना मटर होती है, लेकिन इसकी कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि थोड़ी सी दफ्तर वालों को भी दे दे। यहां इन चीजों के लिए तरस तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों ना जी जले। और ये सब कुछ इसी नौकरी की बदौलत हुआ है, नहीं तो इसके घर में भूनी भांग तक न थी।
0: बड़े बाबू सकुचाकर बोले, ये कोई बात नहीं, उसकी चीज है, चाहे किसी को दे या ना दे।
1: मैं इसका मर्म कुछ कुछ समझ गया और बोला, यदि ऐसे तुच्छ हृदय का आदमी है तो वास्तव में पशु ही है, मैं ये न जानता था। अब बड़े बाबू भी खुले, संकोच दूर हुआ तो बोले, इन बातों से उबार तो होता नहीं, केवल देने वाले की सहृदयता प्रकट होती है और आशा भी उसी से की जाती है जो इस योग्य है। जिसमें कुछ सामर्थ्य ही नहीं उससे कोई आशा भी नहीं करता, अरे नंगे से कोई क्या लेगा। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे कोई आशा नहीं रखते, कदाचित हम उसे भूल जाते हैं, किंतु वे सामर्थ्यवान होकर हमें न पूछें, हमारे यहां तीज और चौथ न भेजें, तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। हम अपने किसी निर्धन मित्र के पास जाएं तो उसके एक बीड़े पान पर ही संतुष्ट हो जाते हैं, पर ऐसा कौन मनुष्य है जो किसी धनी मित्र के घर से बिना जलपान किए हुए लौटे और सदा के लिए उसका तिरस्कार न करने लगे। सुदामा कृष्ण के घर से यदि निराश लौटते तो कदाचित वे उनके शिशुपाल और जरासंध से भी बड़े शत्रु होते। कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा, क्यों जी तुम्हारे घर कुछ खेती बारी होती है? गरीब ने दीन भाव से कहा, हाँ सरकार होती है, आपके दो गुलाम हैं वही करते हैं। मैंने पूछा, गाय भैंसे लगती हैं? हाँ हुजूर दो भैंसे लगती हैं, गाय अभी गाभिन है, आप लोगों की दया से पेट की रोटियां चल जाती हैं। दफ्तर के बाबू लोगों की भी कभी कुछ खातिर करते हो? गरीब ने दीनतापूर्ण आश्चर्य से कहा, हुजूर मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूं, खेती में जौ चना मक्का जुआर घास पात के सिवाय और क्या होता है, आप लोग राजा हैं, ये मोटी झोटी चीजें किस मुंह से आपको भेंट करूं। जी डरता है कि कहीं कोई डांट ना बैठे कि टके से आदमी कितनी मजाल, इसी मारे बाबूजी कभी हियाव नहीं पड़ता, नहीं तो दूध दही की कौन सी बिसात थी, मुंह के लायक बीड़ा तो होना चाहिए। भला एक दिन कुछ लाके तो देखो, देखो लोग क्या कहते हैं, शहर में ये चीजें कहां मयस्सर होती हैं, इन लोगों का जी भी तो कभी कभी मोटी छोटी चीजों पर ललचाया करता है। और जो सरकार कुछ कहे तो, कहीं साहब से शिकायत कर दे तो मैं कहीं का ना रहूं। इसका मेरा जिम्मा है, तुम्हें कोई कुछ ना कहेगा, कोई कुछ कहेगा भी तो मैं समझा दूंगा। हुजूर आजकल तो मटर की फसल है और कोल्हू भी खड़े हो गए हैं, इसके सिवाय तो और कुछ भी नहीं है, बस तो यही चीजें लाओ, कुछ कुछ उल्टी सीधी पड़ी तो आपको ही संभालना पड़ेगा। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ तीन हष्ट पुष्ट युवक भी थे। दो के सिरों पर दो टोकरियां थीं, उनमें मटर की फलियां भरी हुई थी, एक के सिर पर मटका था जिसमें ईख का रस था। तीनों युवक ईख का एक एक गट्ठा कांख में दबाए हुए थे। गरीब आकर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में उसे आने का साहस नहीं होता था, मानो कोई अपराधी है। वृक्ष के नीचे खड़ा ही था, कितने में दफ्तर के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। कोई ईख लेकर चूसने लगा, कई आदमी टोकरों पर टूट पड़े। इतने में बड़े बाबू भी दफ्तर में आ पहुंचे। ये कौतुक देखकर उच्च स्वर से बोले, ये क्या भीड़ लगा रखी है, चलो अपना अपना काम देखो। मैंने जाकर उनके कान में कहा, गरीब अपने घर से सौगात लाया है, कुछ आप लीजिए कुछ हम लोगों को बांट दीजिए। बड़े बाबू ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, क्यों गरीब तुम ये चीजें यहां क्यों लाए, अभी लौटा ले जाओ, नहीं तो मैं साहब से कह दूंगा, क्या हम लोगों को मरभुख समझ रखा है। गरीब का रंग उड़ गया, थर थर कांपने लगा, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, मेरी ओर अपराधी नेत्रों से ताकने लगा। मैंने अपनी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। अब चीजों में से आधी अपने घर भिजवाई, आधी में अन्य लोगों के हिस्से

लगाए। इस प्रकार यह अभिनय समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का मान होने लगा। उसे नित्य घुड़कियां न मिलती, दिन भर दौड़ना न पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग और सहवर्गियों के कटुवाक्य न सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। वो गरीब से गरीब दास बना। स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ, तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। अब वो कभी कभी देर में दफ्तर आता है, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठा रहता है। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया। अब वो 10वें-5वें दिन दूध दही आदि लाकर बड़े बाबू को भेंट किया करता। वो देवता को संतुष्ट करना सीख गया। सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आ गया। एक रोज बड़े बाबू ने उसे सरकारी फर्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे, ठेले पर आए। गरीब ने ठेले वालों से 12 आना मजदूरी तय की थी। जब कागज दफ्तर में पहुंच गए तो उसने बाबू से 12 आने पैसे ठेले वालों को देने के लिए वसूल किए। लेकिन दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली, अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राजी न हुए। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमका कर बोला, अब एक फूटी कौड़ी ना दूंगा, चाहे जहां जाओ फरियाद करो, देखें हमारा क्या बिगाड़ लेते हो। ठेले वालों ने जब देखा कि भेंट न देने से जमा ही गायब हुई जाती है, तो रो धोकर 4 आने पैसे देने को राजी हुए। गरीब ने 8 उनके हवाले की और 12 आने की रसीद लिखवाकर उनके अंगूठों के निशान लगवाए और रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। वो कौतूहल देखकर मैं दंग रह गया। ये वही गरीब है जो कई महीने पहले सत्यता और दीनता की मूर्ति था, जिसे कभी अन्य चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न होता, दूसरों को खिलाना भी न जानता था, खाने का जिक्र ही क्या। मुझे यह स्वभाव अंतर देखकर अत्यंत खेद हुआ। इसका उत्तरदायित्व किसके सिर था? मेरे सिर। मैंने उसे धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस काइयापन से जो दूसरों का गला दबाता है वो भोलापन क्या बुरा था? जो दूसरों का न्याय सह लेता था वो अशुभ मुहूर्त था, जब उसे मैंने प्रतिष्ठा प्राप्ति का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वो उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने बाह्य प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया।

0: तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विषम समस्या। सुनो कहानी के अगले अंक में फिर किसी और कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: बॉम्बे बॉक्स वर्क, रेशमी मोज़ेक, फारसी जड़ें और ब्रिटिश मार्केटिंग। 19वीं सदी के व्यापारिक कैटलॉग के शांत अभिलेखागार में अक्सर एक जिज्ञासु शब्द मिलता है, बॉम्बे बॉक्स वर्क। एक सामान्य दर्शक के लिए ये ज्यामितीय पैटर्न की एक चमकती हुई सम्मोहक त्वचा की तरह दिखता है। हाथी दांत, सींग और विपरीत लकड़ियों का सूक्ष्म मोज़ेक, जो दस्ताने के बक्से, राइटिंग डेस्क और कार्ड केस पर लिपटा होता है। हालांकि नाम से ये विशुद्ध रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक आविष्कार लगता है, लेकिन इस कला का इतिहास फारसी उत्पत्ति, भारतीय शिल्प कौशल और शाही रीब्रांडिंग की एक कहानी है। भारत में इस तकनीक को सादेली के नाम से जाना जाता था, जो बॉम्बे में ब्रिटिश उपस्थिति से कहीं अधिक पुरानी थी। इसकी उत्पत्ति फारस के शिराज और इस्फहान शहरों में हुई थी, जहां इसे खम्बात बंदी कहा जाता था। ये प्रक्रिया बेहद सटीक और धैर्यपूर्ण थी। शिल्पकार हाथी दांत प्राकृतिक या हरे और लाल रंग में रंगे हुए आबनूस और चंदन की सैकड़ों पतली छड़ों को गोंद का उपयोग करके बंडलों में बांधते थे। इन बंडलों को फिर अविश्वसनीय रूप से पतली परतों में काटा जाता था, जिन्हें लकड़ी के आधारों पर चिपकाया जाता था। यहाँ एक मुख्य अंतर था। जहाँ फारसी कारीगर अपने रूपांकनों को रेखांकित करने के लिए पीली धातु यानी पीतल का उपयोग करते थे, वहीं भारतीय कारीगर टिन या चांदी के तार को प्राथमिकता देते थे। ये शिल्प राजनीतिक अशांति से भाग रहे पारसी समुदायों के साथ अरब सागर पार कर भारत आया, पहले सिंध पहुंचा और अंततः 18वीं शताब्दी के मध्य तक सूरत के व्यस्त बंदरगाह तक पहुंचा। दशकों तक सूरत इस उद्योग की असली धड़कन बना रहा, यहां तक कि जब ब्रिटिश राजनीतिक और सैन्य शक्ति बॉम्बे द्वीप की ओर स्थानांतरित हो गई, तब भी विशेषज्ञ कारीगर सूरत में ही रहे। ब्रिटिश अधिकारी वर्षों तक शिकायत करते रहे कि जब कच्चा हाथी दांत बॉम्बे में उतारा जाता था, तब भी उसे काम के लिए वापस सूरत भेजना पड़ता था, क्योंकि वहां शिल्प नेटवर्क की स्थानीयता इतनी गहरी थी। बॉम्बे बॉक्सवर्क नाम में संक्रमण ब्रिटिश मार्केटिंग का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने साम्राज्य के बदलते समय को प्रतिबिंबित किया। जैसे जैसे बॉम्बे एक औपनिवेशिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, ये इन वस्तुओं के पश्चिमी बाजारों तक पहुंचने का प्राथमिक आउटलेट बन गया। विक्टोरियन यात्री इन बक्सों से मंत्रमुग्ध थे, उन्हें प्रामाणिक भारतीय कलाकृतियों के रूप में देखते थे। ये शिल्प 1851 की महान प्रदर्शनी में अपने चरम पर पहुंचा, जहां बॉम्बे में बने इन कलात्मक वस्तुओं ने पदक जीते और अंततः महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली के लिए एक भव्य विस्तृत बॉक्स तैयार किया गया। इस सुंदरता के पीछे एक जटिल वैश्विक व्यापार नेटवर्क था। सादेली में उपयोग किए जाने वाले हाथी दांत की मांग ने हाथी दांत कपास यूरोबोस को चलाने में मदद की। एक वाणिज्यिक सर्किट जहां अफ्रीकी हाथी दांत के बदले भारतीय कपड़ों का व्यापार किया जाता था, ताकि गुजरात की कार्यशालाओं का पेट भरा जा सके। आज बॉम्बे बॉक्सवर्क एक मृत शब्द है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सेल्यूलाइड प्लास्टिक के उदय और बाद में हाथी दांत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ये उद्योग ध्वस्त हो गया। फिर भी ये नाम इस बात का भाषाई अवशेष बना हुआ है कि कैसे अंग्रेजों ने एक जीवंत प्राचीन फारसी भारतीय परंपरा पर अपने स्वयं के प्रशासनिक लेबल सफलतापूर्वक थोप दिए।

0: यामादा नागामासा, अयोध्या का मर्चेंट मर्सिनरी, व्यापारी किराए का सैनिक। 17वीं शताब्दी के सियाम, आज का थाईलैंड की राजधानी अयोध्या के व्यस्त बंदरगाह में एक व्यक्ति एक ही समय में कई भूमिकाएं निभा सकता था। दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी किस्मत आजमाने वाले जापानी साहसी यात्रियों में यामादा नागामासा से बेहतर इस लचीलेपन का उदाहरण कोई और नहीं है। नागामासा जापानी शुइंजो या लाल मुहर पास प्रणाली द्वारा संचलित अभूतपूर्व समुद्री विस्तार के युग के दौरान सियाम पहुंचे थे। अपने हजारों देशवासियों की तरह वे अयोध्या के निहोनमाची यानी जापानी समुदाय में बस गए। एक ऐसी दुनिया जहां व्यापार और हिंसा के बीच की रेखाएं हमेशा धुंधली रहती थीं। इस माहौल में जापानी प्रवासी एक बदलती निरंतरता में रहते थे, जो जरूरत पड़ने पर मर्सनरी बन जाते थे और मुनाफा दिखने पर वापस व्यापारी की भूमिका में आ जाते थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नागामासा एक दुर्जेय व्यवसायिक प्रतिद्वंदी थे। वे केवल एक सैनिक ही नहीं थे, वे एक समृद्ध व्यापारी थे जिन्होंने एक अत्यधिक लाभदायक वाणिज्यिक नेटवर्क का प्रबंधन किया था। उन्होंने जापान में भारी मांग वाली वस्तु हिरण की खाल के आकर्षक व्यापार पर नियंत्रण के लिए VOC के साथ कड़ा मुकाबला किया। इस मर्सनरी मर्चेंट ढांचे ने उन्हें अपनी निजी सेना बनाए रखते हुए व्यक्तिगत संपत्ति बनाने की अनुमति दी। सियाम के राजा अपनी सुरक्षा के लिए तेजी से जापानी लड़ाकों पर निर्भर होने लगे थे, जिन्हें वे साहस और निष्ठा के लिए सबसे सम्मानित मानते थे। यूरोपीय पर्यवेक्षकों ने इन सैनिकों को वीर और भयंकर योद्धाओं के रूप में वर्णित किया है, जो किसी भी संघर्ष के परिणाम को बदलने में सक्षम थे। जापानी समुदाय के राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत एक दुस्साहसी कृत्य से हुई थी। डच वृत्तांतों और अयोध्या के इतिहास के अनुसार जापानी सैनिकों ने सियाम के सम्राट का अपहरण कर लिया था और उन्हें तब तक बंधक बनाए रखा जब तक कि वे उन्हें अपने एलीट पैलेस गार्ड और जीवन भर के लिए अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने पर सहमत नहीं हो गए। इस उच्च स्तरीय माहौल में नागामासा रैंकों में ऊपर उठते गए और सियाम के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। नागामासा का करियर अपने चरमोत्कर्ष पर तब पहुंचा जब उन्होंने सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और उत्तराधिकार की विश्वासघाती राजनीति को संभाला। वे एक सैन्य और वाणिज्यिक उद्यमी की अनूठी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह युद्ध का नेतृत्व कर सकता था और दोपहर में व्यापारिक सौदे पर बातचीत कर सकता था। अंततः एक किंगमेकर का जीवन जितना लाभदायक था उतना ही खतरनाक भी। नागामासा की मृत्यु 1630 में हुई। वे उसी दरबारी साजिश के शिकार हुए जिसे आकार देने में उन्होंने मदद की थी। उनकी कहानी उस युग का प्रमाण है जहां साहसी यात्री समुद्र पार कर सकते थे और अपनी युद्ध प्रतिष्ठा का लाभ उठाकर विदेशी भूमि में सत्ता हथिया सकते थे। नागामासा केवल एक विदेशी घुसपैठिए नहीं थे, वे सियामी राज्य के एक अनिवार्य अंग थे, जो ये साबित करता है कि उस समय एक तेज तलवार और व्यापार की गहरी समझ ही राजनीतिक अस्तित्व का अंतिम हथियार थे।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लो।

दोस्तों, कला कल्लोलिनी के पिछले एपिसोड में हमने ग्वालियर घराने के महान ध्वजवाहक पंडित विनायक पटवर्धन जी की जीवन यात्रा और उनकी तराना गायकी के अद्भुत जादू को बहुत गहराई से महसूस किया था। आज हमारे स्टूडियो में सुरों की वही पवित्र गंगा एक बार फिर पूरे वेग से बह रही है। आज के हमारे शब्दों में उसी ग्वालियर परंपरा की प्रमाणिकता और मिठास है, और आज की यह विशेष प्रस्तुति समर्पित है स्वयं विनायक राव पटवर्धन जी के पूज्य गुरु, भारतीय शास्त्रीय संगीत के पुनरुद्धारक और संगीत महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के पावन जीवन चरित्र को।

0: संगीत यानी वो आवाज जो बेआकार भावनाओं को एक सुंदर रूप दे देती है, और ताल यानी वो धड़कन जो इंसान के दिल की रफ्तार को इस कायनात की गति से जोड़ देती है। लेकिन जब ये संगीत और ताल किसी साधारण गायक के बजाय किसी ऐसे महान साधक के गले से निकलते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी को ही एक तपस्या बना लिया हो, तो वो महज मनोरंजन नहीं रहता, वो आत्मा को छूने वाला, सोए हुए जमीर को जगाने वाला और पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाला एक दिव्य माध्यम बन जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के पूरे इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो एक ऐसा नाम सबसे ऊंचे शिखर पर चमकता हुआ दिखाई देता है जिसने शास्त्रीय संगीत को राजा महाराजाओं के महलों, बंद कमरों और बदनामी के अंधेरों से बाहर निकाल कर आम लोगों के दरवाजों, गांव-गांव की गलियों और आजादी की लड़ाई के राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचा दिया।
1: जी हां श्रोताओं, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर भारतीय संगीत का वो महान स्तंभ जिन्होंने न केवल शास्त्रीय रागों की शुद्धता और मर्यादा को बचाए रखा बल्कि गंधर्व महाविद्यालय जैसी ऐतिहासिक संस्था की स्थापना करके संगीत की शिक्षा को एक नया वैज्ञानिक और बेहद आसान रूप दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि संगीत सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की जागीर नहीं है बल्कि ये हर उस इंसान का हक है जो सुरों से प्यार करता है। आज की ये विशेष दीर्घ प्रस्तुति पंडित जी के बचपन के संघर्षों, उनकी आंखों की रोशनी जाने के बाद की कल्पनातीत साधना, उनके गुरु ऋण, देश भर की ऐतिहासिक यात्राओं, गंधर्व महाविद्यालय के निर्माण, आजादी के आंदोलन में उनके योगदान, उनके महान शिष्यों की पूरी कतार और उनकी अविस्मरणीय सांस्कृतिक विरासत को पूरे विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत करती है।
0: तो चलिए श्रोताओं, अपने मन को शांत कर लीजिए और वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हुए हमारे साथ चलिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध के उस ऐतिहासिक दौर में जहां से भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक नई भोर का आकाश हुआ था।

0: 18 अगस्त 1872 की तारीख, जगह थी महाराष्ट्र में स्थित कुरुंदवाड़ रियासत। इस सुरम्य और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भूमि पर एक अत्यंत धार्मिक, सुसंस्कृत और संगीत प्रेमी परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। पिता गोपाल राव पलुस्कर स्वयं एक जाने माने और प्रतिष्ठित कीर्तनकार थे। वो भगवान की भक्ति में लीन होकर जब कथा कीर्तन किया करते तो पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता था। बालक के जन्म के बाद परिवार में अपार खुशियां छाई और उसका नाम रखा गया विष्णु।
1: पिता के कीर्तनकार होने का सबसे बड़ा फायदा बाल विष्णु को ये मिला कि उन्हें जन्म से ही घर में भजन, कीर्तन, ढोलक, मंजीरे और भक्ति संगीत का अद्भुत वातावरण मिला। जब विष्णु बहुत छोटे थे तभी से वे अपने पिता के साथ कीर्तनों में जाया करते थे। बालक विष्णु का ध्यान, उनकी स्मरण शक्ति और उनकी आवाज का सुरीलापन देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। जो भजन बड़े बड़े गायक घंटों में याद करते थे, बाल विष्णु उसे एक बार सुनकर ही पूरी तरह कंठस्थ कर लेते थे। उनके कानों में हर समय सुर और ताल की गूंज बनी रहती थी।
0: लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जब विष्णु की उम्र मात्र 10 या 12 वर्ष की थी और वो अपने जीवन के सबसे सुनहरे दौर में कदम रख रहे थे, तब उनके जीवन में एक ऐसा भयावह मोड़ आया जिसने उनके पूरे भविष्य पर अनिश्चितता का एक काला साया डाल दिया। कुरुंदवाड़ रियासत में दत्त जयंती का पवित्र त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। पूरे शहर को सजाया गया था और जगह जगह आतिशबाजी की जा रही थी।
1: बाल विष्णु भी अपने दोस्तों के साथ आतिशबाजी देखने के लिए उत्साहपूर्वक वहां मौजूद थे। तभी अचानक एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा घटा। एक बहुत ही शक्तिशाली पटाखा बालक विष्णु के मुंह और आंखों के बेहद करीब आकर अचानक फट गया। आतिशबाजी के जहरीले धुएं और बारूद की भीषण गर्मी ने बाल विष्णु के चेहरे को बुरी तरह झुलसा दिया और सबसे दुखद बात यह हुई कि इस हादसे में उनकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई।
0: जरा सोचिए श्रोताओं, सिर्फ 10-12 साल का एक मासूम बच्चा जिसकी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी थी, एकाएक पूरी तरह अंधेरे के भयानक समुद्र में डूब गया। घर में कोहराम मच गया। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। हर कोई यही सोच रहा था कि अब ये दृष्टिहीन बालक अपनी जिंदगी कैसे जिएगा, इसका भविष्य क्या होगा। लेकिन दोस्तों, कुदरत का नियम है कि जब वो इंसान से उसकी कोई एक चीज छीनती है तो बदले में उसे कोई एक अलौकिक शक्ति भी दे देती है जो आम इंसानों के पास नहीं होती। जब बाल विष्णु की बाहरी आंखें बंद हुई तो ईश्वर ने उनके अंदर की संगीतमय दृष्टि और सुनने की अद्भुत क्षमता को हजार गुना अधिक तीव्र कर दिया।
1: कुरुंदवाड़ के राजा बालक विष्णु के परिवार से भलीभांति परिचित थे। जब उन्होंने इस दर्दनाक हादसे के बारे में सुना तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने बालक विष्णु को अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने देखा कि भले ही बालक की आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर है और जब वह गाता है तो उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव और कशिश है। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि इस बालक को लाचारी की जिंदगी जीने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने बालक विष्णु को संगीत की उच्च शिक्षा दिलाने के लिए मिरज भेजने का फैसला किया।
0: मिरज, जो अपनी खास मिट्टी, हवा और तानपुरों के निर्माण के लिए पूरे देश में मशहूर था। मिरज में उस समय भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान विद्वान और उस्ताद पंडित बाल कृष्ण बुआ इचलकरंजीकर जी निवास किया करते थे। पंडित बाल कृष्ण बुआ जी वही महान संगीतकार थे जो उत्तर भारत के ग्वालियर घराने की शुद्ध, प्रामाणिक और ओजस्वी गायकी को महाराष्ट्र की धरती पर ले आए थे। जब कुरुंदवाड़ के राजा का संदेश लेकर बाल विष्णु पंडित बाल कृष्ण बुआ जी के सामने पहुंचे, तो बुआ जी ने बालक के माथे के तेज और उनके कंठ की शुद्धता को पहली ही नजर में ताड़ लिया।
1: बाल कृष्ण बुआ जी ने कहा, ये बालक कोई साधारण बच्चा नहीं है। आंखों का ना होना इसके लिए अभिशाप नहीं बल्कि संगीत के मामले में वरदान साबित होगा, क्योंकि अब इसका ध्यान दुनिया की चकाचौंध से हटकर सिर्फ और सिर्फ स्वरों पर केंद्रित रहेगा। और इस तरह बालक विष्णु अपने गुरु की शरण में आ गए। यहां से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का वो दौर जिसे अगर हम कठोर तपस्या का दौर कहें तो गलत नहीं होगा।
0: मिरज के उस आश्रम में गुरु शिष्य परंपरा का बेहद सख्त नियम था। विष्णु के लिए सुबह की शुरुआत तड़के 4 बजे हो जाती थी। जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा होता तब बाल विष्णु ठंडे पानी से स्नान करके सूती धोती पहनकर अपने तानपुरे के साथ गुरु के सामने बैठ जाया करते। आंखें न होने के कारण विष्णु का पूरा अस्तित्व केवल कानों में सिमट आया था। गुरुजी जो भी तान या बंदिश गाते विष्णु उसे पलक झपकते ही अपने मन के पटल पर छाप लिया करते।
1: दोस्तों, गुरु बाल कृष्ण बुवा जी ने विष्णु को ग्वालियर घराने की गायकी के मूल सिद्धांत सिखाए, जैसे आवाज को पेट और नाभि से कैसे उठाना है, खर्ज यानी मंद्र सप्तक का रियाज कैसे करना है और सा के सुर को घंटों तक बिना हिलाए कैसे साधे रखना है। ठंड के दिनों में भी जब उंगलियां जमने लगती थीं, विष्णु बिना रुके लगातार 4-4 घंटे तक सिर्फ सा का अभ्यास करते थे।
0: रियाज के अलावा विष्णु आश्रम के अन्य सभी काम भी पूरी निष्ठा से करते। गुरु जी के लिए पानी भरना, आश्रम की साफ सफाई करना, खाना पकाने में मदद करना और गुरु जी की मालिश करना, विष्णु हर काम में सबसे आगे रहा करते। गुरु भक्ति उनके रोम रोम में बसी हुई थी और इसी कठिन और अनुशासित माहौल में विष्णु ने पूरे 12 वर्षों तक अन्न जल की परवाह किए बिना केवल और केवल संगीत की ही साधना की।
1: 12 सालों की इस अटूट साधना ने विष्णु के कंठ को फौलाद जैसा मजबूत और पानी जैसा सुरीला बना दिया। अब वह ग्वालियर घराने के कठिन से कठिन रागों, जटिल तानों, मींड, गमक और लयकारी में पूरी तरह पारंगत हो चुके थे। उनका कंठ 3 सप्तकों में बड़ी आसानी से घूमता था, लेकिन जैसे जैसे उनकी शिक्षा पूरी हो रही थी उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल और तड़प जन्म ले रही थी।
0: श्रोता, 19वीं सदी के अंत में भारतीय शास्त्रीय संगीत जिस दौर से गुजर रहा था वो बहुत ही चिंताजनक दौर था। उस जमाने में शास्त्रीय संगीत या तो रजवाड़ों और नवाबों के दरबारों की विलासिता का साधन बना हुआ था या फिर नर्तकियों तक ही सीमित होकर रह गया था। संभ्रांत, पढ़े लिखे और कुलीन परिवार के लोग संगीत को बुरी और चरित्र भ्रष्ट करने वाली कला माना करते।
1: जी हाँ, ये वो दौर था जब अगर कोई अच्छे घर का बच्चा संगीत सीखने की इच्छा भी जताता तो समाज उसे बुरी नजरों से देखता था। संगीतकारों और गायकों को लोग गवैया या मिरासी कहकर नीचा दिखाते थे। उन्हें समाज में वो सम्मान नहीं मिलता था जो एक शिक्षक, डॉक्टर या विद्वान को मिलता था। इसके अलावा गुरु लोग अपने घरानों की बंदिशों और रागों की बारीकियों को इतना गुपचुप रखते थे कि वे अपने सगे बेटों के अलावा किसी और को पूरी विद्या नहीं सिखाते थे। संगीत ज्ञान बंद कमरों में घुट रहा था।
0: और जब युवा विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने समाज की इस दयनीय स्थिति को देखा तो उनका संवेदनशील और स्वाभिमानी मन तड़प उठा। वो सोचने लगे कि जिस संगीत को हमारे शास्त्रों में ब्रह्मनाद और ईश्वर की भक्ति का माध्यम कहा गया है उसे समाज ने इतना नीचा दर्जा कैसे दे दिया। क्या संगीत सिर्फ राजाओं का दिल बहलाने या महफिलों की शान बढ़ाने के लिए है?
1: इसी तड़प के बीच पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक संकल्प लिया। उन्होंने अपने मन में ये प्रण किया, मैं संगीत को दरबारों की गुलामी और कोठों की गंदगी से बाहर निकालूंगा। मैं शास्त्रीय संगीत को इतना पवित्र, अनुशासित और सम्मानीय बनाऊंगा कि समाज का सबसे कुलीन और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने बच्चों को गर्व से संगीत सिखाएगा। मैं संगीत को ईश्वर की पूजा और आम जनता का अधिकार बनाकर रहूंगा।
0: श्रोताओं, ये कोई छोटा संकल्प नहीं था। एक दृष्टिहीन, बिना पैसे और बिना किसी बड़े सहारे के पूरे समाज की सोच से टकराना एक असंभव सा काम था। लेकिन जिनके इरादे फौलादी होते हैं वो ही इतिहास रचते हैं। सन 1896 में उन्होंने अपने गुरु पंडित बालकृष्ण बुआ जी के चरणों में सिर झुकाया, उनका आशीर्वाद लिया और मिरज की धरती को छोड़कर अपनी महान राष्ट्रीय यात्रा पर निकल पड़े।
1: मिरज छोड़ने के बाद पंडित विष्णु दिगंबर जी ने किसी राजा के दरबार में जाकर शाही गायक बनना स्वीकार नहीं किया। अगर वे चाहते तो अपनी अद्भुत गायकी के दम पर किसी भी बड़ी रियासत में आराम की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उनका मकसद पैसा या आराम कमाना नहीं था। उनका मकसद संगीत का पुनरुद्धार करना था
0: और इसके लिए उन्होंने उत्तर भारत का रुख किया। वो गुजरात के बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद से होते हुए राजस्थान के जयपुर, अजमेर और फिर उत्तर प्रदेश के झांसी, ग्वालियर, आगरा, मथुरा और दिल्ली पहुंचे। वो जहां भी जाते वहां के प्रतिष्ठित नागरिकों, वकीलों, शिक्षकों और डॉक्टरों से मिलते और उन्हें शास्त्रीय संगीत के महत्व के बारे में बताते।
1: उस दौर में पंडित जी ने एक ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाया जिसने भारतीय संगीत इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के सार्वजनिक कॉन्सर्ट आयोजित करने शुरू किए। उससे पहले कभी किसी ने शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए टिकट खरीदने की बात सोची भी नहीं थी। लोग समझते थे कि संगीत तो मुफ्त की चीज है या सिर्फ राजाओं के यहाँ सुनने को मिलती है।
0: पंडित जी ने बहुत ही स्वाभिमान के साथ कहा, अगर आप किसी नाटक या सर्कस को देखने के लिए टिकट खरीद सकते हैं तो ईश्वर के बनाए इस पवित्र शास्त्रीय संगीत को सुनने के लिए आपको अपनी जेब से सम्मानजनक राशि देनी ही होगी। कला मुफ्त में मांगने की चीज नहीं है। उन्होंने कॉन्सर्ट हॉल किराए पर लिए, टिकटें बेची और मंच पर एक संत की भांति बैठकर शास्त्रीय रागों की ऐसी वर्षा की कि लोग दंग रह गए।

0: मंच पर पंडित जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि देखने वाले नतमस्तक हो जाते थे। लंबा गठीला शरीर, माथे पर बड़ा सा तिलक, गले में भगवा गमछा, सफेद धोती कुर्ता और हाथ में तानपुरा। जब वे मंच पर बैठकर अपनी बुलंद आवाज में गाना शुरू करते थे तो ऐसा लगता था मानो कोई प्राचीन काल का ऋषि मुनि संगीत की वेदों की रचनाएं पढ़ रहा हो। उन्होंने संगीत सभाओं से शराब, तंबाकू और अभद्र व्यवहार को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। जो भी उनकी सभा में आता उसे बेहद अनुशासित होकर बैठना पड़ता था।
1: और इस तरह पंडित जी ने गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में संगीत के प्रति लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। जो लोग संगीतकारों से दूरी बनाते थे वो अब पंडित जी के चरणों में बैठकर संगीत सुनने लगे। लेकिन पंडित जी जानते थे कि सिर्फ कॉन्सर्ट करने से काम नहीं चलेगा। अगर संगीत को हमेशा के लिए जिंदा रखना है तो इसके लिए एक स्थायी संस्था भी बनानी होगी। और इसी सोच के साथ वो पहुंचे पंजाब के तत्कालीन ऐतिहासिक शहर लाहौर में।
0: पंजाब का लाहौर शहर, जो उस समय कला, साहित्य और राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। लाहौर पहुंचकर पंडित विष्णु दिगंबर जी ने अपने जीवन के सबसे बड़े सपने को साकार करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों के सहयोग से एक किराए का मकान लिया।
1: और फिर आया भारतीय इतिहास का वो स्वर्णिम दिन, 5 मई 1901। इसी दिन पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। श्रोताओं, ये भारत के पूरे इतिहास में पहला मौका था जब संगीत की शिक्षा देने के लिए किसी राजा की मेहरबानी या गुरु के घर की बंदिशों से दूर एक पूरी तरह से आधुनिक, सार्वजनिक और अनुशासित म्यूजिक स्कूल खोला गया था।
0: गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना भारतीय कला जगत में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इस संस्था के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, चाहे वे अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो। पंडित जी ने स्पष्ट कर दिया कि संगीत पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है, जिसके अंदर सीखने की तड़प है वे यहाँ आकर सीख सकता है।
1: पंडित जी ने गंधर्व महाविद्यालय को चलाने के लिए जो नियम बनाए वो आज के जमाने के किसी आधुनिक विश्वविद्यालय से कम नहीं थे। उन्होंने संगीत सिखाने के लिए पहली बार एक वैज्ञानिक और क्रमबद्ध सिलेबस तैयार किया। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग राग, बंदिशे और ताल निश्चित किए गए।
0: उससे पहले शास्त्रीय संगीत पूरी तरह से मौखिक परंपरा पर चलता था। गुरु जी ने जो गा दिया शिष्य ने याद कर लिया। कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता था, जिसके कारण कई दुर्लभ राग और बंदिशें गुरु की मृत्यु के साथ ही हमेशा के लिए गायब हो जाती थीं। इस बहुत बड़े नुकसान को रोकने के लिए पंडित विष्णु दिगंबर जी ने रात दिन मेहनत करके विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति यानी नोटेशन सिस्टम की खोज की।
1: इस स्वरलिपि पद्धति के जरिए किसी भी राग, बंदिश, तान, मीण और ताल को कागज पर अक्षरों और चिन्हों के माध्यम से पूरी शुद्धता के साथ लिखा जा सकता था। उन्होंने खुद कई किताबें लिखी और अपने विद्यालय के प्रेसों में उसे छपवा कर छात्रों में भी बांटा। अब कोई भी छात्र किताब देखकर भी बंदिश का रियाज कर सकता था। यह भारतीय संगीत के इतिहास में ज्ञान को सुरक्षित रखने का सबसे क्रांतिकारी कदम था।
0: श्रोताओं, गंधर्व महाविद्यालय में सिर्फ संगीत ही नहीं सिखाया जाता था, बल्कि छात्रों के चरित्र निर्माण पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। छात्रों को सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, प्रार्थना करनी होती थी, योगासन करने पड़ते थे और फिर संगीत का रियाज होता था। छात्रों को सादे कपड़े पहनने होते थे और पूरी तरह से नशा मुक्त और अनुशासित जीवन जीना होता था।
1: लाहौर का गंधर्व महाविद्यालय इतना प्रसिद्ध हो गया कि पूरे भारत से माता पिता अपने बच्चों को वहां संगीत सिखाने के लिए भेजने लगे। जो समाज कल तक संगीत से नफरत करता था, वही समाज अब गंधर्व महाविद्यालय में अपने बच्चों का दाखिला करवाने के लिए कतारों में खड़ा था। पंडित जी का सपना अब सच होने जा रहा था।
0: लाहौर में मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद पंडित जी ने इस आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने का फैसला किया। सन 1910 में वे मुंबई आए और मुंबई में गंधर्व महाविद्यालय की एक विशाल इमारत और मुख्य केंद्र की स्थापना की। मुंबई का ये केंद्र भारतीय संगीत का सबसे बड़ा गढ़ बन गया, जहां से निकलकर सैकड़ों संगीतकारों ने देश भर में शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार किया।

0: श्रोताओं, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी सिर्फ संगीत के उस्ताद या शिक्षक ही नहीं थे, उनके सीने में भारत माता की आजादी के लिए तड़पने वाला एक सच्चा देशभक्त का दिल भी धड़कता था। 20वीं सदी की शुरुआत में जब पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट हो रहा था, तब पंडित जी ने संगीत को आजादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हथियार बना दिया।
1: जी हाँ, उस समय भारतीय के जितने भी बड़े राष्ट्रीय अधिवेशन होते थे, चाहे वे अहमदाबाद हो, नागपुर हो, दिल्ली हो या कोलकाता, पंडित विष्णु दिगंबर जी अपने शिष्यों की मंडली के साथ वहां बिना एक पैसा लिए पहुंचते थे। जब अधिवेशन शुरू होता तो पंडित जी माथे पर तिलक लगाए, हाथ में तानपुरा लेकर मंच पर खड़े होते थे और अपनी बुलंद, गंभीर और ओजस्वी आवाज में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन करते थे।

0: जब पंडित जी वंदे मातरम गाते तो उस विशाल पांडाल में मौजूद हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों, नेताओं और आम जनता के रोंगटे खड़े हो जाते। उनकी आवाज में ऐसा जादू और राष्ट्रभक्ति का ऐसा उफान होता कि लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते और उनके अंदर देश के लिए मर मिटने का जज्बा भर जाता।
1: दोस्तों, यही वजह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पंडित विष्णु दिगंबर जी के व्यक्तित्व और उनके संगीत के बहुत बड़े प्रशंसक थे। गांधी जी का मानना था कि पंडित जी के भजनों में जो आत्मशक्ति और पवित्रता है, वह लाखों लोगों को एक सूत्र में पिरो सकती है। जब भी गांधी जी का कोई आश्रम कार्यक्रम या सत्याग्रह होता, वे पंडित जी को भजन गाने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित करते थे।
0: श्रोताओ, आज जो अमर धुन हम और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, इस धुन को अपनी सुरीली, गंभीर और भक्तिमय शास्त्रीय धुन में डाला था स्वयं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने। जी हाँ, ये पंडित जी का ही संगीत संयोजन था जिसने इस भजन को घर घर में लोकप्रिय बना दिया। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा हो, नमक सत्याग्रह हो या फिर कोई और अहिंसक आंदोलन, पंडित जी की बनाई ये रामधुन हर भारतीय के होठों पर गूंजती थी। इस धुन ने देश के अलग अलग भाषाओं और धर्मों के लोगों को आजादी की लड़ाई में एक साथ जोड़ने का अभूतपूर्व काम किया।

0: किसी भी महान संगीत महर्षि की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं होती कि उसने खुद कितना अच्छा गाया, बल्कि उसकी असली महानता इस बात से मापी जाती है कि उसने समाज को कैसे शिष्य दिए। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी इस मामले में बेहद भाग्यशाली और अद्वितीय थे। उन्होंने अपने गंधर्व महाविद्यालय के जरिए शिष्यों की एक ऐसी विशाल और तेजस्वी आकाश गंगा तैयार की, जिसने उनके जाने के बाद भी पूरे भारत में संगीत का परचम फहराया।
1: तो श्रोताओं, आइए पंडित जी के उन महान शिष्यों के बारे में अब बात करते हैं जिन्होंने भारतीय संगीत इतिहास में अमर स्थान हासिल किया। पंडित जी के सबसे प्रिय और अनुशासित शिष्यों में से एक पंडित विनायक राव पटवर्धन, इन्होंने गुरु के आदेश पर नाट्य संगीत में धूम मचाई और बाद में पुणे में गंधर्व महाविद्यालय को पुनर्जीवित किया। इन्होंने ही राग विज्ञान नाम की मशहूर सात भागों वाली पुस्तक श्रृंखला लिखी, जो आज भी संगीत के छात्रों के लिए किसी धर्म ग्रंथ की तरह है।
0: और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, भारतीय शास्त्रीय संगीत का वो बब्बर शेर जिसकी प्रचंड आवाज और भावपूर्ण गायकी ने न केवल भारत में बल्कि यूरोप में भी तहलका मचा दिया था। पंडित ओंकारनाथ जी अपने गुरु विष्णु दिगंबर जी को ईश्वर की तरह पूछते थे। इसके साथ ही पंडित नारायण राव व्यास अपनी बेहद सुरीली, साफ और प्रभावकारी गायकी के लिए जाने जाने वाले दिग्गज कलाकार थे। इन्होंने और विनायक राव पटवर्धन जी की जोड़ी ने दशकों तक पूरे भारत के संगीत सम्मेलनों में ग्वालियर घराने का नाम रोशन किया।
1: श्रोताओं, इनके एक और शिष्य थे पंडित वामन राव पाथे, जिन्होंने संगीत शिक्षा के प्रचार प्रसार और संस्थागत विकास में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और फिर पंडित विष्णु दिगंबर जी के बेटे पंडित डीवी पलुस्कर दत्तात्रेय विष्णु पलुस्कर के बारे में कौन नहीं जानता। जब पंडित जी का निधन हुआ तब बालक दत्तात्रेय बहुत छोटे थे, लेकिन अपने पिता के संस्कारों और पंडित विनायक राव पटवर्धन जी के मार्गदर्शन में आगे चलकर पंडित डीवी पलुस्कर ने अपनी अलौकिक, सात्विक और सुरीली गायकी से पूरे विश्व को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी गायी हुई ठुमक चलत रामचंद्र और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जैसी रचनाएं आज भी अमर हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, अगर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय ना बनाया होता और इन महान शिष्यों को ना तराशा होता तो शायद भारतीय शास्त्रीय संगीत का रूप आज ऐसा नहीं होता।
0: पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की सोच अपने दौर के लोगों से बहुत आगे थी। वे केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। वे जानते थे कि भारतीय संगीत की वैज्ञानिकता और उसकी आध्यात्मिक शक्ति में वो दम है कि वह दुनिया के किसी भी कोने के इंसान को अपना दीवाना बना सकती है। उस जमाने में जब विदेशी विद्वान और ब्रिटिश अधिकारी भारतीय संगीत को अव्यवस्थित और शोर शराबा कहकर खारिज करने की कोशिश करते थे, तब पंडित जी ने अपनी बनाई स्वरलिपि पद्धति और रागों के वैज्ञानिक सिद्धांतों को विदेशी संगीतविदों के सामने बड़े गर्व के साथ प्रस्तुत किया। कई पश्चिमी संगीत शोधकर्ताओं ने पंडित जी के गंधर्व महाविद्यालय का दौरा किया और उनके काम को देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय संगीत का ये ढांचा पश्चिमी क्लासिकल म्यूजिक से भी ज्यादा वैज्ञानिक और समृद्ध है।
1: इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद, हजारों शिष्यों का पूज्य होने के बाद और पूरे देश में अपार ख्याति मिलने के बाद भी पंडित विष्णु दिगंबर जी के जीवन में रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया। उनका जीवन एक सच्चे सन्यासी और फकीर की तरह बेहद ही सादा था। उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय, कॉन्सर्ट्स और किताबों की बिक्री से जो भी लाखों रुपए कमाए, उनमें से एक भी पैसा अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल या अपने परिवार के लिए बचाकर नहीं रखा। उन्होंने सारा पैसा गंधर्व महाविद्यालय की इमारतों के निर्माण, प्रिंटिंग प्रेसों को खरीदने, गरीब और अनाथ छात्रों के भोजन और उनके रहने की व्यवस्था में लगा दिया। वो खुद हमेशा एक साधारण सूती धोती कुर्ता पहने रहते और जमीन पर चटाई बिछाकर सोया करते थे।
0: जी हाँ, वे मानते थे कि संगीत ईश्वर द्वारा दी गई एक पवित्र विद्या है। उन्होंने कभी संगीत का सौदा नहीं किया। उनका पूरा जीवन निष्काम कर्म योग का एक जीवंत उदाहरण था। और आइए श्रोताओं, अब बताते हैं उनकी समकालीन हस्तियों ने उनके बारे में क्या कहा। गांधी जी का कहना था कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी केवल एक महान गायक नहीं है, वे एक राष्ट्र निर्माता हैं। उनके भजनों ने भारत की सोई हुई जनता के भीतर जो पवित्रता, नैतिक बल और देश प्रेम की ज्वाला जगाई है, वह हमारे किसी भी राजनीतिक भाषण से कहीं अधिक गहरी और असरदार है। रघुपति राघव राजा राम की धुन हमारे अहिंसक सत्याग्रह का सबसे बड़ा सहारा है।
1: वहीं उनके शिष्य पंडित विनायक राव पटवर्धन ने कहा, हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित विष्णु दिगंबर जी ने हमें सिर्फ राग और बंदिशें ही नहीं सिखाई, उन्होंने हमें इंसान बनना भी सिखाया। वे हमारे लिए केवल एक संगीत के शिक्षक नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिन्होंने हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करके हमें भक्ति और साधना का सच्चा मार्ग दिखाया। आज संगीत जगत में हम जो कुछ भी हैं, वो केवल उनके चरणों की धूल का ही प्रताप है।
0: तो वही महान संगीतज्ञ और पंडित जी के शिष्य पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का कहना था, जब पंडित विष्णु दिगंबर जी मंच पर विराजते थे और अपना तानपुरा छेड़ते थे, तो ऐसा लगता था मानो साक्षात सरस्वती देवी वहां अवतरित हो गई हो। उनकी आवाज में एक ऐसा देवीय प्रभाव और गांभीर्य था कि बड़ी से बड़ी भीड़ भी एक क्षण में शांत हो जाती थी। उन्होंने भारतीय संगीत को जो सम्मान दिलाया है, उसके लिए पूरा देश उनका युगों युगों तक ऋणी रहेगा।
1: उनके पहले गुरु पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकर रंजीकर का कहना था कि मुझे गर्व है कि विष्णु मेरा शिष्य है। जब वो मेरे पास आया था तो उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन आज उसने पूरे भारतवर्ष के संगीत प्रेमियों के मस्तक पर ज्ञान की रोशनी बिखेर दी है। उसने ग्वालियर घराने के नाम को अमर कर दिया है। श्रोताओं, समय की गति निरंतर चलती रहती है। जिस महामानव ने अपना पूरा जीवन, अपनी हर एक सांस और अपने शरीर का एक एक कतरा संगीत, समाज और देश की सेवा पर न्योछावर कर दिया था, उनका शरीर अब धीरे धीरे ढलने लगा था। निरंतर यात्राएं करने, कड़े अनुशासन में रहने और दिन रात गंधर्व महाविद्यालय के काम में जुटे रहने के चलते पंडित जी का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे गिरने लगा था।
0: अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में वे महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर नासिक आ गए। वहां उन्होंने राम नाम आधार आश्रम की स्थापना की। अपनी आंखों की ज्योति खो चुके और शरीर से थक चुके इस महान साधक ने अपने जीवन के आखिरी दिन पूरी तरह से भगवान श्री राम की भक्ति, भजन और ध्यान में लगा दिया। वे दिन भर राम नाम का जप करते थे और अपने शिष्यों को भक्ति का उपदेश देते थे।
1: और फिर आया 21 अगस्त 1931 का वो अत्यंत दुखद और शोक संतप्त दिन। मात्र 59 वर्ष की आयु में सुरों के इस महान शिल्पी, गंधर्व महाविद्यालय के इस महान संस्थापक और भारत माता के सच्चे सपूत ने नासिक में अपनी अंतिम श्वास ली। उनका भौतिक शरीर अनंत के मौन में विलीन हो गया।
0: पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के निधन की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। महात्मा गांधी, देश के बड़े बड़े नेताओं, संगीतकारों और लाखों आम लोगों ने इसे देश की एक अपूर्णीय क्षति बताया। ग्वालियर घराने का एक सबसे बड़ा और सबसे चमकदार सितारा आज अस्त हो चुका था।
1: लेकिन श्रोताओं, क्या पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर सचमुच हमें छोड़कर चले गए थे? नहीं, सुर कभी नहीं मरा करते, वो तो अमर हो जाते हैं। जब तक इस धरती पर शास्त्रीय संगीत का अस्तित्व रहेगा, जब तक गंधर्व महाविद्यालय की किसी भी शाखा में एक छोटा सा बच्चा अपना पहला सा साधेगा, जब विष्णु दिगंबर स्वरलिपि की किताबों से बंदिशें सीखी जाएंगी, जब तक इस देश की फिजाओं में रघुपति राघव राजा राम की धुन गूंजेगी, और तब तक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी अपनी अमर विरासत, अपने शुद्ध सुरों और अपने महान विचारों के साथ हम सभी के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे।
0: किसी महान संगीत मर्मज्ञ ने पंडित जी को श्रद्धांजलि देते हुए बहुत ही सुंदर बात कही थी, अगर तानसेन

0: जाने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा, और मैं दानिश,
1: और आपके साथ मैं थी स्वाति।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भगवती चरण वर्मा की कविताएं।
2: श्रोताओं, भगवती चरण वर्मा के विश्व प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा के विषय में हम सब ने सुना है। हालांकि श्री वर्मा स्वयं को मुख्यतः एक उपन्यासकार ही मानते हैं, न कि कवि, लेकिन ये भी सत्य है कि कविताएं भी वे बहुत अच्छी लिखते हैं। खासकर उनकी प्रेम कविताएं तो प्रणय की पुकार लगती हैं। जिस तरह से चित्रलेखा उपन्यास पाप और पुण्य की एक नई परिभाषा गढ़ता है, उसी तरह उनकी कविताएं भी पाप पुण्य के रूढ़िवादी मानदंडों की परवाह नहीं करती। दैहिक आकर्षण को इसमें पाप नहीं माना जाता। तो आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की कविताओं पर ये बातचीत।
1: श्रोताओं, जीवन क्षण भंगुर है, फिर मिलना बिछड़ना तो लगा ही रहता है। इस बात का क्या ठिकाना कि जो आज मिला है वो फिर कभी मिलेगा कि नहीं। इसलिए अपनी अपनी कह सुन ले। कुछ इसी भाव को व्यक्त करती है भगवती चरण वर्मा की कविता। कुछ सुन ले, कुछ अपनी कह ले। सुनते हैं इसकी चंद पंक्तियां। कुछ सुन ले, कुछ अपनी कह ले। जीवन सरिता की लहर लहर, मिटने को बनती यहां प्रिय। संयोग क्षणिक फिर क्या जाने, हम कहां और तुम कहां प्रिय।
2: लेकिन समस्या ये है कि जो बिछड़ जाते हैं वे भी कहां छूटते हैं, यादों में चुपचाप चले आते हैं। ये समस्या कवि के साथ भी है। उसकी प्रिया उसकी स्मृति में बार बार आती है और उसे प्यार कर जाती है। तुम सुधी बन बन कर बार बार क्यों कर जाती हो प्यार मुझे, फिर विस्मृति बन तन मैता का दे जाती हो उपहार मुझे।
1: जो कभी अपने होते थे वे आज ना जाने कहां खो गए हैं। ऐसा लगता है कि एक सपना था जो टूट गया। कितना सुहाना सपना था ना वो, हे सुमुखी। ऐसा लगता था कि एक तुम्हारे होने से सारा संसार अपना है। माना माना वो केवल सपना था, पर कितना सुंदर सपना था। जब मैं अपना था और सुमुखी, तुम अपनी थी जग अपना था।
2: श्रोताओं, हर प्रेमी को अपनी प्रेयसी सर्वोपरि लगती है। उसकी बोली कोयल की तरह मीठी लगती है, उसकी आंखें हिरणी की तरह सुंदर लगती हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि एक सुंदर तस्वीर से निकलकर साक्षात सामने आ गई हो। उसकी मादकता मदहोश किए जाती है। वो एक उल्लास की तरह आती है, लेकिन हृदय की प्यास फिर भी नहीं मिटती। मिटे भी कैसे, क्योंकि ये आज की नहीं बल्कि युगों की प्यास है, जिसकी तीव्रता बताने में प्रेमी समर्थ नहीं। अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कवि कहता है, तुम मृगनयनी, तुम पिकबैनी, तुम छवि की परिणीता सी, अपनी बेसुध मादकता में भूली सी, भयभीता सी, तुम उल्लास भरी आई हो, तुम आई उच्छ्वास भरी, तुम क्या जानो मेरे उर्मे कितने युग की प्यास भरी।
1: हे प्रिय, एक मैं हूँ जो तुम्हारे प्रेम में तड़प रहा हूँ, और एक तुम हो जो अपना नया नया प्रेम अभिमान के भार से दबाए जा रही हो। देखो, प्रेम में अभिमान नहीं, समर्पण जचता है। तुम अभिमान भरी आई हो अपना नव अनुराग लिए। तुम क्या जानो कि मैं तप रहा किस आशा की आग लिए।
2: चलो अच्छा हुआ तुम मान गई, तुमने अभिमान छोड़ दिया। तुम हंस रही हो और हंसा रही हो। हाँ, अब तुम मुझे मिल पा रही हो। लेकिन सुनो हे प्रिय, मैं भी इतना स्वार्थी नहीं कि प्रेम में बस लेना जानूं। मैं तुम्हें पाकर खुद लुट जाना चाहता हूं। तुम हंसती हंसाती आई हो हंसने और हंसाने को, मैं बैठा हूं पाने को फिर पाकर लुट जाने को।
1: हे सुमुखी, सुनो सुनो ना, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि एक तुम्हारे होने से सारा जग अपना लगता है। देखो, किसी दुविधा में ना पड़ना। ये सुंदर पल बड़ी ही किस्मत से हमें मिले हैं, तो सोचो मत आज इस पार या फिर उस पार, अब परवाह नहीं है। तुम अपनी हो, जग अपना है, किस पर किसका अधिकार प्रिय, फिर दुविधा का काम कहाँ, इस पार या फिर उस पार प्रिय।
2: हे सुंदरी, मेरा जीवन तो पल भर का है, क्योंकि पल भर के लिए ही तुम्हारा साथ है। इस पल को मुझे जी लेने दो। देखो, तुम चुप ना बैठो, तुम्हारी चुप्पी मुझसे सही नहीं जा रही है। कुछ हंसो बोलो प्रिय, तुम्हारे भी अधर प्यासे हैं और मेरे भी। मेरे प्यासे अधरों को अपने प्यासे अधरों से तुम खरीद लो। पल भर जीवन फिर सूनापन, पल भर तो हंस बोल प्रिय, कर लो निज प्यासे अधरों से प्यासे अधरों का मोल प्रिय।
1: कहते हैं ना, जिस तरह हर चीज की उम्र होती है, उसी तरह प्रेम की भी। प्रेम भी उत्पन्न होता है, विकसित होता है और फिर एक दिन दम तोड़ देता है। कुछ लोगों का जीते जी तो कुछ लोगों का मरने के बाद। हमारे आज के समाज में पहले प्रकार की समस्या कुछ ज्यादा ही विकराल हो गई है। तमाम रिश्ते बीच मझधार में ही साथ छोड़ जा रहे हैं। कारण अनेक है, पर सबसे प्रमुख है अंडरस्टैंडिंग का अभाव। वे जो साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे, सहसा पाते हैं कि वे तो एक दूसरे के लिए कितने अनजान हैं। गलत भी कहा है, जब हम खुद को ही नहीं जान पाते तो दूसरों को जानने का दावा कैसे कर सकते हैं। कवि भी समाज का ही हिस्सा होता है, वो भी इन समस्याओं से गुजरता है, तभी तो वो लिखता है। बस इतना अब चलना होगा फिर अपनी अपनी राह हमें। कल ले आई थी खींच आज ले चली खींच कर चाह हमें। तुम जान न पाई मुझको और तुम मेरे लिए पहेली थी, पर इसका दुख क्या, मिल न सकी जब अपनी ही था हमें।
2: पर हाय रे पागल मन, जाते जाते भी मनुहार करना नहीं भूलता। कहता है, कभी कभी याद कर लेना मुझे कि हमने एक दूसरे से प्यार किया था। पता नहीं फिर मिलना होगा कि नहीं, इसलिए रूठ कर नहीं, हंसकर विदा करो मुझे। जाओ, जहां रहो खुश रहो, आबाद रहो। था प्रेम किया हमने तुमने, इतना कर लेना याद प्रिय, फिर मिलना होगा या कि नहीं, हंसकर तो दे लो आज विदा, तुम जहां रहो आबाद रहो, ये मेरा आशीर्वाद प्रिय। श्रोताओं, सुना आपने, कवि अपनी प्रेयसी से ये मांग कर रहा है कि रूठकर नहीं, हंसकर विदा करो। यहां भारतेंदु हरिश्चंद्र याद आते हैं, जो अपनी प्रियतमा से कहते हैं, प्यारे जो जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। अर्थात, हे प्रिय, ये तो संसार की रीति है कि विदाई के समय सभी कंठ लगाते हैं, तो तुम भला रूठकर मुझे क्यों विदा कर रही हो?
1: सोचिए जरा, कैसा महसूस होगा जब आपको ये लगे कि आपकी बिछड़ी प्रेमिका आपको याद करती है? अच्छा ही लगेगा ना, कवि को भी लगता है। उसे जब ये संदेश मिलता है कि उसकी सुमुखी उसे याद किया करती है, भले ही रोकर या फिर क्रोधित होकर, ऐसा लगता है सूने जीवन में कलरव छा गया। कल सहसा यह संदेश मिला सूने से युग के बाद मुझे, कुछ रोकर कुछ क्रोधित होकर, तुम कर लेती हो याद मुझे।
2: आगे सुनिए, उलाहना तो फिर भी देना है। उलाहना ये कि अब तो बस यादों का ही रिश्ता रह गया है, खैर ये भी कुछ कम नहीं मेरे लिए। जब मैं खुद को ही भूल गया हूं तो तुम मुझे याद करती हो, ये कोई कम थोड़े ही है। ये ममता का वरदान सुमुखी है अब केवल अपवाद मुझे, मैं तो अपने को भूल रहा, तुम कर लेती हो याद मुझे।
1: वाह रे विदाता, तुम्ही ने मिलना बनाया और जुदाई भी तुम्ही ने मनाई। वाह रे ऊपर वाले, तुम्ही ने मिलना बनाया और जुदाई भी तुम्ही ने बनाई, तुम्हारी लीला समझ से परे है। उसने मेरी जिंदगी में तो रोने का रोग लिख दिया, और तुम्हारी जिंदगी में हंसने का भोग। मुझे पीड़ा दिया उसने और तुम्हें सुख, तो इस सुखद घड़ी में एक कसक की तरह मुझे क्यों याद करती हो? जिस विधि ने संयोग रचा, उसने ही रचा वियोग प्रिय, मुझको रोने का रोग मिला, तुमको हंसने का भोग प्रिय। सुख की तन्मयता तुम्हें मिली, पीड़ा का मिला प्रमाद मुझे, फिर एक कसक बनकर अब क्यों, तुम कर लेती हो याद मुझे।
2: श्रोताओं, इंसान तन्हाई से बहुत डरता है, पर सच तो ये है कि तन्हाई में ही वो खुद को पाता है। तभी तो कहते हैं कि कभी कभी अकेला भी होना जरूरी है, नहीं तो हम खुद को ही खो बैठेंगे। कवि भी इसका अपवाद नहीं है, उसकी प्रेयसी आज नहीं है। माना कि उसके ना होने से शाम उदास हो गई है, लेकिन अपने पास तो है वो। देखिए जरा इस दार्शनिक तथ्य को भगवती चरण वर्मा ने कितने सीधे सादे शब्दों में, लेकिन प्रभावशाली तरीके से कहा है। आज शाम है बहुत उदास, आज शाम है बहुत उदास, केवल मैं हूं अपने पास।
1: भगवती चरण वर्मा केवल वियोग के ही कवि नहीं है, संयोग के चित्रों का भी उन्होंने पूरी तन्मयता से अंकन किया है। जब क्षण मिलने के हों तो लाज की गांठ खोलनी ही पड़ती है। सुनिए तो सही, कवि क्या कहते हैं। छिप सकी हृदय की आग कहीं, छिप सकी हृदय की आग कहीं, छिप सका प्यार का पागलपन, तुम व्यर्थ लाज की सीमा में हो बांध रही प्यासा जीवन।
2: नायिका नई नवेली है, किशोर वय है, लाज से नहाई हुई। मिलन के समय वो मधु में भीगी किसी नई कली की तरह कांप उठती है। उसके रक्त कपोलों पर प्रेम की लाली कांप कांप कर बिखर पड़ती है। तुम नवकलिका सी सिहर उठी, तुम नवकलिका सी सिहर उठी, मधु की मादकता को छूकर वह देखो अरुण कपोलों पर अनुराग सिहर कर बड़ा बिखर।
1: नायक कहता है, हे सुमुखी, मैं तुम्हें देखूं और मंत्रमुग्ध होकर चुप हो जाऊं। मैं कुछ कहूं नहीं, बस तुम्हें सुनता जाऊं। और जब मैं अपनी बात तुम्हें सुनाऊं, तो तुम आश्चर्य में भर कर मुस्कुरा उठो। मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझे सुन रही हो। तुम एक अमर संदेश बनो, मैं मंत्र मुग्ध सा मौन रहूं। तुम कौतूहल सी मुस्का दो, जब मैं सुख दुख की बात कहूं।
2: श्रोताओं, हर प्रेमी अपनी प्रेमिका से ये सुनने को बेताब रहता है कि उसकी प्रेमिका बस उसकी दीवानी है। वो उसके मुंह से बस यही सुनना चाहता है कि हे प्यारे, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई जंचता ही नहीं। शायद ऐसा हो भी, पर प्रेमिका पता नहीं क्यों इसे स्वीकार करने में हिचकिचाती है। उस जमाने में तो और भी ऐसा होता था जब भगवती चरण वर्मा ने ये पंक्तियां लिखी।
3: थोड़ा साहस इतना कह दो, तुम प्रेम लोक की रानी हो, जीवन के मौन रहस्यों की तुम सुलझी हुई कहानी हो। होठों पर हो मुस्कान तनिक, नयनों में कुछ कुछ पानी हो, फिर धीरे से इतना कह दो, तुम मेरी ही दीवानी हो, तुम मेरी ही दीवानी हो।
1: श्रोताओं, मानव मन सदा एक सा नहीं रहता। कभी तो वो प्रेम को ही सत्य मान लेता है और महबूबा को ही खुदा, तो कभी सत्य को जानने के लिए बेचैन हो उठता है और सब कुछ छोड़कर ईश्वर की ओर भागने लगता है। सबके जीवन में ये स्थिति आती है, विशेषकर यौवन का आरंभ श्रृंगार से होता है, तो उसका समापन होते होते अध्यात्म की बारी आ जाती है। कुछ लोगों में स्वाभाविक रूप से ये क्रम आता है, तो कुछ दिल पर चोट लगने से ईश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। कवियों के साथ तो ऐसा बहुत होता है। प्राचीन काल में भर्तृहरि, मध्यकाल में घनानंद और आधुनिक काल में महादेवी वर्मा, ये तीन इसके उदाहरण हैं।
2: महादेवी तो रहस्यवादी हैं। ये भी एक प्रकार का अध्यात्म ही है, जिसमें मनुष्य उस अलौकिक सत्ता को जानने समझने के लिए बेचैन हो उठता है। इसे दर्शन भी कह सकते हैं आप। इसमें मन में सवाल उठते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है मुझे। वो कौन है जो मुझे कठपुतली की तरह नचा रहा है? वो कौन है जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है? ईश्वरीय सत्ता के प्रति एक जिज्ञासा है ये। भगवती चरण वर्मा को सुनिए।
3: मैं कब से ढूंढ रहा हूं, मैं कब से ढूंढ रहा हूं अपने प्रकाश की रेखा, तम के पट पर अंकित है निस्सीम नियति की लेखा। किसका आलोक गगन से, किसका आलोक गगन से रविशशि उडगन बिखराते, किस अंधकार को लेकर काले बादल घिराते। उस चित्रकार को अब तक मैं देख नहीं पाया हूं उस चित्रकार को अब तक, मैं देख नहीं पाया हूं, पर देखा हूं चित्रों को बन बन कर मिट जाते।
1: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपने सुनी भगवती चरण वर्मा की कविताएं। अब आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय चांदी से बना लंदन, बंगाल की मलमल और सेंट पॉल कैथेड्रल। सितंबर 1666 में पुडिंग लेन की एक बेकरी से उठी एक चिंगारी ने ऐसी भयावह आग का रूप धारण किया जिसने लंदन को राख के ढेर में बदल दिया। जब धुआं छटा तो 13,000 घर और 89 चर्च गायब हो चुके थे, जिससे एक ऐसा वित्तीय घाटा हुआ जिसका अनुमान आज के समय में 37 बिलियन लगाया जाता है। राजधानी को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते मुनाफे का सहारा लिया। जब शहर खंडहर में तब्दील था तब कंपनी लंदन के कुलीन फैशन सर्कलों में सफेद सोना, बंगाल की उत्कृष्ट मलमल जिसे बुनी हुई हवा कहा जाता था, इसका व्यापार कर रही थी। सैद्धांतिक रूप से इन भारतीय वस्त्रों और मसालों से होने वाली आय लंदन को 4 बार फिर से खड़ा कर सकती थी। इस विशाल पुनर्निर्माण के लिए अधिकांश धन 160 साल के कोयला कर से आया, जिसने लंदन शहर को अपने वैश्विक व्यापार मुनाफे का उपयोग करके अपने कर्ज चुकाने की अनुमति दी। इस पुनरुत्थान की स्थापत्य पहचान क्रिस्टोफर व्रेन द्वारा 52 चर्चों का पुनर्निर्माण था, जिसमें राजसी सेंट पॉल कैथेड्रल भी शामिल था। ये बहाली प्रभावी रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग से निकाले गए धन की देन थी। हर बार जब आप उन ऐतिहासिक चर्चों के शिखरों को देखते हैं तो आप वास्तव में बंगाल, मैसूर और गुजरात के उन भूले बिसरे बुनकरों की मेहनत को देख रहे होते हैं। आधुनिक लंदन के पत्थर भारतीय चांदी से जुड़े हुए थे, जो शहर के अस्तित्व को पूर्व के प्रेत और आत्माओं का एक गहरा वसीयतनामा बनाते हैं।
2: नजी भर के देखा

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद है, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा। अच्छी फसल, समृद्धि और खुशहाली की कामना से मनाया जाने वाला केरल का प्रमुख पर्व ओणम रविवार को भोपाल में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। यूनाइटेड मलयाली एसोसिएशन ने मलयालम मिशन के सहयोग से निजी स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजन किया। दिन भर चले कार्यक्रम में केरल की संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन की झलक देखने को मिली। फूलों से बनाई गई पारंपरिक रंगोली अथापूर्व आकर्षण का केंद्र रही। अलग अलग टीमों ने रंग बिरंगे फूलों से आकर्षक डिजाइन तैयार किए। युवाओं के बीच रस्साकशी प्रतियोगिता भी हुई। ओणम उत्सव में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र राजा महाबली का मंच पर आगमन रहा। जैसे ही राजसी वेशभूषा में महाबली मंच पर पहुंचे, दर्शकों ने उनका प्रणाम कर स्वागत किया। कार्यक्रम में महाबली की भूमिका निभाने वाले अनिल नायर पिछले 25 वर्षों से यह किरदार निभा रहे हैं। वे अब तक 200 से अधिक प्रस्तुतियां दे चुके हैं।

कार्यक्रम में मोहिनीअट्टम नृत्य विशेष आकर्षण रहा। शिलयम नाट्य श्री कला समिति की 72 शिष्याओं ने मोहिनीअट्टम के साथ कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की शैलियों का समन्वय करते हुए केरल की प्रकृति, लोक संस्कृति और ओणम के उल्लास को मंच पर प्रस्तुत किया। वहीं 7 दिवसीय रासलीला समारोह के दूसरे दिन रविवार को शिवलीला और पूतना वध प्रसंगों का मंचन हुआ। मथुरा के मानव आचार्य के निर्देशन में ब्रज के कलाकारों द्वारा पेश प्रस्तुति से रविंद्र भवन कुछ पल के लिए गोकुल में ही बदल गया। भक्ति से रविंद्र भवन कुछ पल के लिए गोकुल में ही बदल गया और भक्ति की रसधारा से सराबोर समारोह में बड़ी संख्या में कृष्ण प्रेमियों ने उनकी बाल लीलाओं का आनंद लिया। यह आयोजन सिर्फ लीला प्रदर्शन मात्र नहीं था बल्कि रासलीला जैसी प्राचीन और पारंपरिक लोक कला विधाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। आनंदोधारा एसेंबल एवं बंगाली महिला समिति की ओर से रविवार शाम सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन ऑडिटोरियम में बोरसा उत्सव 2026 का आयोजन किया गया। 2 घंटे की शाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ऋतुओं पर आधारित गीतों का उत्सव थी, जिसमें इस बार बारिश का रंग चढ़ा। बारिश से पहले भीषण गर्मी में मेघों की पुकारती धरती की व्याकुलता होती है, इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत ग्रीष्मगान नाई रोशो नाई और चोखे अमर तृष्णा की प्रस्तुति से हुई। इसके बाद कुल 10 गीत बारिश पर गाए गए। प्रस्तुतियों में रविंद्र संगीत के बाउल गायन के रंग भी देखने को मिले।

एक मंच पर रविवार की बैतूल, रविवार को बैतूल और बुंदेलखंड की लोक परंपरा दर्शकों को देखने को मिली। कलाकारों लोक नृत्य में इसे जीवंत कर दिया। मौका था कला एवं संस्कृति पर केंद्रित साप्ताहिक गतिविधि संभावना का। आयोजन ट्राइबल म्यूजियम में हुआ। म्यूजियम परिसर में लोक नृत्य का आयोजन हुआ। अविनाश ध्रुवे और साथियों ने बैतूल के ग्वालों की परंपरा को गौंड जनजातीय ठाट्या नृत्य में पेश किया। सागर के दीपेश पांडे और उनके दल ने बुंदेलखंड के नौरता नृत्य की सुरीली प्रस्तुति दी। ढोल मंजीरे और शहनाई की धुन के बीच थिरके कदम। परिसर में ढोल मंजीरे और शहनाई की धुन के बीच नृत्य को पेश किया गया। लोक कलाकारों ने बताया पशुओं की देखभाल करने वाले ग्वाले दीपावली पर इसी प्रस्तुति देते हैं। वहीं नौरता बुंदेलखंड में नौरता कन्याओं द्वारा नवरात्रि में किया जाने वाला नृत्य है। गेरू, हल्दी, छुई और सेम के पत्तों के बीच इस प्रस्तुति को दर्शकों ने खूब सराहा।

सदाबहार नगमों से रविवार की शाम सजी, जहां एक से बढ़कर एक नगमों ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। महफिल की सबसे खास बात यह रही कि इसे सजाने वालों में चिकित्सक, अधिकारी और सिंगर सभी एक साथ शामिल थे। शाम 6 बजे रविंद्र भवन के हंसध्वनि सभागार में आगाज हुआ। टाइटल सॉन्ग गीत गाता चल से शुरुआत हुई। सरिता व गिरीश बंगाली का ये पर्दा हटा दो और असमत रावत कर्नल विजय सहगल का ये रात ये मौसम जैसे गीतों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ये दिल जो ना कह सका गाकर लूटी महफिल। कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर टी एन दुबे को गेस्ट ऑफ ऑनर दिया गया। दुबे ने सदाबहार गीत ये दुनिया उसी की है और दिल जो ना कह सका पेश कर महफिल लूट ली। गौर महल में हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा आयोजित सावन उत्सव और शिल्प मेले का रविवार को समापन हो गया। अंतिम दिन गौर महल के परिसर में शहरवासियों और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। स्थानीय और प्रदेश भर से आए कलाकारों ने हिस्सा लिया, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सावन उत्सव के दौरान लगाए गए शिल्प मेले में देश और प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए बुनकरों व शिल्पकारों द्वारा तैयार हस्तशिल्प, पारंपरिक साड़ियाँ, बाघ प्रिंट और हस्तनिर्मित सजावटी सामानों की जमकर खरीदी हुई। शब्द और अनुभव किताबें सिखाएंगी। रविवार को दो किताबों का लोकार्पण हुआ। इनमें एक अंतर्ध्वनि और दूसरी भक्ति गीतांजलि शामिल रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी लेखिका संघ की अध्यक्ष डॉक्टर साधना गंगराड़े ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी ने कहा कि जब महिलाओं का अनुभव शब्दों में ढलता है तो साहित्य को नई दिशा मिलती है। वहीं डॉक्टर साधना गंगराड़े ने कहा कि पहली किताब लेखक के लिए अपने शब्दों का आकाश पाने जैसी होती है।

वीरजी वोरा, वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी EIC को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया, ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। EIC अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने रेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5,00,000 रुपए का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं, वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था, जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।

एक शाही दहेज, सात द्वीपों और चाय की प्याली से बना साम्राज्य। साल 1662 में राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से विवाह किया। ये एक ऐसा मिलन था जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उस समय के दरबारियों के लिए राजकुमारी का दहेज वस्तुओं का एक अजीब संग्रह था। चाय का एक संदूक और सात चट्टानी मच्छरों से भरे द्वीपों का एक समूह जिसे बम्बई के नाम से जाना जाता था। लंदन के सबसे प्रसिद्ध डायरी लेखक और गपशप के शौकीन सैमुअल पेपिस इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने बम्बई को एक बेचारा छोटा सा द्वीप कहकर खारिज कर दिया और कड़वाहट के साथ भविष्यवाणी की कि यह राजा के लिए दुख के सिवा कुछ नहीं लाएगा। उस समय इन द्वीपों की कीमत इतनी कम आंकी गई थी कि क्राउन ने अंततः इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष के मामूली किराए पर पट्टे पर दे दिया। हालांकि यही बेचारा छोटा सा द्वीप ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक केंद्र बना। इसने डच और पुर्तगाली प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए एक आदर्श आधार प्रदान किया और अंततः अफीम और चाय के व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य किया, जिसने औद्योगिक क्रांति को गति दी। इस बीच चाय के उस एक संदूक ने एक सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कर दी। कैथरीन से पहले चाय एक रहस्यमयी चीनी पेय थी जो केवल विशेष कॉफी हाउसों में बेची जाती थी। उनके आने के बाद यह एक राष्ट्रीय जुनून बन गई। 1666 तक 1 पाउंड चाय की कीमत बम्बई के पूरे वार्षिक किराए के बराबर हो गई थी। इतिहास ने साबित किया कि पेप्स गलत थे, जिसे उन्होंने एक बोझ समझा था। वे वास्तव में एक वैश्विक महाशक्ति का जन्म था। इस शाही दहेज के बिना लंदन में शायद कभी चाय का स्वाद विकसित नहीं होता और बम्बई के वे मछली पकड़ने वाले गांव कभी ब्रिटिश राज के मुकुट का रत्न नहीं बन पाते।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आजाद हिंद के इस मंच पर मैं तारीख और मेरे साथी इतिहास फिर प्रस्तुत हैं आप तक लगातार पहुंचाते उन व्यक्तियों की कथाएं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी भारत को समर्पित करते हुए स्वतंत्रता में अपनी तरह से अपना योगदान दिया।
0: और साथियों, आज हम फिर से इतिहास के एक पन्ने से ली गई एक कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं।
1: आज फिर से हम आजाद हिंद में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए अध्याय को आपके सामने ला रहे हैं।
0: एक अध्याय जिसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने रोज लिखा।
1: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के क्रांतिकारी रतन सिंह की।
0: तारीख, पंजाब ने इस देश को जितने क्रांतिकारी दिए उसकी मिसाल मिल पाना मुश्किल है।
1: बिल्कुल इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के आगमन से बहुत पहले ही पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष आरंभ हो चुका था। अंग्रेजों के खिलाफ ये संघर्ष सुधारवादी आंदोलनों के रूप में प्रकट हो रहा था।
0: सबसे पहले आत्मानुशासन और स्वशासन में विश्वास करने वाले नामधारी संप्रदाय ने संघर्ष का बिगुल बजाया। बाद में लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई।
1: इतिहास चाहे देश में हो या विदेश में, पंजाब स्वतंत्रता संग्राम में हर मोर्चे पर आगे रहा।
0: उधम सिंह, भगत सिंह, भगवान सिंह लोंगेवाला, सुखदेव, लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारियों की शहादत हो या जलियांवाला बाग का वो मंजर, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पंजाब की भूमिका को नजरअंदाज करना नामुमकिन है।

0: इस कड़ी में एक और नाम है क्रांतिकारी रतन सिंह का। रतन सिंह बब्बर अकाली दल के सदस्य थे।
1: 1921 में चली बब्बर अकाली लहर का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये लहर 1921 से 1925 तक पूरे यौवन पर थी। इसके बाद धीरे धीरे इस लहर ने 1945 तक का समय तय किया।
0: बब्बर अकाली आंदोलन सिखों का एक प्रयास था जो अंग्रेजों को देश से आजाद कराने के लिए और भ्रष्ट महंत से एक सशस्त्र विद्रोह करके अपने गुरुद्वारों को मुक्त कराने का था। इसकी सदस्यता मुख्यतः ग्रामीण थी। भगत सिंह भी इस आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए।
1: बब्बर अकाली वो योद्धा थे जो देश की खातिर मरने के लिए तैयार रहते थे और उनके नाम के पीछे बब्बर अकाली लगाने का अर्थ था कि अब देश के लिए मर मिटने का समय आ गया है। रतन सिंह भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे।
0: कथा वहां से शुरू होती है जब बब्बर अकाली दल के 11 क्रांतिकारियों को ट्रेन द्वारा जेल ले जाया जा रहा था।
1: बब्बर अकाली दल के 11 क्रांतिकारी जिन्हें बेड़ियां लगी थीं, उनमें से एक क्रांतिकारी रतन सिंह भी थे।
0: क्योंकि सारे क्रांतिकारियों को बेड़ियां लगी हुई थी, इसलिए ब्रिटिश अधिकारी निश्चिंत थे
1: और उनकी इसी निश्चिंतता का फायदा उठाते हुए भटिंडा के पास क्रांतिकारियों ने युद्ध शुरू कर दिया।
0: ट्रेन में मौजूद नागरिकों ने भी अपने देश के क्रांतिकारियों का ही साथ देना उचित समझा और उन्होंने दिया भी।
1: उस समय अंग्रेजों को निहत्थी भीड़ पर गोली न चलाने के सख्त आदेश थे।
0: रतन सिंह और उसके साथियों ने बड़ी बहादुरी से पूरी पुलिस पार्टी का सामना किया।

0: इस भिड़ंत में ब्रिटिश पुलिस पार्टी का एक हेड कांस्टेबल मारा गया।
1: ब्रिटिश शासन इस घटना से बौखला गया और उसने क्रांतिकारी रतन सिंह पर 3,000 का इनाम रखा।
0: ब्रिटिश पुलिस पलटन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरे पंजाब में रतन सिंह की खोज शुरू कर दी।
1: ब्रिटिश पुलिस की कोशिशें तब रंग लाई जब एक दिन रतन सिंह रुड़की की एक झोपड़ी में सो रहे थे।
0: इसी वक्त 3,000 रुपए के लालच में किसी मुखबिर ने ब्रिटिश पुलिस को जाकर खबर कर दी।
1: खबर पाते ही पुलिस वहां पहुंच गई और पूरी की पूरी ब्रिटिश पलटन ने उस झोपड़ी को घेर लिया।
0: जब तक क्रांतिकारी रतन सिंह को स्थिति का पता चलता बहुत देर हो चुकी थी।
1: फिर भी इतिहास उनके पास भाग निकलने का एक मौका था।
0: लेकिन तारीख रतन सिंह ने कायरों की तरह भागने की बजाय वीरों की तरह डटकर ब्रिटिश पुलिस से युद्ध करने का फैसला किया।
1: ब्रिटिश पुलिस ने उनके सामने आत्मसमर्पण की भी पेशकश की, लेकिन क्रांतिकारी रतन सिंह ने आत्मसमर्पण करने से बेहतर शहीद होना समझा।
0: जब रतन सिंह ने उनकी मांग ठुकरा दी तो ब्रिटिश पुलिस पार्टी ने गोलियां चलाना शुरू कर दी।
1: लेकिन इस हमले के जवाब में रतन सिंह डरे नहीं। उनके पास बस एक रिवॉल्वर और चंद गोलियां होने के बावजूद उन्होंने ब्रिटिश पुलिस पार्टी का डटकर

0: झोपड़ी को घेरते समय ब्रिटिश अधिकारियों को लगा कि ये भिड़ंत कुछ ही मिनट चलेगी, लेकिन रतन सिंह ने उनके इस विचार को चकनाचूर कर दिया।
1: लेकिन चूंकि पुलिस पार्टी का दल बहुत बड़ा था और अधिक हथियारों से लैस भी, अकेले रतन सिंह आखिर कितने वक्त तक उनका मुकाबला करते, और कुछ गोलियां लगने के बाद उनकी हिम्मत भी जवाब देने लगी।
0: लेकिन गोलियां लगने के बावजूद रतन सिंह ने ब्रिटिश पुलिस पार्टी के अपने चार शत्रुओं को मार गिराया।
1: इसके बाद ज्यादा देर तक रतन सिंह की सांसें उनका साथ न दे सकी और उन्होंने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए।
0: ये दिन था 15 जुलाई 1932, जिस दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक और क्रांतिकारी अपने ही देशवासी की गद्दारी की भेंट चढ़ गया।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: लश्कर और सीधी स्टीमशिप युग का मानवीय ईंधन। 1880 के दशक में एक P&O स्टीमशिप भाप के जहाज के डेक पर खड़े होने की कल्पना कीजिए। डेक के ऊपर का दृश्य अविनाशी आकर्षण और गहरी संतुष्टि से भरा है। अमीर यात्री शामियाने के नीचे आराम कर रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, जबकि जहाज हिंद महासागर के शांत पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे जहाज उन मानसूनी हवाओं से बेपरवाह है जो कभी यहाँ के जीवन को नियंत्रित करती थी। लेकिन पॉलिश किए हुए टी की लकड़ी के नीचे जहाज के दम घोटने वाले भीतरी हिस्सों में एक अलग ही दुनिया मौजूद है। ये लश्करों और सीधियों की दुनिया है। वे गुमनाम समुद्री मजदूर जिन्होंने हिंद महासागर को ब्रिटिश झील बनाना संभव बनाया। जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आगे बढ़ी, औद्योगिक क्रांति ने हिंद महासागर को बदल दिया। 1869 में स्वेज नहर के खुलने और भाप तकनीक के उदय का मतलब था कि जहाज अब हवाओं के गुलाम नहीं रहे। हालांकि इन नए यांत्रिकी दिग्गजों को चलाने के लिए भारी मात्रा में मानवीय श्रम की आवश्यकता थी। 1914 तक ब्रिटिश व्यापारिक बेड़े में 51,600 से अधिक लश्कर कार्यरत थे। लश्कर मुख्य रूप से भारतीय नाविक थे, हालांकि वे बेड़े के संचालन के लिए अनिवार्य थे, लेकिन वे एक सख्त नौसैनिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर थे। उनका जीवन एशियाटिक आर्टिकल्स द्वारा शासित था, एक कानूनी ढांचा जो बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करता था। इसे विशेष रूप से यूरोपीय नाविकों को दिए जाने वाले अनुबंधों से अलग और कम सुरक्षात्मक बनाया गया था। ये वे डेक हैंड और विशेषज्ञ थे जिन्होंने पारंपरिक डाउ और जंग जहाजों से निकलकर भाप युग के जटिल रखरखाव और संचालन को संभाला था। जहाज के निचले हिस्से में और भी गहराई पर सीधी काम करते थे। ये अफ्रीकी मजदूर थे जिनमें से कई गुलाम मूल के थे या वे स्वतंत्र लोग थे जिन्होंने बॉम्बे या जंजीबार जैसे बंदरगाहों में नए जीवन की तलाश की थी। उनका काम शायद समुद्र के इतिहास में सबसे कठिन था। वे फायरमैन थे। उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर की तीव्र गर्मी में सीधी अपनी शिफ्ट कोयले को उन दहकती भट्टियों में झोंकने में बिताते थे जो बॉयलरों को चालू रखती थी। ये कमर तोड़ देने वाला और खतरनाक काम था जो ऐसी अंधेरी जगहों पर किया जाता था जहां रोशनी के नाम पर केवल आग की लपटों की चमक होती थी। लश्कर और सीधी की कहानी औद्योगिकरण और विस्थापन की कहानी है, जबकि स्टीमशिप को अक्सर प्रगति के प्रतीक के रूप में सराहा जाता है। जिसने मानसून के अत्याचार पर विजय प्राप्त की, वो प्रगति एक विविध बहुजातीय कार्यबल के कंधों पर बनी थी। ये लोग एक नई प्रकार की अफ्रो एशियाई पहचान का प्रतिनिधित्व करते थे, एक ऐसी पहचान जो सुहाली तट के बाजारों या गुजरात के संघों में नहीं बल्कि वैश्विक पूंजीवाद के इंजन के रूप में गढ़ी गई थी। वे पाल वाली प्राचीन दुनिया और कंटेनर जहाजों वाली आधुनिक दुनिया के बीच के सेतु थे। लश्करों और सीधियों के बिना ब्रिटिश झील सूख जाती और 19वीं सदी के हिंद महासागर का आपस में जुड़ा जाल रुक जाता। वे शांत और कालिक से सने हुए नायक थे जिन्होंने उस वैश्वीकृत दुनिया को ऊर्जा दी जिसे हम आज पहचानते हैं।

0: शब्दों के शिल्पकार। हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कवित्री अमृता प्रीतम की जिंदगी की कहानी। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
1: और मैं संदीप।
0: अखिल ब्रह्मांड में अगर कोई चीज हर जगह व्याप्त है तो वो है प्रेम। ये प्रेम ही है जिससे बंधकर धरती सूरज का फेरा लेती है। ये प्रेम ही है जिससे खिंचकर नदियां पागलों की तरह समंदर की ओर भागती हैं। कोयल इसी की तान सुनाती है, पपीहा इसी का गीत गाता है। चारों तरफ प्रेम की ही महिमा है। तभी तो भगवान को खोजते खोजते कबीर के मुंह से हठात निकल पड़ा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।
1: ये जो प्रेम है ना, ये दिल में पैदा होता है, लेकिन इसकी रोशनी बाहर फैलती है। जैसे कि हिरन की नाभि में पैदा होने वाली कस्तूरी की सुगंध से पूरा जंगल महकता है। अगर इंसान में लिखने का हुनर हो तो यही प्रेम महाकाव्य बन जाता है। पंजाब के संदर्भ में बात करें तो वहां प्रेम की एक बेमिसाल पुजारन हुई हैं, अमृता प्रीतम। मीरा की जो दीवानगी कृष्ण के प्रति थी, उसका लौकिक स्वरूप अमृता प्रीतम में देखने को मिलता है। कहीं से उनकी कुंडली मिल जाए तो ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा योग था उसमें जिसने प्रेम को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके एक औरत की शक्ल दे दी।
0: जी हाँ, उन्हें पढ़ते जाइए और आप यही कहेंगे कि वो और कुछ नहीं, बस प्रेम है। बाहर से भीतर तक प्रेम, तन से लेकर मन तक और मन से लेकर आत्मा तक, बस एक ही सत्ता, प्रेम। ये प्रेम ही है जो अक्षर बनकर उनकी लेखनी से बह रहा है। प्रेम ही है जो स्याही बनकर कागज पर उभर रहा है। और तो और, वो कागज भी प्रेम का ही है जिस पर प्रेम की स्याही से प्रेम के अक्षर लिखे जा रहे हैं। बुढ़ापे तक उनके भीतर एक अलहड़ किशोरी खिलखिलाती रही, वो किशोरी जो मोहब्बत की प्यासी थी। प्यास भी ऐसी वैसी नहीं, अदम्य। जितना ही वो उसे पीती रही उतनी ही प्यासी रही।
1: तो श्रोताओं, ये थी उस अमृता प्रीतम की भूमिका जिनकी बात आज हम करने जा रहे हैं। लेकिन ये भूमिका उनकी शख्सियत को देखते हुए कतई काफी नहीं है।
0: चलिए अब अमृता प्रीतम का जीवन परिचय भी जान लेते हैं।

0: अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 में पंजाब के गुजरावाला में हुआ था। वो एक हसीन औरत थी और उससे भी बढ़कर एक हसीन साहित्यकार। जैसा कि प्रायः साहित्यकारों के साथ होता है, उनका जन्म आर्थिक तंगी के बीच हुआ और इससे भी बढ़कर त्रासदी ये कि बचपन में ही माँ का साया सिर से उठ गया। पिता करतार सिंह धर्म प्रचार में ज्यादा व्यस्त रहते। उन्होंने अपनी बेटी का पालन पोषण अपनी ही देखरेख में किया। इसका नतीजा ये हुआ कि धर्म और मर्द जात के प्रति उनका दृष्टिकोण एक अजब लव हेट का रिश्ता रहा। इसी में उम्र भर वो भटकती रहीं और ये भटकाव उनके रचे साहित्य में भी दिखाई पड़ता है। ये विडंबना उनके अमृत कौर से अमृता प्रीतम बनने कहलाने की आकांक्षा में प्रकट होती है।
1: जिन हालातों में उन्हें पाला पोसा गया, वे उनके साहित्य रचना की दृष्टि से अहम साबित हुए। वे उम्र भर पंजाबी और पंजाबियत में रची बसी रहीं। नतीजा ये हुआ कि कीट्स और शैली की वजह से वो वारिस शाह और शाह हुसैन से जुड़ी रहीं। समाज के सहेजे एक सहृदय पति को छोड़कर उन्होंने इमरोज जैसे कलाकार का साथ ढूंढा, जिसने अमृता से इतनी बेपनाह मोहब्बत की कि सामाजिक धारणाएं झूठी साबित हो गईं।
0: पंजाब में पैदा होकर भी और पंजाबी में लिखकर भी अमृता पूरे भारत की थी, या यूं कहें कि पूरी दुनिया की थी। वो प्रेम की एक ऐसी आवाज थी जिसे समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। पंजाब के बाहर जब पंजाबी साहित्य का जिक्र होता है तो उसमें अमृता का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन दुनिया के लिए उनका साहित्य पंजाबी साहित्य नहीं है, बल्कि प्रेम का सागर है।
1: वो प्रेम की कवित्री थी। महादेवी की ही तरह वे प्रेम दीवानी थी, लेकिन महादेवी से वे इस मायने में अलग थीं कि उनकी तरह उन्होंने अपने प्रेम को रहस्यवाद के आवरण में छुपाया नहीं, बल्कि बेबाक होकर दुनिया को बताया। ढोल पीट पीट कर कहा, हाँ मुझे प्यार है, प्यार है, प्यार है। उन्होंने सामाजिक दायरों को तोड़कर अपने भीतर मौजूद औरत को मुखरित किया है।
0: डॉक्टर शैलजा सक्सेना ने अमृता प्रीतम को तब सुना जब वो हायर सेकेंडरी में पढ़ती थी। वो उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उन पर पूरा एक संस्मरण ही लिख डाला। इस संस्मरण के कुछ अंश हम यहाँ आपके लिए उद्धृत कर रहे हैं। उनके कविता पढ़ने का ढंग बिल्कुल नया लगा। जोश की जगह ठहराव, बुलंद आवाज की जगह धीमा स्वर, जैसे कहीं गहरे से आवाज आ रही हो।
1: अमृता प्रीतम का गुण ये है कि जब वे गद्य लिखती हैं तो उसमें पद्य सी तरलता होती है, और जब पद्य लिखती हैं तो गद्य सी सहजता। पढ़ने का अंदाज ऐसा मानो कविता जी रही हूं। हर शब्द प्रेम और दर्द से भीगा हुआ। साहिर लुधियानवी के लिए लिखी उनकी रचनाएं निजी प्रेम की ऐसी खुली स्वीकृति जो किसी लेखिका के लिए तो क्या, लेखक के लिए भी मुझे इस समय असंभव दिखती। इमरोज के साथ उनका रहना और इन सबको खूबसूरत तरीके से बताना, जैसे कि उस प्रेम से बड़ी कोई चीज ना हो, इन सब ने मिलकर अमृता जी के व्यक्तित्व को कुछ रहस्यमय सा बना दिया था।
0: लगता कि क्या कारण है जो उन्हें अन्य औरतों की तरह समाज का डर नहीं, वो भी तब जबकि वो इतनी प्रसिद्ध है। क्या कारण है जो उन्हें अपने एक तरफा प्यार के मजाक बन जाने की चिंता नहीं? क्या कोई अपनी निजी जिंदगी दुनिया के मुंह पर इस तरह बेबाक होकर खोल सकता है? वो अपने प्यार में डूबी ऐसी बेखबर थीं कि उनके जीवन की कोई खबर सचमुच की खबर बन सकती है, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं था। वो अपनी सांसों के तानपुरे पर अपने प्रेम के गीत गा रही थीं। इस प्रेम की देह नहीं थी, केवल मन ही मन था।
1: एक बार दूरदर्शन वालों ने अमृता से साहिर और इमरोज के रिश्ते के बारे में पूछा, तो जानते हैं श्रोता उनका क्या जवाब था? लीजिए, आप खुद ही सुन लीजिए।
0: दुनिया में एक ही रिश्ता होता है, तड़प का, विरह की हिचकी का और शहनाई का, जो विरह की हिचकी में भी सुनाई देती है। यही रिश्ता साहिर से भी था और इमरोज से भी।
1: किसी स्त्री के लिए अपने दो दो प्रेमियों के बारे में इस तरह दूरदर्शन के राष्ट्रीय मंच से ऐलान करना बड़े ही जिगर का काम है। 1963 की बात है, विज्ञान भवन में एक सेमिनार था। उसमें प्रख्यात लेखिका ममता कालिया ने उनसे पूछा कि उनकी कहानियों में ये इंद्रजीत कौन है। तो अमृता जी ने एक दुबले पतले लड़के को उनके आगे खड़ा करते हुए कहा, इंद्रजीत, ये है इंद्रजीत, मेरा इमरोज।
0: इमरोज के लिए उनके एहसास की इंतहा क्या थी, दीवानगी का आलम क्या था, ये उनकी इस कविता में साफ दिखाई देता है। कलम ने आज गीतों का काफिया तोड़ दिया, मेरा इश्क ये किस मुकाम पर आया है, उठो अपनी गागर से पानी की कटोरी दे दो, मैं राहों के हादसे उस पानी से धो लूंगी।
1: लेकिन श्रोताओं, दिलचस्प तो ये है कि इमरोज को भी अमृता से उतनी ही बेइंतहा मोहब्बत थी। उन्हें इस बात का गुरूर था कि अमृता जैसी प्यार करने वाली औरत उनकी जिंदगी में आई। उनके खुद के लफ्जों में, अमृता प्यार ही प्यार है, मैं लफ्जों में बता नहीं सकूंगा कि उसने मुझसे कितना प्यार किया है, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा। मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। ये गीत तो आपने सुना ही होगा, वही यहां भी हुआ। अमृता की सोहबत ने इमरोज को कवि बना दिया। अपनी खूबसूरत मोहब्बत पर अभिभूत होकर वे लिखते हैं, कभी कभी खूबसूरत ख्याल खूबसूरत शरीर भी धारण कर लेते हैं।
0: इसी तरह अमृता प्रीतम ने साहिर की मोहब्बत को भी उतनी ही बेबाकी से स्वीकार करते हुए लिखा, फिर तुम्हें याद किया, हमने आग को चूम लिया, इश्क जहर का प्याला सही, मैंने एक घूंट फिर से मांग लिया।
1: बड़ा अजीब लगता है ना श्रोताओं, किसी औरत द्वारा दो दो पुरुषों के प्यार को खुलेआम स्वीकार करना। लेकिन इससे भी अजीब तो ये है, जैसे कोई नटनी रस्सी पर संतुलन साधकर चलती है, वैसा ही संतुलन अमृता के इन दोनों रिश्तों के बीच दिखाई देता है। कहीं कोई टकराहट नहीं। वो कैसे, ये जानने के लिए इन दोनों रिश्तों की पृष्ठभूमि में चलते हैं।
0: इमरोज कोई साहित्यकार नहीं थे, बल्कि एक चित्रकार थे जो साहिर लुधियानवी की किताबों के लिए कवर डिजाइन करते थे। अमृता बेपनाह मोहब्बत करती थी साहिर से, लेकिन अपने जीवन के 40 बरस उन्होंने इमरोज के साथ बिताए। ये संग कैसे बना, इसके विषय में इमरोज ने कहा था,
1: वो 1957 के आखिरी दिन थे। अमृता की किताब आखिरी खत का कवर डिजाइन बनाना था। वे एक आर्टिस्ट तलाश रही थी। एक सांझे दोस्त ने मुझे इस काम के लिए अमृता से मिला दिया। कवर डिजाइन भी बन गया और अमृता से मेरी वाकफियत भी। धीरे धीरे ये वाकफियत दोस्ती बनने लगी और दोस्त चलते चलते जिंदगी में हम सफर बन गए।
0: 31 अक्टूबर 2005 को जब अमृता ने अंतिम सांस ली, तब भी इमरोज उनके साथ थे। बड़ा ही रूहानी साथ था इनका। सबसे बड़ी बात तो ये कि प्यार में जो एक जलन होती है वो कहीं नहीं दिखती इमरोज के प्रेम में। ये जानते हुए भी कि अमृता की मोहब्बत साहिर लुधियानवी थे, उन्होंने अपनी और अमृता की दोस्ती में कहीं कोई अड़चन या अधूरापन नहीं महसूस किया। खुद उनके शब्दों में सुनिए कि वो क्या महसूस करते थे।
1: साहिर के साथ अमृता का रिश्ता मिथ्या और मायावी था, जबकि मेरे साथ उनका रिश्ता सच्चा और हकीकी। वो अमृता को बेचैन छोड़ गया, लेकिन मेरे साथ वो संतुष्ट रही। दोस्तों, समझ नहीं आता कि किसी पुरुष का इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है कि वो अपनी संगिनी की दूसरे के लिए मोहब्बत को जानकर भी खुश रह सके।
0: 2008 में जागरण समूह की पत्रिका सखी की पत्रकार मनविंदर कौर दिल्ली में हौज खास वाले इमरोज अमृता के मकान के 25 में ये जानने के लिए गईं कि अमृता के बिना इमरोज कैसा महसूस कर रहे हैं। इमरोज ने उन्हें हैरत में डालने वाला जवाब दिया। ये जवाब था, अमृता को पास्ट टेंस मत कहो, वो मेरे साथ ही है, उसने जिस्म छोड़ा है साथ नहीं। श्रोताओं, इस घर के प्रवेश द्वार पर उस समय भी इमरोज द्वारा डिजाइन की गई इमरोज अमृता के नाम की तख्ती लगी थी।
1: कहते हैं विरह प्रेम की कसौटी है, जैसे धीमी आंच पर पककर गन्ने का रस गाढ़ा हो जाता है, वैसे ही विरह की आंच में पककर प्रेम का सौंदर्य और भी निखर जाता है। इस विरह से जो नहीं गुजरा वो प्रेम की महानता को समझ ही नहीं सकता। जो सच्चा प्रेम होता है वो विरह की आग में तपकर खरा सोना बन जाता है, और जो झूठा होता है वो इसमें जलकर भस्म हो जाता है। अमृता भी इस विरह से गुजरी हैं, तभी तो अपने प्रेम की गहराई का एहसास है उन्हें। खुद उनके शब्दों में सुनिए।
0: चैत ने करवट ली रंगों के मेल के लिए, फूलों ने रंग बटोरे तू नहीं आया। दोपहरें लंबी हो गई, दाखों को लाली छू गई, दरातों ने गेहूं की बालियां चूम ली तू नहीं आया।
1: श्रोताओं, यहां स्पष्ट कर दें कि हम अमृता जी की पंजाबी कविताओं का हिंदी अनुवाद सुनवा रहे हैं, लेकिन उनकी मूल भाषा में इन कविताओं की क्या खूबसूरती है ये पंजाबी समझने वाला ही समझ सकता है। नमूने के तौर पर इसी कविता का मूल पंजाबी रूप भी हम आपको सुनाते हैं।
0: चेतर ने पासा मोड़िया रंगादा मेले वास्ते, फुल्ला ने रेशम जोड़िया तू नहीं आया। ओहिया दोपहरिया लंबिया, दाखानू लाली छोह गई, दाती ने कणका चुमिया तू नहीं आया।
1: प्रिय से मिलने की इच्छा अमृता प्रीतम में इस कदर प्रबल है कि वो मृत्यु के बंधन को भी स्वीकार नहीं करती। शरीर से परे भी प्रेम की सीमा होती है, ये उनसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। लीजिए पेश है उनकी अंतिम कविता जो इसी भाव से उत्प्रोत है।
0: मैं फिर मिलूंगी, कहां किस तरह नहीं जानती, शायद तुम्हारी कल्पना की चिंगारी बनकर तुम्हारे कैनवास पर उतरूंगी, या शायद तुम्हारे कैनवास के ऊपर एक रहस्यमय रेखा बनकर खामोश तुम्हें देखती रहूंगी। ये जिस्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर चेतना के धागे कायनाती कणों से बने होते हैं। मैं उन कणों को चुनूंगी, धागों को लपेटूंगी, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी।
1: श्रोताओं, मोहब्बत की हद से गुजरने वाली अमृता प्रीतम की इस प्रेम पाती को सुनकर क्या आपको लैला मजनू फिल्म का ये गीत गुनगुनाने का मन नहीं हो रहा? भाई हमें तो हो रहा है।
0: अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए, जिस्म मिट जाए कि अब जा फना हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए।
1: अमृता जी की रचनाएं बनावटी नहीं होती थी, यही वो चीज है जो उन्हें खास बनाती है। उन्होंने जो जिया है, जो भोगा है, वही लिखा है। लिखा क्या है वो तो बिना कोशिश के ही खुद बखुद कागजों पे उतरता गया। देश के बंटवारे के बाद वो लाहौर से भारत आई थी। उन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में पसंद किया जाता है। बंटवारे का दंश उन्होंने खुद झेला है। ये दंश उनकी कविता आज अखां वाद शाहनू में साफ देखने को मिलता है। जमीन पर लहू बहने लगा, जमीन पर लहू बहने लगा इतना कि कब्रें चूने लगीं और मोहब्बत की शहजादियां मजारों में रोने लगीं।
0: मजहब के नाम पर होने वाली हिंसा इस संवेदनशील लेखिका को भीतर तक झकझोर देती है। उनके अनुसार आजादी के नाम पर यह बहुत बड़ा उल्हाना है, लेकिन ये उल्हाना भी वो एक खास अंदाज में देती हैं। आप भी सुनिए। जैसे इश्क की जबान पर एक छाला उभर आया हो, जैसे इश्क की जबान पर एक छाला उभर आया हो, जैसे सभ्यता की कलाई से एक चूड़ी टूट गई हो। एक महिला है वो, तो इसीलिए कलाई की चूड़ियों की कीमत समझती हैं, और इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं।
1: कहते हैं अमृता प्रीतम एकमात्र कवित्री हैं जो तूलिका से कविता चित्रित करती हैं। वे बात मानो कहती नहीं, उसका चित्र बनाती हैं। जरा एक बानगी देखिए। मेरे खामोशी की गली से अक्षरों के साए गुजरते रहे, चांद की मटकी से जब कतरे से कुछ गिरते रहे, रात की दहलीज पर तारे दुआ करते रहे।
0: तारे दुआ करते रहे, वाह। इश्क अमृता के लिए अमृत था, जिसकी एक बूंद भी अगर विष में गिर जाए तो उस विष को वो भी खुशी खुशी पी लेती। कुछ इसी बात को प्रकट करती उनकी एक कविता, पंजाबियों के मन में लोक गीतों की तरह बसती है। पेश है इस कविता की कुछ पंक्तियां। घुल गई थी इसमें एक बूंद तेरे इश्क की, इसीलिए मैंने उम्र की सारी कड़वाहट को पी लिया।
1: श्रोताओं, एक प्यार भरा दिल हर चीज से प्यार करता है। अमृता इस धरती से भी बेपनाह मोहब्बत करती थी। साइंटिस्ट ये जो विनाश का सामान तैयार कर रहे हैं और हुक्मरान जो उन्हें इस्तेमाल करने के मौके तलाश कर रही हैं, ये सब इस संवेदनशील साहित्यकार को फिक्रमंद कर देते हैं। मैं रहूं ना रहूं मगर ये जहां रहे, यही उनकी तमन्ना थी। इस तमन्ना की अभिव्यक्ति उनकी कविता एक खत में हुई है। इसमें दुनिया के साइंसदानों और हुक्मरानों से बड़े ही मर्मस्पर्शी स्वर में वे विनती करती हैं कि इस धरती को तबाह ना करो। लीजिए, आप भी सुनिए इस कविता की कुछ पंक्तियां, और वो लोग भी सुने जो गोलियां, बंदूकें, एटम बम और मिसाइलें बनाने में मसरूफ हैं।
0: साइंसदानों दोस्तों, गोलियां, बंदूकें और एटम बनाने से पहले इस खत को पढ़ लेना। हुक्मरानों दोस्तों, गोलियां, बंदूकें और एटम बनाने से पहले इस खत को पढ़ लेना। सितारों के हर्फ और किरणों की बोली अगर पढ़नी नहीं आती, किसी आशिक अदीब से पढ़वा लेना। और एक माँ की ये मात्र बोली है, तुम बैठ जाना किसी भी ठाव और खत पढ़वा लेना किसी माँ से, फिर आना और मिलना। मुल्क की हद है जहां चांद सूरज दो दवातें, हाथ में कलम लो, इस खत का जवाब दो और दुनिया की खैरियत के दो हर्फ भी डाल दो। तुम्हारी अपनी धरती तुम्हारे खत की राह देखती, बहुत फिक्र कर रही।
1: वाह श्रोताओं, आपने ये तो देख ही लिया कि अमृता में बेबाकपन कितना ज्यादा था। अपनी स्वतंत्र चेता छवि के कारण निजी जिंदगी में भी वे बहुत चर्चित रहीं। उन्होंने कविता लिखी है मेरा पता, इसमें उनके स्वतंत्र दृष्टिकोण की झलक देखी जा सकती है। आप खुद सुनिए इसे और फैसला कीजिए कि कैसी थी अमृता और कैसा था उनका व्यक्तित्व।
0: यदि तुमने मुझे जरूर ढूंढना ही है तो हर देश का, हर शहर का, हर गली का दरवाजा खटखटाओ। ये एक शाप है, एक वरदान है, और जहां भी स्वतंत्र रूह की झलक मिले, समझ लेना वो मेरा घर है। समझ लेना वो मेरा घर है।
1: एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि सबसे बड़ी कैद वे किसे मानती हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उम्र कैद, बल्कि कहा मानसिक गुलामी। अमृता प्रीतम का संपूर्ण साहित्य नारी संवेदना से भरा पड़ा है। नारी का मन, नारी की इच्छाएं, उसकी बेबसी, लाचारी, मांग और विद्रोह, सब कुछ इसमें दर्ज है। नारी की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण वे मानती हैं पुरुष पर उसकी आर्थिक निर्भरता। यह आर्थिक गुलामी ही उसे मानसिक और शारीरिक गुलामी के लिए मजबूर करती है। उनकी कविता है अन्नदाता। ये इसी तरह के विचार को रूपायित करती है।
0: अन्नदाता, मेरी जीवा पर तुम्हारा नमक है, तेरा नाम मेरे बाप के ओंठों पर और मेरी मूर्ति में मेरे बाप का खून है। मैं कैसे बोलूं, मेरे बोलने से पहले बोल पड़ता है तुम्हारा अन्न। अन्नदाता, मैं चमड़े की गुड़िया, खेल लो खिला लो, तुम्हारे सामने खड़ी हूं। ये उपयोग की शय, जैसे चाहे इस्तेमाल करो।
1: कितनी लाचारी और बेबसी समाई है इन पंक्तियों में। चूंकि पति पत्नी का उदर पोषण करता है, इसलिए हर तरह के जायज और नाजायज हक उसे अपने आप हासिल हो जाते हैं। हालांकि आज स्थितियां बदली हैं। आज की नारी अमृता प्रीतम के जमाने की नारी की तुलना में काफी हद तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, और इसका परिणाम है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ा है और निरीहता घटी है।
0: यूं तो अमृता जी ने जो भी लिखा है सब बेजोड़ है, लेकिन उनकी नज्म अज आखा वारिस शाह नू आज इतिहास बन गई है, जो वारिस शाह की मजार पर हर साल गाई जाती है। वाघा सरहद के अमन स्तंभ पर अंकित ये नज्म संपूर्ण मानवता की आवाज है।
1: इसी तरह भारत विभाजन पर लिखा अमृता प्रीतम का उपन्यास पिंजर भी एक ऐसी संवेदनशील रचना है जिसमें एक पागल औरत गर्भवती हो जाती है और जिसे अपने पेट में पल रहे बच्चे की नियति के बारे में कुछ भी इल्म नहीं। इस उपन्यास को लेकर फिल्म भी बनी और खूब चर्चित हुई।
0: अमृता के 75वें जन्मदिन पर बोलते हुए उनके समकालीन रचनाकार कमलेश्वर ने कहा था, जब हम हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी आदि भाषाओं में लिख रहे थे, उस समय अमृता जुबान के दायरे से उठकर कविता लिख रही थी। ये सच है, अमृता की कविताएं शब्द नहीं, संवेदना है, जिनकी कोई भाषा नहीं होती। वो दिल से उठती हैं और सीधे दिल तक पहुंचती हैं।
1: अमृता की रचनाओं का सरोकार वैश्विक भी है। वे दुनिया में कहीं भी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ थीं। तभी तो वियतनाम के नेता हो ची मिन्ह ने दिल्ली दौरे के समय उनका माथा चूमते हुए कहा था, हम दोनों पूरी दुनिया के बुरे मूल्यों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं, तू कलम से और मैं तलवार से।
0: अमृता के साहित्य में ही नहीं, उनकी शख्सियत में भी एक जादू था। जो भी उनसे मिलता वो उनका ही होके रह जाता। पाकिस्तान की कहानीकार अफजल तौसीफ जब दिल्ली आई तो ये पूछे जाने पर कि उन्होंने दिल्ली में क्या देखा, तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उनका जवाब था, दिल्ली में अमृता को देख लिया, और क्या देखना है। सन 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली अमृता जी पहली महिला थीं। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया। 1982 में उन्हें कागज दे कैनवास पर साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ मिला। सन 1986 से 1992 तक वो राज्यसभा की सदस्य रहीं। और तो और, 2003 में उन्हें पाकिस्तान की पंजाबी अकादमी ने भी पुरस्कृत किया। इस पर जानते हैं उन्होंने क्या टिप्पणी दी? वही जिसकी उम्मीद एक कवि हृदय स्त्री से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, बड़े दिनों बाद मेरे मायके को मेरी याद आई। श्रोताओं, इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार हम यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की, 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।
1: पर

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अंततः स्वामी जी बंबई से जहाज में बैठकर अमेरिका चले। बंबई छोड़कर जहाज दक्षिणी दिशा में कोलंबो की ओर चला। यात्रा का अंत होगा अज्ञात अमेरिका के अपरिचित जनसमाज में। जब तक भारत की पुण्य भूमि दिखाई देती रही, तब तक वे उसे सतृष्ण नयनों से देखते रहे। और जो लोग प्रेम पूर्वक विदा काल में इतने दूर आए हैं और यात्रा की सारी व्यवस्था कर दी है, अथवा जो लोग आ तो नहीं पाए पर उनकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब की बातें वे याद करते रहे और सबकी मंगल कामना करते रहे। उनकी आंखें भीग गई, उन्होंने अपने गुरु को स्मरण किया, मां शारदा को शीश नवाया और अपनी मां से आशीर्वाद मांगा। जन्मभूमि को छोड़कर जाते वक्त उनका दिल टूट रहा था। उन्होंने देखा चारों ओर केवल समुद्र की नील जलराशि। उन्होंने मन ही मन जन्मभूमि को प्रणाम करके कहा, त्याग भूमि को छोड़कर मैं भोग भूमि की ओर चला।
1: परंतु उस भोग भूमि में भी वे भोग के लिए नहीं बल्कि कठिन कर्मों का पालन करने गए थे। वहां जाते ही वे जीवन युद्ध में जुट गए। विरामहीन प्रचार व्रत, अनिश्चयता और हाड़ तोड़ परिश्रम, विश्राम करने तक का अवसर नहीं, परंतु वैदिक ज्ञान का अनंत भंडार जिनके हृदय में हो उन्हें भय या उद्वेग कहां। जहाज असीम सागर के जल में तैरने लगा। स्वामी जी देश कालातीत अनंत के ध्यान में डूब गए।
0: धीरे धीरे समुद्र यात्रा के तौर तरीके और रीति नीतियों के वे अभ्यस्त हो गए। शुरू शुरू में वे अपने माल असबाबों और सामानों को लेकर परेशान हो उठते थे। दंड कमंडल धारी सन्यासी के लिए ट्रंक, सूटकेस, बिस्तर आदि संभालना एक कठिन समस्या हो गई थी। क्रमशः सब कुछ ठीक हो गया और दो चार दिनों के भीतर अन्य यात्रियों से परिचय भी हो गया। इनमें कोई कोई जर्मन थे, गैरिक वस्त्र पहने, गौर बदन, दीर्घ लोचन, निर्भीक गति तथा प्रतिभा मंडित व्यक्तित्व संपन्न इस युवक ने सबकी आंखें आकर्षित कर ली। उनकी सरलता, मधुर व्यवहार और व्यक्तित्व ने यात्रियों का हृदय जीत लिया। स्वयं कैप्टन साहब उनसे गपशप करते और आग्रह पूर्वक पूरे जहाज को घूम घूम कर दिखाते। प्रायः सभी यात्री विदेशी थे और स्वामी जी उन लोगों के शिष्टाचार से अनभ्यस्त थे, किंतु ये सारी दूरियां क्रमशः मिट गईं। स्वामी जी की समुद्र यात्रा का विवरण हमें उनके 10 जुलाई को योकोहामा जापान से लिखे पत्र में मिलता है। उस पत्र में कोलंबो तक का विवरण है।
2: अपने कार्यकलाप की सूचना तुम लोगों को बराबर ना देते रहने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यात्रा में जीवन बहुत व्यस्त रहता है और विशेषतः मुझे तो बहुत सा सामान असबाब साथ में लिए घूमने की आदत नहीं थी। इन सब वस्तुओं की देखभाल में ही मेरी शक्ति लग रही है। ये सचमुच एक बड़े झंझट का काम है। बंबई से एक सप्ताह के बीच कोलंबो पहुंचा। हमारा स्टीमर वहां दिन भर ठहरा रहा। इस बीच में मुझे शहर देखने का अवसर मिला। हमने सारा शहर देख डाला। वहां की और सब वस्तुओं में भगवान बुद्धदेव की लेटी हुई मूर्ति की याद मेरे मन में अभी तक ताजी है। मंदिर में पुरोहितों के साथ वार्तालाप करने की चेष्टा की, किंतु वे लोग सिंहली भाषा के अतिरिक्त दूसरी कोई भाषा जानते नहीं हैं। अतः मुझे बातचीत करने की चेष्टा का त्याग करना पड़ा। वहां से प्रायः 80 मील दूर सिंहल के मध्य प्रदेश में अवस्थित कैंडी शहर सिंहली बौद्ध धर्म का केंद्र है, किंतु मुझे वहां जाने का समय नहीं था। यहाँ गृहस्थ बौद्धगण क्या पुरुष क्या स्त्री मत्स्य मांस भोजी हैं, केवल पुरोहित गण निरामिष हैं। सिंहलियों का पहनावा और चेहरा तुम मद्रासियों के समान ही है। उनकी भाषा के संबंध में मैं भी कुछ नहीं जानता, तथापि उच्चारण सुनकर प्रतीत होता है कि तुम्हारी भाषा तमिल के अनुरूप ही है।
1: कोलंबो छोड़कर जहाज मलाया की ओर बढ़ चला।
2: कोलंबो छोड़कर जहाज बंगाल की खाड़ी पार कर मलय के अंतर्गत पेनांग में आकर रुका। पेनांग समुद्र के बीच एक छोटा सा टापू है। शहर छोटा होने पर भी सुनिर्मित एवं सुविन्यस्त आधुनिक अन्य नगरों की भांति ही साफ सुथरा है। मलय निवासी अधिकांश मुसलमान हैं। जगह जगह पर अनेक चीनी लोग भी हैं एवं कालक्रम से अनेक भारतीय उसे स्वदेश मानने लगे हैं। किसी जमाने में मलय वासियों में कोई कोई समुद्र डाकू की वृत्ति अपनाकर व्यापारी जहाजों के सौदागरों में भय उत्पन्न कर देते थे। किंतु आजकल जहाजी बेड़ों के महामय से ये लोग डकैती छोड़कर शांतिपूर्ण धंधों में लग गए।

0: वनस्पतिक उद्यान है। उसमें ताड़ जाति के तरह तरह के पेड़ लगाए गए हैं। यहां पंखेनुमा पत्रों वाले ताड़ के पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं और ब्रेड फ्रूट नामक पेड़ तो जहां देखो वहीं मिलता है। यहां मैंगोस्टीन नामक फल भी बहुत होता है। ये स्थान भूमध्य रेखा के बहुत निकट है। सिंगापुर में एक बढ़िया अजायब घर भी है, तथापि बंदरगाह के लोगों के जीवन में जैसा सामान्यता होता है, यहां भी वैसा ही मदिरापान का दोष और चरित्र दोष अत्यधिक है। बंदरगाह में कुछ देर के लिए जहाज के ठहरने का सुयोग पाकर मैंने उतरकर खास खास दर्शनीय स्थानों को देख लिया।
1: सिंगापुर के बाद जहाज चला हांगकांग की ओर।
0: जहाज अंग्रेजों के उपनिवेश हांगकांग द्वीप में रुका। संस्कृति की दृष्टि से हांगकांग बिल्कुल चीन नहीं है। सिंगापुर में ही मैंने चीनी सभ्यता का परिचय पाया था, क्योंकि सिंगापुर में चीनियों की संख्या बहुत अधिक है। हांगकांग में आकर मैंने सब कुछ लक्ष्य किया और हांगकांग तो वास्तव में चीन ही है। ज्यों ही जहाज वहां लंगर डालता है कि सैकड़ों संख्या में चीनी डोंगियां आपको तट पर ले जाने के लिए घेर लेती हैं। दो दो पतवारे होने के कारण ये डोंगियां कुछ विचित्र सी लगती हैं। माझी डोंगी पर ही सब कुटुंब रहता है। पतवारों का संचालन प्रायः स्त्री ही करती है। एक पतवार दोनों हाथों से चलाती रहती है और दूसरी को पैर से, और उनमें से 90% स्त्रियों के पीछे उनके बच्चे इस प्रकार बंधे रहते हैं कि वे आसानी से हाथ पैर डुला सकें। मजे की बात तो ये है कि नन्हे चीनी बच्चे अपनी माताओं की पीठ पर आराम से झूलते रहते हैं और उनकी माताएं कभी अपनी सारी शक्ति लगाए पतवार घुमाती हैं, कभी कभी भारी बोझ उठाती हैं, या कभी बड़ी फुर्ती के साथ एक डोंगी से दूसरी डोंगी पर कूद जाती हैं। लगातार इधर से उधर जाने वाली डोंगियों और वाष्प नौकाओं की भीड़ सी लगी रहती है। हर समय इन चीनी बाल गोपालों के शिखायुक्त मस्तकों का चूर चूर हो जाने का डर रहता है, पर उन्हें इसकी क्या परवाह। उन्हें इन बाहर की हलचलों से कोई सरोकार नहीं। वे तो अपना चावल की रोटी कुतर कुतर कर खाने में मस्त रहते हैं, जो काम के झंझटों से बौखलाई हुई मां उन्हें दे देती है। चीनी बच्चों को पूरा दार्शनिक ही समझिए। जिस उम्र में भारतीय बच्चे घुटनों के बल भी नहीं चल पाते, उस उम्र में वो स्थिर भाव से चुपचाप काम पर जाते हैं। अभाव का महत्व ये अच्छी तरह सीख और समझ लेता है। चीनी और भारतीयों की नितांत दरिद्रता ने ही उनकी संस्कृतियों को निर्जीव बना रखा है। साधारण भारतीय या चीनी के लिए उसका दैनिक अभाव इतना भयंकर लगता है कि उसे कुछ और सोचने की फुर्सत नहीं। हांगकांग एक बड़ा ही सुंदर नगर है। वो पहाड़ के शिखरों और ऊंची ढालू जगहों पर बसा हुआ है। वहां शहर की अपेक्षा अधिक ठंड पड़ती है। पहाड़ के ऊपर एक ट्राम गाड़ी प्रायः एकदम सीधी चढ़ती है। लोहे के तारों की रस्सी से खींचकर और भाप के द्वारा वो ऊपर की ओर परिचालित होती है। हांगकांग में हम लोग 3 दिन रहे। वहां से कैंटन देखने गए। ये शहर एक नदी के चढ़ाव की ओर हांगकांग से प्रायः 80 मील पर मिलता है। वहां की भीड़ भाड़ और वहां के व्यस्त जीवन का क्या कहना। नावें तो इतनी अधिक हैं कि मानो उनसे नदी पट गई हो। ये नावें केवल व्यापार के ही काम नहीं आती, बल्कि सैकड़ों ऐसी भी हैं जिनमें घर की भांति लोग रहते हैं, और इनमें से बहुतेरी बहुत बढ़िया हैं और बड़ी बड़ी हैं। वास्तव में इन्हें पानी पर तैरते हुए घर ही समझिए। सच पूछो तो ये बड़े बड़े दुमंजिले या तिमंजिले मकानों की भांति हैं, जिनके चारों ओर बरामदा है और बीच में रास्ते, पर ये सब कुछ पानी के ऊपर तैरता हुआ है।
1: ये रहा कैंटन नगर का वर्णन, जो एक तैरता नगर प्रतीत होता है। आगे जानिए उनकी चीनियों के बारे में प्रतिक्रिया।
0: जिस जगह हम लोग उतरे वो चीन सरकार की ओर से विदेशियों के रहने के लिए दी गई है। हमारे चारों ओर नदी के दोनों किनारों पर मीलों तक ये नगर बसा हुआ है। एक असंख्य जनसमूह जिसमें निरंतर कोलाहल, धक्का मुक्की

0: और परस्पर स्पर्धा का ही बोलबाला दिखाई देता है। परंतु इतनी आबादी, इतनी क्रियाशीलता होते हुए भी मैंने इतना गंदा शहर अब तक नहीं देखा। अर्थात जिसे आप लोग भारतवर्ष में गंदगी समझते हैं, उस दृष्टि से नहीं। चीनी लोग कूड़े का एक तिनका भी जाया नहीं होने देते, पर ऐसा जान पड़ता है कि इन लोगों ने कभी ना नहाने की कसम खा ली है। हर एक घर में नीचे दुकान है और छत पर लोग रहते हैं। गलियां इतनी सकरी हैं कि उनमें से गुजरते हुए दोनों ओर की दुकानों को आप हाथ फैलाकर लगभग छू सकते हैं। हर 10 कदम पर मांस की दुकानें मिलती हैं। ऐसी दुकानें भी हैं जिनमें कुत्ते बिल्लियों का मांस बिकता है। हाँ, इस तरह का मांस वही लोग खाते हैं जो बहुत गरीब हैं।
1: चीनी महिलाओं के लिए उन्होंने लिखा था,
0: चीनी महिलाएं बाहर दिखाई नहीं देती। उनमें उत्तर भारत के ही समान पर्दे की प्रथा है। केवल मजदूरों की ही औरतें बाहर दिखाई पड़ती हैं। इनमें भी एकाध स्त्री ऐसी दिखाई पड़ जाएगी जिसके पैर बच्चे के पैर से भी छोटे हैं और वो लड़खड़ाती हुई चलती हैं।
2: स्वामी जी, चीन वासियों की दरिद्रता, जीवन यापन प्रणाली, श्रम परायणता, राजनीतिक और सांस्कृतिक विभिन्न पक्षों को लक्ष्य कर ही निवृत्त नहीं हुए। वे उन लोगों के धर्म से भी परिचित होने को उत्सुक थे। उन्होंने लिखा है,
0: मैं बहुत से चीनी मंदिरों में गया। कैंटन में जो सबसे बड़ा मंदिर है, वो प्रथम बौद्ध सम्राट और सबसे पहले बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले 500 पुरुषों का स्मारक स्वरूप है। मंदिर के बीचों बीच बुद्ध देव की मूर्ति स्थापित है। उसके नीचे सम्राट की और दोनों ओर शिष्य मंडली की मूर्तियों की कतारें हैं। ये सभी लकड़ी में खूबसूरती से खोदकर बनाई गई हैं।
2: उन्होंने बौद्ध मूर्तिकला का भलीभांति पर्यवेक्षण किया तथा लक्ष्य किया कि भारतीय मंदिरों के साथ इन मंदिरों की समानता है। निश्चय ही विषमता भी काफी थी एवं इस वैषम्य के बीच ही चीन वासियों की मौलिकता का परिचय पाकर वे आनंदित हुए थे।
1: इसके पश्चात विशुद्ध चीनी मंदिर देखने की उनकी आंतरिक इच्छा हुई, किंतु वे मंदिर ऐसे स्थानों पर स्थित थे जहां विदेशियों का प्रवेश वर्जित था, तो फिर क्या किया जाए? जब उन्होंने दुभाषी से इस संबंध में जिज्ञासा की तो पता चला कि वहां जाना तो असंभव है, किंतु इससे उनकी इच्छा और प्रबल हो गई, चीनी मंदिर देखना ही होगा। उन्होंने दुभाषी से पूछा,
0: मान लो कि कोई विदेशी वहां चला गया तो फिर क्या होगा?
2: दुभाषिया बोला, तो मंदिरवासीगण उस पर अत्याचार करेंगे।
1: स्वामी जी ने मन ही मन सोचा कि यदि मठवासी साधुगण ये जान जाएंगे कि वे हिंदू सन्यासी हैं, तो वे लोग उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। वे दुभाषीय और जर्मन सहयात्रियों से ऐसे किसी एक मठ में चलने का तीव्र अनुरोध करने लगे और हंसते हुए उन्होंने कहा,
0: चलो ना, देखें वे लोग हमें मार डालते हैं या नहीं।
2: वे मंदिर की ओर ज्यादा बढ़ नहीं पाए कि दुभाषिया चीख कर बोला, भागिए सज्जनों, भागिए, वो देखिए वे लोग धमकी देते हुए आ रहे हैं, वे क्रोधित हो गए हैं।
1: 2-3 व्यक्ति हाथों में लाठी लिए दौड़े आ रहे थे। उन लोगों की भयंकर मुद्रा देख स्वामी जी और दुभाषी के अलावा और सब भाग गए। स्वामी जी ने दुभाषी का हाथ पकड़कर रोक लिया।
0: अरे भाई, चीनी लोग अपनी भाषा में भारतीय योगी को क्या कहते हैं, इसे बताए बिना कैसे जा सकते हो?
2: दुभाषी से शब्द सीख कर वे जोरों से चीनियों से कहने लगे कि वे भारतीय योगी हैं, और इस योगी के लिए प्रयुक्त चीनी शब्द ने जादू का कार्य किया। क्रुद्ध लोग श्रद्धापूर्ण भाव से उनके चरणों में झुक गए और फिर उठकर कर जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से अनेक बातें कही, जिसमें एक शब्द को स्वामी जी समझ सके, कवच। उन्होंने अनुमान किया कि यह हिंदू शब्द ही होगा, किंतु निसंदेह होने के लिए दूर खड़े दुभाषी को चिल्लाकर पूछा कि ये लोग क्या चाहते हैं। दुभाषिया भय के कारण दूर भागकर इन सारे दृश्यों को देख किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उसने कहा, महाशय, ये लोग भूत प्रेत एवं अपवित्र प्रभावों से बचने के लिए रक्षा कवच चाहते हैं, वे आपके आश्रय की याचना करते हैं। स्वामी जी क्या करेंगे ये अकस्मात सोच नहीं सके, क्योंकि सिद्धाई में वे विश्वास नहीं करते थे। तब उन्होंने एक युक्ति सोची, अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा लेकर उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया और प्रत्येक टुकड़े पर वेद का पवित्रतम शब्द ओम संस्कृत में लिखकर उन लोगों के हाथों में थमा दिया। उन लोगों ने कागज के टुकड़े लेकर कृतज्ञता पूर्वक अपने माथे से लगाया और स्वामी जी को मठ के भीतर ले गए।
1: मठ के अत्यंत एकांत भाग में उन्होंने स्वामी जी को कुछ प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकें दिखाई। वे संस्कृत भाषा में रचित एवं प्राचीन बंगला लिपि में लिखित थी। इस प्रकार भारतीय विचारधारा ने चीन पर अपना प्रबल प्रभाव डाला था। इसके बाद का विवरण स्वामी जी के इस पत्र में कुछ इस प्रकार पाया जाता है।
0: कैंटन से मैं फिर हांगकांग लौटा और वहां से जापान पहुंचा। पहला बंदरगाह नागासाकी था। यहां हमारा जहाज कुछ घंटों के लिए ठहरा और हम लोग गाड़ी में बैठकर शहर घूमने गए। चीनियों में और इनमें कितना अंतर है। सफाई में जापानी लोग दुनिया में किसी से कम नहीं है। जापानी लोग ठिगने, गोरे और विचित्र वेशभूषा वाले हैं। उनकी चाल ढाल, हाव भाव, रंग ढंग सभी सुंदर हैं। जापान सौंदर्य भूमि है। प्रायः प्रत्येक घर के पिछवाड़े में बगीचा रहता है। इन बगीचों के छोटे छोटे लता वृक्ष, हरे भरे कुंज, छोटे छोटे जलाशय और नालियों पर बने हुए छोटे छोटे पत्थर के पुल बड़े सुहावने लगते हैं। नागासाकी से चलकर हम कोबे पहुंचे। यहां जहाज से उतरकर हम लोग जापान का मध्य भाग देखने के उद्देश्य से स्थल मार्ग से याकुहामा आए। इस मध्य भाग में हमने तीन शहर देखे, महान औद्योगिक नगर ओसाका, पूर्व राजधानी क्योटो और वर्तमान राजधानी टोकियो, जो कलकत्ते से प्रायः दुगुना बड़ा होगा और आबादी भी लगभग दुगुनी होगी। बिना पासपोर्ट के किसी भी विदेशी को जापान में भ्रमण करने नहीं दिया जाता। जान पड़ता है जापानी लोग वर्तमान आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण सचेत हो गए हैं। उनकी एक अच्छी सुव्यवस्थित सेना है, जिसमें यहीं के अफसर द्वारा विष्कृत तोपें काम में लाई जाती हैं और जो संसार में अद्वितीय कही जाती हैं। ये लोग अपनी नौशक्ति बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने एक जापानी इंजीनियर की बनाई करीब 1 मील लंबी सुरंग देखी है।
2: स्वामी जी ने जापान के मंदिरों को ही नहीं देखा, वहां के कारखानों में भी गए।
0: दिया सलाई के कारखाने तो देखते ही बनते हैं। जो आवश्यक चीजें इनको लगती हैं, उन सबको अपने देश में ही बनाने की चेष्टा में लोग तुले हुए हैं। चीन और जापान के बीच में चलने वाली एक जापानी स्टीमर लाइन है, जिसे ये लोग कुछ ही दिनों में बंबई और याकुहामा के बीच चलाना चाहते हैं।
1: जापान के मंदिरों को भी उन्होंने देखा था। पुरोहित वर्ग सामान्यतया रूढ़िवादी और परिवर्तन विरोधी होता है, किंतु स्वामी जी ने जापान के मंदिरों को देखकर और पुरोहितों से वार्तालाप कर जान लिया कि वे सब के सब बड़े बुद्धिमान हैं। आसानी से उन्नति करने का आधुनिक जोश पुरोहितों तक में प्रवेश कर गया है।
0: एशिया के ही एक देश नए जापान के शिल्पोद्योग ने मुझको मुग्ध कर दिया था। ऐसा सुंदर देश, ऐसे सुरुचि संपन्न नर नारी, उन लोगों के सब कुछ, घर द्वार, रास्ते, उद्यान, चाल चलन, भाव भंगिमा सुंदर है। और इन्हीं सब में ये विशाल कर्मोद्योग, नए विश्व की रीति नीतियों के प्रति वे अत्यंत जागरूक हैं और उन्हीं रीति नीतियों के अनुसार चलकर अपने देश की उन्नति के लिए वे कटिबद्ध हैं। मैं अपने देश की आर्थिक उन्नति के विचार में डूबा था।
2: मन ही मन जापान और चीन से भारत की तुलना कर स्वामी जी ने लिखा था,
0: जापानियों के विषय में जो कुछ मेरे मन में है, वो सब मैं इस छोटे से पत्र में लिखने में असमर्थ हूँ। मेरी केवल ये इच्छा है कि प्रतिवर्ष यथेष्ट संख्या में हमारे नवयुवकों को यहाँ आना चाहिए। जापानी लोगों के लिए आज भारतवर्ष सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का स्वप्न राज्य है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? जीवन भर केवल बेकार बातें किया करते हो। आओ इन लोगों को देखो और इसके बाद जाकर लज्जा से मुंह छिपा लो। सठियाई बुद्धि वालों, तुम्हारी तो देश से बाहर निकलते ही जाति चली जाएगी। अपनी खोपड़ी में वर्षों के अंधविश्वास का कूड़ा करकट भरे बैठे सैकड़ों युगों के सामाजिक अत्याचार से जिनकी सारी मानवता कास्त हो चुका है, भला बताओ तो सही तुम कौन हो? और तुम इस समय कर ही क्या रहे हो? मूर्खों, किताब हाथ में लिए तुम केवल समुद्र किनारे फिर रहे हो। यूरोपियनों के मस्तिष्क में निकली हुई बातों को लेकर बिना समझे दोहरा रहे हो। 30 रुपए की मुंशीगिरी के लिए अथवा बहुत हुआ तो एक वकील बनने के लिए जी जान से तड़प रहे हो। यही तो भारतवर्ष के नवयुवकों की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। तिस पर इन विद्यार्थियों के भी झुंड के झुंड बच्चे पैदा हो जाते हैं, जो भूख से तड़पते हुए उन्हें घेरकर बाबूजी खाने को दो कहकर चिल्लाते रहते हैं। क्या समुद्र में इतना पानी भी ना रहा कि तुम उसमें विश्वविद्यालय के डिप्लोमा, गाउन और पुस्तकों के समेत डूब मरो?
1: अनेक संक्षिप्त किंतु अग्निवर्षी वाक्यों में स्वामी जी ने अपने देश की आशा और विश्वास के केंद्र स्थल शिक्षित युवकों का एक स्पष्ट चित्र खींचा, किंतु मात्र अभावात्मक या नकारात्मक पक्ष दिखाकर सबको निराशा के सागर में डुबाने के लिए तो स्वामी जी अवतरित नहीं हुए थे। इसी से उन्होंने उदात्त स्वरों से आह्वान किया,
0: आओ मनुष्य बनो। उन पाखंडी पुरोहितों को जो सदैव उन्नति के मार्ग में बाधक होते हैं बाहर निकाल दो, क्योंकि उनका सुधार कभी न होगा, उनके हृदय कभी विशाल न होंगे। उनकी उत्पत्ति तो सैकड़ों वर्षों के अंधविश्वासों और अत्याचारों के फल स्वरूप हुई है। पहले इनको जड़मूल से निकाल फेंको। आओ मनुष्य बनो, अपने अंधकूप से बाहर निकलो और बाहर दृष्टि डालो। देखो अन्य सब देश किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। क्या तुम्हें मनुष्य से प्रेम है? क्या तुम्हें अपने देश से प्रेम है? यदि हाँ तो आओ हम लोग उच्चता और उन्नति के मार्ग में प्रयत्नशील हों। पीछे मुड़कर मत देखो, अत्यंत निकट और प्रिय संबंधी रोते हों तो रोने दो, पीछे देखो ही मत, केवल आगे बढ़ते जाओ।
1: योकोहामा से स्वामी जी कैनेडियन पैसिफिक मार्ग के एम्प्रेस ऑफ इंडिया नामक जहाज से अमेरिका की ओर चले। इस जहाज पर 2 भारतीय सहयात्री थे, एक जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा और दूसरे लालू भाई। जमशेद जी से स्वामी जी का परिचय जापान में ही हुआ था। जहाज ने 14 जुलाई को योकोहामा छोड़ा। स्वामी जी के 20 अगस्त के पत्र से रास्ते का थोड़ा सा समाचार हमें मिलता है।
0: जापान से मैं वैंकूवर पहुंचा। मुझे प्रशांत महासागर के उत्तरी हिस्से से होकर जाना पड़ा। ठंड बहुत थी, गर्म कपड़ों के अभाव से बड़ी तकलीफ हुई। अस्तु किसी तरह वैंकूवर पहुंचकर वहां से कनाडा होकर शिकागो पहुंचा और वहां लगभग 12 दिन रहा।
2: स्वामी जी को लोगों ने रेशमी वस्त्रों से सजाकर भेजा था, परंतु गर्मी के दिनों में भी प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी इतना ठंडा रहता है कि गर्म कपड़ों की जरूरत होती है। इसका अंदाजा भारतीयों को नहीं था, अतः केवल जहाज में ही नहीं, जहाज से उतरकर भी स्वामी जी को ठंड में बहुत कष्ट झेलने पड़े।
1: प्राचीन भूभाग को छोड़कर 25 जुलाई मंगलवार संध्या 6 बजे स्वामी जी नवीन भूभाग के पश्चिमी तट पर एक छोटे द्वीप में स्थित वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचे। वैंकूवर उत्तरी अमेरिका के कनाडा राज्य में स्थित है। वैंकूवर से दूसरे दिन सुबह 10:45 पर वे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग से प्रसिद्ध रॉकी पर्वतमाला को भेदकर पूर्व की ओर चल पड़े। मार्ग अत्यंत मनोरम था। अनेक नद नदियां, वन नगरों, महानगरों को पार कर ट्रेन चल रही थी और विनिपेग होकर स्वामी जी 30 जुलाई सन 1893 ईस्वी की रात के लगभग 10:30 बजे शिकागो नगर में उपस्थित हुए।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस, वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो श्रोताओं, हमारी सुबह की सभा यहीं संपन्न होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए दोपहर की सभा का। सुनते रहिए FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
4: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल, देश के लिए।
5: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं रुचिरा केदार का शास्त्रीय गायन, और उसके बाद प्रस्तुति होगी वायलिन वादन की। कलाकार होंगी चेताली शिवलेकर। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गायन रुचिरा केदार का।
6: कार्यक्रम की शुरुआत राग नंद से कर रही हूँ। हमारे जयपुर घराने का काफी प्रसिद्ध राग है, उसमें पारंपरिक बंदिश है विलंबित 3 तार में। हे बारे सैया, तो हे सकल बन बन ढूंढू, हे बारे सैया।

तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गायन रुचिरा केदार का। अब इसके बाद बारी है वायलिन वादन की, जिसे पेश कर रही हैं चेताली शिवलेकर।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना वायलिन वादन, जिसे पेश कर रही थीं चैताली शिवलीकर। आज के कार्यक्रम भारत भारती में बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त दानिश को इस कार्यक्रम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जो लौट के घर न आए।
0: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक फीस। चतुर सेन ग्रेजुएट है मगर बेरोजगार है। आज से 5 साल पहले उसने शहर के एक नामी कॉलेज से बीए पास किया था। मन में ख्याल आया लगे हाथों एमए भी कर लिया जाए, पर सोचा क्या फायदा पैसा और वक्त जाया करने में। आईएएस बनना चाहता था, उसके लिए बीए पास क्वालिफिकेशन काफी थी। मगर पहले ही प्रयास में उसे पता चल गया कि बीए पास आदमी आईएएस नहीं बन सकता। फिर सोचा चलो डिप्टी कलेक्टर ही सही, ये पोस्ट भी बुरी नहीं है, 20-22 साल में आईएएस के प्रमोशन मिल ही जाएगी। पर हाय रे किस्मत, यूपीएससी से लेकर के पीएससी तक सब ने उसके खिलाफ जैसे मोर्चा बंदी कर रखी थी। यहां तक कि एसएससी और व्यापम ने तो उसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। हार कर विचार करने बैठ गया कि आखिर गड़बड़ कहां है, क्यों नौकरी के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं। काफी चिंतन मनन के बाद जवाब मिला कि चतुर सेन कमी तुझ में नहीं, तेरे कॉलेज में है, उसने तुझे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दी। फीस तो पूरी ली पर पढ़ाया कुछ नहीं, तभी तो नौकरी के हर इम्तहान में तू केवल और केवल फेल होता रहा। तेरे कॉलेज ने सेवा में कमी की है, इसलिए मुआवजे का मामला बनता है उन पर। चल उठ चतुर सेन, ठोक दे दावा कॉलेज पर, पहले नोटिस दे, अगर मान गए तो ठीक, अगर नहीं माने तो उन्हें खींच ले कंज्यूमर फोरम में, आजकल तो कंज्यूमर फोरम का जमाना है ना।
3: मैं आई कम इन सर?
4: यस कम इन, फरमाइए।
3: सर ये नोटिस है, रिसीव कर लीजिए।
4: नोटिस? मगर किस बात का?
3: कंपनसेशन का सर।
4: कंपनसेशन? मगर वो कैसा?
3: सर आपके कॉलेज ने सर्विस में कमी की है।
4: कॉलेज ने सर्विस में कमी की है? आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? अरे ये कॉलेज है, कोई दुकान या कंपनी नहीं। जो
3: कैसे नहीं है दुकान या कंपनी, अजीब बिल्कुल है, पैसे लेकर शिक्षा बेचती है, आखिर और क्या होती है, दुकान ही होती है। कमोडिटीज ना सही, सर्विस ही सही, मगर कुछ तो बेचती है ना, बदले में फीस भी अनाप शनाप लेती है, और एजुकेशन, एजुकेशन ऐसी कि चपरासी की भी नौकरी ना मिले।
4: एक मिनट, ठीक से बताइए आप कि आप कहना क्या चाहते हैं।
3: सर आज से 5 साल पहले मैंने आपके कॉलेज से बीए पास किया था, मुझे एश्योरेंस दिया गया था कि यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का आईएएस तक बन सकता है। लीगल टर्म में कहें तो आपके कॉलेज नाम की कंपनी ने एक प्रकार से गारंटी दी थी अपने कंज्यूमर को, मगर ये देखिए आपकी गारंटी फेल हो चुकी है। जहां जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई किया है मैंने, जवाब केवल केवल ना में मिला है सर।
4: तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, आप में काबिलियत ही नहीं होगी।
3: वही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सर।
4: क्या?
3: आपके कॉलेज ने मुझे इस काबिल बनाया ही नहीं कि मैं किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो सकूं, जबकि ये जिम्मेदारी थी उसकी। इस तरह जो सर्विस देनी चाहिए थी उसे, वो नहीं दी उसने, और इसीलिए मुझे पूरा हक है कि जो फीस चुकाई है मैंने यहाँ, वो वापस पा सकूं, और वो भी ब्याज व हर्जे खर्चे के साथ।
4: लुक मिस्टर, ये कॉलेज है, कोई फैक्ट्री नहीं जहां प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक ना हुई तो पैसा वापस।
3: सर्विसेज भी तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट के दायरे में आती हैं सर।
4: अच्छा,
3: आपको विश्वास ना हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 2 देख लीजिए।
4: क्या कह रहे हो?
3: आप खुद समझ जाएंगे कि मेरी डिमांड जायज है या ना जायज।
4: अरे जब कानून की इतनी गहरी समझ है आपको तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इस कॉलेज ने आपको ठीक तालीम नहीं दी।
3: माफ कीजिएगा सर, मैंने LLB नहीं किया है आपके कॉलेज से, अरे BA किया है, BA जो प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, उसकी क्वालिटी पर कैसे इतरा सकते हैं आप? फीस तो आपको लौटानी होगी सर।
4: और अगर हम ना बोल दें तो?
3: आपका मुंह, जो चाहे सो बोलिए, पर तब मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा और हर जाना भी तब 10 गुना होगा।
5: ओह नो।
3: ओह यस, बोलिए सर। कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस गए ना तो मिट्टी पलीत हो जाएगी आपकी।
4: ठीक है, मगर इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट से कंसल्ट करना होगा।
3: शौक से करिए, 1 हफ्ते का टाइम मैंने दिया है नोटिस में, इसके भीतर मुझे जवाब मिल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दोष मत दीजिएगा सर। मैंने 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है, शौक से कीजिए, शौक से।

0: और भाई मिश्रा जी, कैसी चल रही है आपकी हिंदी टीचिंग?
1: अरे कहाँ प्रिंसिपल साहब, आजकल तो मेरा विषय बिल्कुल उपेक्षित हो गया है। आपने मुझे योग की कक्षा लेने के लिए कह दिया,
0: अच्छा, खूब याद दिलाया आपने। योगा टीचर बामदेव की पत्नी को बच्चा होने वाला था ना, कुछ खबर है उनकी?
1: बच्चा नहीं श्रीमान, बच्चे कहिए बच्चे। अरे उनके यहाँ तो बच्चे बहुवचन में आविर्भूत हुए हैं
0: भूत हुए
1: श्रीमान।
0: हैं? क्या मतलब?
1: अरे श्रीमान, तात्पर्य यह है कि वामदेव जी की भार्या के उदय से युगल संतानें उत्पन्न हुई है।
0: ओ, अरे भाई, इतनी शुद्ध हिंदी का प्रयोग क्यों करते हैं आप? लगता है फारसी में बात कर रहे हैं। जरा आम भाषा में बताइए ना कि।
1: अरे सर वो
2: अरे सर सर मैं बताता हूं मैं।
0: आइए आइए, गणिताचार्य कृष्ण गोपाल श्री वास्तव जी।
2: धन्यवाद सर, मैं बताता हूँ सर आपको। बामदेव जी की वाइफ को जुड़वा बच्चे हुए हैं
0: मगर कब, कितने दिन हो गए?
2: सर। दोनों बच्चों को मिलाकर 2 दिन 12 घंटे और 16 मिनट प्रति बच्चे एवरेज आया, 1 दिन 6 घंटे और 8 मिनट।
0: ओहो, ये कोई गणित का सवाल है जो एवरेज निकाल रहे हो?
1: और श्रीमान, बामदेव जी ने तो उनका नामकरण भी कर दिया है।
0: इतनी जल्दी? अभी तो
1: जी
0: नामकरण संस्कार का समय नहीं आया।
1: अरे श्रीमान, वो बामदेव हैं, कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व किए गए कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
0: स्मार्ट गाई, स्मार्ट गाई, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। और नाम क्या रखा है उनका?
1: अरे सर, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम श्रीमान। योगा शिक्षक है ना, तो इससे उत्तम नाम भला और क्या पाते वो।
0: अनुलोम विलोम, बहुत सही, बहुत सही। ये तो अच्छा हुआ कि वे भूगोल के अध्यापक नहीं थे, नहीं तो उनके नाम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रख दिए होते। खैर, उनकी धर्म पत्नी कैसी है? स्वस्थ तो है ना?
1: कपाल भारती जी, अरे
0: हाँ,
1: वो तो शवासन में है अभी सर।
0: शवासन
1: जी
0: मतलब वो गई?
2: ना ना ना ना ना ना सर, मिश्रा जी भी ना, योगा पढ़ाते पढ़ाते अब योगा की भाषा बोलने लगे हैं। कपाल भारती जी टोटल बेड रेस्ट पर हैं सर।
0: ओ, तो यूं कहिए ना मिश्रा जी, आप भी और आपकी हिंदी भी। अच्छा, और उनकी माता जी, वैसे वे तो आई होंगी ना अपनी बहू की देखभाल करने?
1: कहाँ श्रीमान, उनका तो कब का प्राणायाम हो चुका है।
0: मुझे ठीक से बताइए ना मिश्रा जी, आप बार बार मुझे परेशानी में क्यों डाल देते हैं?
1: क्षमा करें श्रीमान, वो क्या है ना कि हिंदी व योग की शब्दावली जरा मिश्रित हो गई है। वस्तुतः मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी माता जी का प्राणांत हो चुका है।
2: मतलब ये कि अब नहीं, नहीं सर वो।
1: हाँ
0: ओ भाई, बड़े ही होनहार अध्यापक हैं हमारे। हाँ?
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: आ गए आप मिस्टर चतुरसेन।
3: सर, हमारे कंपनसेशन के संबंध में आपने क्या निर्णय लिया है?
0: चतुरसेन जी, आपके मैटर में हमने मैनेजमेंट से चर्चा की थी।
3: फिर?
0: अरे, मान ही नहीं रहे थे वे लोग। एक मेंबर तो बिल्कुल ही तमतमा गए।
3: क्यों?
0: कहने लगे मानहानि का मुकदमा कायम करेंगे ऐसे व्यक्ति पर जो हमारे कॉलेज की बदनामी करता फिर रहा है। अरे, पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर 3 IAS, 5 IPS, 14 डिप्टी कलेक्टर और 18 DSP सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, और बाकी सर्विसेज की तो कोई गिनती नहीं। यहां तक कि कंज्यूमर कोर्ट के जज साहब भी यहीं के पढ़े स्टूडेंट हैं। आखिर इन लोगों को भी तो वही तालीम दी गई थी ना जो आपको दी गई।
3: फिर यानी कि तैयार ही नहीं हुए वो लोग।
0: अरे छोड़िए जी उनकी बातें, वे ठहरे व्यापारी लोग, बेरोजगारों का दर्द क्या समझें, अपने स्टूडेंट की तकलीफ तो हम समझते हैं
3: सर। वो हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा काम हो जाएगा ना सर।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने भी खूब पानी पिलाया उन लोगों, बोल दिया कि कंज्यूमर कोर्ट का जज आपके कॉलेज का पड़ा है तो क्या कर लेंगे आप लोग। अरे जज किसी का सगा नहीं होता, वो कानून से फैसला करता है और कानून चतुर से इनके पक्ष में है। हम लोगों ने सेवा में कमी की है, ये बात इसी बात से साबित हो चुकी है कि चतुर सेन को अब तक कोई नौकरी नहीं मिली।
3: तो मतलब हमारा चेक रेडी है ना सर।
0: अरे रेडी ही समझिए जी, बस जरा सी फॉर्मेलिटी रह गई है, 2-3 घंटों में वो भी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका चेक आपके हाथ में।
3: अरे सर फॉर्मेलिटी, अब वो क्या सर।
0: दरअसल मैनेजमेंट इस बात का सर्टिफिकेट चाहता है कि इस कॉलेज ने आपको घटिया शिक्षा दी है रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अरे भाई कॉलेज की बैलेंस शीट का भी तो ऑडिट होता है ना, सो ऑडिटर के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
3: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आजकल किसी की मनमानी थोड़ी ही चलती है, अब पेमेंट होगा तो ऑडिटर तो देखेगा ही उसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब समझते हैं।
3: पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर।
0: कुछ नहीं, बस एक फॉर्मल टेस्ट होगा, 2-3 लोगों की पैनल बैठ जाएगी, उसमें वो ये देखेगी कि आपका नॉलेज कैसा है।
3: ऐसा क्यों सर।
0: अगर उस टेस्ट में आप फेल हो गए तो कॉलेज आपकी पूरी फीस मय ब्याज खर्चे के साथ वापस कर देगी और फेल रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लगा देगी।
3: और अगर मैं सर फेल ना हो पाया तो।
0: भाई तब तो मजबूरी है, मैनेजमेंट इतना तो देखेगा ही ना कि कॉलेज ने आपको ठीक से नॉलेज दिया है कि नहीं, आखिर कॉलेज की भी चूक दिखनी तो चाहिए ना।
3: ओके ठीक है सर, मैं तैयार हूँ।
0: सिट डाउन मिस्टर चतुरसेन।
3: जी सर।
0: मैं पैनल से आपका परिचय करा दूं।
3: जी।
0: ये है प्रोफेसर मिश्रा।
3: जी।
0: हिंदी के अध्यापक हैं। और ये है मिस्टर श्रीवास्तव।
4: हेलो।
0: गणित पढ़ाते हैं।
3: जी नमस्ते सर।
0: ये दोनों लोग हमारे पैनल के 2 मेंबर हैं और तीसरा मेंबर और चेयरमैन मैं खुद हूँ।
3: आपको भी नमस्ते सर।
0: नमस्ते, वेरी क्लेवर। मैं आपसे जनरल नॉलेज और दीगर विषयों के सवाल पूछूंगा, इन सवालों के जो भी जवाब आपको आते हैं उन्हें ठीक ठीक देना है, कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, बिल्कुल ऑनेस्टली। और हाँ, तीनों मेंबर्स के 100-100 मार्क्स हैं, यानी कुल मिलाकर 300 मार्क्स, पास होने के लिए आपको पाने होंगे 40%, यानी कुल मिलाकर 300 में से 120 नंबर। तो तैयार हैं आप।
3: यस सर।
0: मिश्रा जी शुरुआत आप कीजिए।
4: हाँ तो चतुरसेन, मेरा पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण से है और आपको ये बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूँ, हिंदी में वचन कितने होते हैं।
3: सर 7।
4: सोच कर उत्तर दीजिए, सोच कर। मेरा प्रश्न है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। एक क्लू देता हूँ आपको, वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजी में नंबर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आपको बताना इस तरह है कि हिंदी में कुल कितने नंबर यानी कि वचन होते हैं।
3: कह दिया ना सर, 7 वचन, फाइनल आंसर।
4: हाँ, वो कैसे पैनल को समझाएंगे आप।
3: बिल्कुल सर, हमारे यहाँ शादी के समय वर और वधू एक दूसरे को 7 वचन देते हैं।
4: हाँ।
3: तो फिर हिंदी में कितने वचन हुए, 7 ही ना।
4: अच्छा चलिए छोड़िए, गोली मारिए वचन वचन को। हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा के वे कौन से कवि हुए हैं जो दोनों आंखों से अंधे थे।
3: अंधे कवि।
4: हाँ
3: अंधे कवि, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
4: एक क्लू देता हूँ आपको। हाँ। वो एक भक्त भी थे और उनके नाम के अंत में दास आता है।
3: सर याद आ गया। हाँ। तुलसीदास।
4: हाँ, तुलसीदास। मगर वो कैसे?
3: सर तुलसीदास ही थे ना। हाँ। जो भरी बरसात में अपनी वाइफ से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए थे। अब ये काम तो कोई अंधा ही कर सकता है ना सर।
4: ठीक ठीक। अब अपना तीसरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए
3: जी।
4: मैं एक कविता की पहली पंक्ति आपको सुना रहा हूँ। आपको बताना यह है कि इस कविता के रचयिता कौन है। हाँ, तो कविता की पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन।
3: सर ये कविता तो हमने कभी सुनी ही नहीं सर।
4: अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ही सामान्य कविता है और हिंदी की कक्षा में पढ़ाई ही जाती है। चलिए मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ
3: जी,
4: जिससे आपको संपूर्ण प्रसंग याद आ जाए। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगले जन्म में यदि आप मुझे मनुष्य बनाना तो उस गांव का ग्वाला बनाना जो ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में रहता है। चलिए चलिए, अब बताइए इसके रचयिता का नाम क्या है, बता सकते हैं ना आप?
3: जी सर, गोविंदा।
4: गोविंदा?
3: लॉक कर दीजिए सर, यही है।
4: अरे गोविंदा, अरे भाई वो कब से कविता लिखने लगा?
3: सर मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, गोविंदा को छोड़कर कोई और ऐसी कविता लिखी ही नहीं सकता।
4: अरे
3: अरे, ग्वालों के संग गोविंदा नहीं रहना चाहेगा तो भला और कौन रहना चाहेगा सर।
4: ठीक है चतुरसेन, आपका अगला प्रश्न है कि हाँ हाँ, विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है?
3: विद्या शब्द का पर्यायवाची? सर मुझे नहीं मालूम।
4: अरे भाई ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कॉलेज आने वाले सभी विद्यार्थी इसे पाना चाहते हैं और हमारी संस्कृति में इन्हें देवी भी कहा जाता है। नृत्य संगीत जैसी कलाएं इन्हीं के दम पर हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि विद्या शब्द का पर्यायवाची क्या है।
3: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया मैं।
4: बताइए।
3: श्री देवी।
4: श्री देवी? अरे मगर वो कैसे भाई?
3: देखिए सर, वो एक देवी भी है और एक जमाने में कॉलेज स्टूडेंट्स में इनकी दीवानगी भी काफी थी। और नृत्य संगीत, ओ हो, वो तो पूछिए ही नहीं सर। नगीना फिल्म देख लीजिए ना आप, आपको खुद जवाब मिल जाएगा सर।
4: अरे श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, मेरा तो सर दर्द होने लगा, मैं कुछ समय का विश्राम चाहता हूँ।
0: ठीक है मिश्रा जी, विश्राम कीजिए, अब बारी श्रीवास्तव जी की है, आइए श्रीवास्तव जी।
2: धन्यवाद जी। चतुरसेन जी, मेरा सवाल बहुत ही आसान है, आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सवाल एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं।
3: जी जी सर।
2: एक आदमी अगर किसी काम को दो दिन में पूरा करता है तो दो आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
3: सर 2 × 2 = 4, सर 4 दिनों में।
2: थोड़ा सोच कर चतुरसेन, ये गणित का सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे भाई जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम लगने ही है ना।
3: सर मैंने सोचकर ही उत्तर दिया है और मेरा उत्तर बिल्कुल सही है।
2: मगर कैसे, समझाएंगे आप हमें?
3: देखिए सर, जब एक आदमी काम करेगा तब तो वो केवल काम करेगा और काम को दो दिनों में निपटा देगा, लेकिन जब दो आदमी काम करेंगे तब वो काम कम बातें ज्यादा करेंगे, तो दो दिन से ज्यादा तो लगेंगे ही ना।
2: बहुत सही, क्या गणित है। अच्छा फिर अगर 4 आदमी कर दिए जाएं तो?
3: फिर तो काम ही नहीं खत्म होगा सर।
2: वो कैसे?
3: अरे सर फिर तो वहां गुटबंदी शुरू हो जाएगी, दो दो लोगों के दो गुट बन जाएंगे और ये दोनों गुट आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर क्या सिर्फ फुटबॉल हो जाएगी और चार के चारों हवालात पहुंच जाएंगे। अब आप ही बताइए ना, क्या ऐसे में काम खत्म हो सकता है?
2: अरे बाप रे, इतनी गहरी पढ़ाई तो हमने भी कभी नहीं की। अच्छा गोली मारी आदमी आदमी को, मैं एक बहुत ही आसान सवाल पूछता हूँ आपसे। एक पेंसिल का दाम 1 रुपए है, तो 12 पेंसिलों का दाम क्या होगा?
3: 12 पेंसिलों का, 12 पेंसिलों का सर 10 रुपया।
2: 10 रुपया? मगर वो कैसे?
3: सर 10 पेंसिलें लेने पर 2 पेंसिलें फ्री में मिल जाएंगी, बस हो गया। 12 पेंसिलें और 10 रुपए, हमारे मोहल्ले में स्टेशनरी वाला देता है सर।
2: अच्छा अच्छा, तो अब ये बताइए कि एक कार निर्माता कंपनी का दावा है कि उसकी बनाई कार 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का सफर करती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वो कितने किलोमीटर का सफर करेगी?
3: सर 50 किलोमीटर का।
2: मगर कैसे?
3: सर देखिए, कंपनियों के दावे 50% से ज्यादा सही होते ही नहीं है। ऐसे में वो कार 5 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। हाँ, कम जरूर जा सकती है।
0: ठीक है चतुरसेन, अब आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए।
3: जी,
0: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
3: अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, वो तो दुनिया जानती है सर, ओसामा बिन लादेन।
0: ओसामा बिन लादेन? मगर ये तो गलत जवाब है भाई, वो ओसामा नहीं बल्कि ओबामा है।
3: हाँ, तो ओबामा बिन लादेन कर दीजिए ना सर, आखिर बा और सा का फर्क ही है ना, बोलचाल में इतना तो चलता है।
0: अरे बा और सा का ही फर्क नहीं, बिन लादेन का भी फर्क है। अरे भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम में बिन लादेन नहीं आता।
3: आपको कैसे मालूम कि नहीं आता? हमने तो जब जब अमेरिका पढ़ा तब तब बिन लादेन पढ़ा, यहाँ तक कि इस बार का इलेक्शन भी अमेरिका में बिन लादेन का हल्ला पीट कर किया गया सर, और जीता भी गया। माफ कीजिएगा सर, मेरा जनरल नॉलेज आपसे अच्छा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप ये बताइए कि ताज किसने बनवाया था?
3: बहन छायावती ने।
0: बहन छायावती ने? मगर वो कैसे?
3: सर यही तो है, आप अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। ताज कॉरिडोर का मामला कितना उछलता रहा पेपरों में, याद कीजिए। बेचारी छायावती ने जैसे गुनाह कर दिया जो ताज बनवा दिया, बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा उसका, वो भी कोर्ट में जाकर।
0: चलिए अब एक सवाल अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स। प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर होता है?
3: सर, जो कर आंखों के सामने वसूल किया जाए वो प्रत्यक्ष कर, और जो आंखों में धूल झोंक कर वसूल किया जाए वो अप्रत्यक्ष कर होता है।
0: वेरी गुड। एक उदाहरण देंगे इन करों का?
3: बिल्कुल सर, लूट प्रत्यक्ष कर है और जेब कटी अप्रत्यक्ष कर।
0: अच्छा, अब एक आखिरी सवाल।
3: जी।
0: एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और किसी जगह पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं, तो बताइए मेरी उम्र कितनी है?
3: सर जोड़ने दीजिए, 18 + 18 = 36। हाँ सर, 36 साल।
0: करेक्ट आंसर। मगर कैसे निकाला आपने भाई?
3: सर मेरा एक भाई है जो आधा पागल है और उसकी उम्र 18 साल है। अब आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आपकी उम्र हुई 18 + 18 मतलब 36 साल।
0: ठीक है चतुरसेन, ठीक है, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करें, तब तक हम आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं।
3: जी बेहतर सर।
0: अरे क्या किया जाए भाई, ये चतुर लड़का तो बड़ा कन्हैया है, जानबूझकर सारे सवालों के जवाब गलत दे रहा है।
2: जी सर।
0: इस आधार पर तो हमें इसकी फीस लौटानी ही होगी।
2: सर हमारे पास एक आइडिया है।
0: वो क्या?
2: सुनिए सर।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह, फिर बुलाइए बुलाइए बुलाइए बुलाइए। चतुर सेन जी, आप इस परीक्षा में उच्च अंकों से अनुत्तीर्ण हुए, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए थे 40%। लेकिन आपने महज 0% अर्जित करके अनुत्तीर्ण होने का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। हम आपका क्लेम स्वीकार करते हैं।
2: जी सर,
0: हमने मान लिया कि हम आपको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सके, इसीलिए मैं ब्याज फीस वापसी का आपका हक बनता है।
2: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: अरे इतना मच मचाइए नहीं, ये लीजिए 17,542 रुपए का आपका चेक।
3: 17,542? मगर ये तो गलत है सर, 3 सालों की पढ़ाई के दौरान कुल मिलाकर मैंने 36,000 तो केवल फीस के दिए हैं। इसके बाद 2,000 योगा के नाम पर, 7,000 कंप्यूटर के नाम पर, 4,000 स्पोर्ट्स के नाम पर लिए गए हैं, कुल मिलाकर हुए 49,000 रुपए। इस राशि पर अगर आप केवल 10% का भी ब्याज लगा लीजिए तो ब्याज हो गया 4,900, यानी कुल मिलाकर 53,900 रुपए। और इसकी जगह आप केवल 17,542 देना चाहते हैं मुझे, ये बेईमानी है सर, दिस इज चीटिंग।
0: चतुर सेन, आपने बिल्कुल सही हिसाब लगाया, इस कॉलेज ने आपको बिल्कुल सही तालीम दी है, प्रॉपर एजुकेशन। यह आपका अंतिम टेस्ट था जो 300 नंबरों का था, इसमें आपको मिले हैं 300 में से 300 नंबर। इस तरह कुल मिलाकर 600 में से आपको मिले 300 नंबर। 50% मार्क्स के साथ आप टेस्ट में उत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं और फीस वापसी का आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
3: नहीं नहीं सर, ये चीटिंग है सर, आपने तो बताया ही नहीं था सर, ये टेस्ट का हिस्सा है।
4: हाँ, और आप क्या कह रहे थे चतुर सिंह?
0: बताइए बताइए,
4: क्या कर रहे थे आप? जानबूझकर प्रश्नों के गलत जवाब दे रहे थे।
0: अभी हमारे
4: वो क्या था आखिर? वो पुरानी कहावत भूल गए आप, जैसे को तैसा।
3: सर सर सर, ऐसा ना करिए सर, मैं 17,542 पर ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ सर। लाइए सर, लाइए ये चेक मुझे दे दीजिए।
0: बिल्कुल नहीं, भुंजी भांग भी नहीं मिलेगी तुमको। गेट आउट
3: सर,
0: आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर।

तो श्रोताओं, ये था हमारा हास्य नाटक फीस। इसका आलेख तैयार किया था प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती और मैं आपको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी ममता। बाबू राम रक्षादास दिल्ली के एक ऐश्वर्यशील खत्री थे। बहुत ठाट बाट से रहते थे, बड़े बड़े अमीर उनके यहाँ आते थे। हमेशा आदर सत्कार हुआ करता था, पूरे मोहल्ले में धूम थी। रोज ही दरवाजे पर किसी न किसी बहाने इष्ट मित्र एकत्रित होते थे, टेनिस खेलते थे, हारमोनियम के मधुर स्वरों से जी बहलाते, चाय पानी होता और क्या चाहिए। समाज की भी वो बहुत सेवा करते थे। समाज सुधार के लिए दिल्ली में सोसाइटी थी, बाबू साहब उसके सेक्रेटरी थे और इस कार्य को असाधारण उत्साह से वो पूरा भी करते थे। जब उनका नौकर बीमार हुआ तो उन्होंने उसकी सेवा की थी। मिस्टर राम रक्षा का जातीय उत्साह यहीं तक सीमाबद्ध नहीं था, वे सामाजिक कुप्रथाओं और अंधविश्वास के प्रबल शत्रु थे। होली के दिनों में जबकि मोहल्ले में सर्वहारा वर्ग नशे करके गाते बजाते थे तो उन्हें बहुत शोक होता था। ये उनके प्रशंसनीय प्रयत्न थे जिन्होंने मुख्य होली के दिन दिल्ली में हलचल मचा दी थी। फाग गाने के अपराध में हजारों आदमी पुलिस के पंजे में आ गए थे। सैकड़ों घरों में मुख्य होली के दिन शोक की लहर फैल गई थी। इधर उनके दरवाजे पर हजारों पुरुष स्त्रियां अपना दुखड़ा रो रही थीं। उधर बाबू साहब के हितैषी मित्रगण अपने उदाशील मित्र के सद्व्यवहार की प्रशंसा करते थे। बाबू साहब दिन भर में इतने रंग बदलते थे कि उन पर पेरिस की परियों को भी ईर्ष्या हो सकती थी। कई बैंकों में उनके हिस्से थे, कई दुकानें थी, किंतु बाबू साहब को इतना अवकाश नहीं था कि उनकी कुछ देखभाल करते। अतिथि सत्कार एक पवित्र धर्म है, वे सच्ची देश हितेशिता की उमंग से कहा करते थे। अतिथि सत्कार आदिकाल से भारतवर्ष के निवासियों का एक प्रधान और सराहनीय गुण है। अभ्यागतों का आदर सत्कार करने में हम अद्वितीय हैं, हम इससे संसार में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। मिस्टर राम रक्षा आवश्यकताओं से भी बेपरवाह नहीं थे, वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में पूर्ण रूप से योग देते थे। यहाँ तक कि प्रतिवर्ष 2 बल्कि कभी कभी 3 वक्तृताएं अवश्य तैयार करते थे। भाषणों की भाषा अत्यंत उपयुक्त, ओजस्वी और सुंदर होती थी। व्याख्यान समाप्त होने पर उनके मित्र उन्हें गोद में उठा लेते थे और आश्चर्यचकित होकर कहते थे, वाह, आपकी भाषा में जादू है। सारांश ये कि बाबू साहब का ये जातीय प्रेम और उद्योग केवल बनावटी, सहायता शून्य और फैशनेबल था। यदि उन्होंने किसी सुद्योग में भाग लिया भी तो वो सम्मिलित कुटुंब का विरोध था। अपने पिता के पश्चात वे अपनी विधवा माँ से अलग हो गए थे। इस जातीय सेवा में उनकी स्त्री विशेष सहायक थी। विधवा माँ अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रह सकती थी, इससे बहू की स्वाधीनता में विघ्न पड़ने से मन दुर्बल और मस्तिष्क शक्तिहीन हो जाता है। बहू को जलाना या कुढ़ाना सास की आदत नहीं थी, इसलिए बाबू राम रक्षा अपनी माँ से अलग हो गए थे। इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने मात्र ऋण का विचार करके 10,000 रुपए अपनी माँ के नाम जमा कर दिए थे ताकि उसके ब्याज से उनका निर्वाह होता रहे। किंतु बेटे के इस उत्तम आचरण पर माँ का दिल ऐसा टूटा कि वो दिल्ली छोड़कर अयोध्या चली गई, तब से वहीं हैं। बाबू साहेब कभी कभी मिसेज राम रक्षा से छिपकर उनसे मिलने अयोध्या जाते हैं, किंतु वो दिल्ली आने का नाम कभी नहीं लेती। हाँ, यदि कुशल क्षेम की चिट्ठी पहुंचने में कुछ देर हो जाती है तो विवश होकर समाचार पूछ लेती थी। उसी मोहल्ले में एक सेठ गिरधारी लाल रहते थे। उनका लाखों का लेन देन था, वे हीरे और रत्नों का व्यापार करते थे। बाबू राम रक्षा के दूर के नाते में वो साड़ू भी होते थे। पुराने ढंग के आदमी थे, प्रातःकाल यमुना स्नान, गाय को अपने हाथों से झाड़ना पोछना, उनसे मिस्टर राम रक्षा का स्वभाव नहीं मिलता था। परंतु जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती तो वो सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से बेखटके मांग लिया करते थे। केवल 4 अंगुल के पत्र पर रुपया मिल जाता था, ना कोई दस्तावेज, ना स्टाम्प, ना साक्षियों की आवश्यकता।

0: गार्डन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो रहे थे तो बोल उठे, इस समय क्षमा कीजिए, फिर देख लूंगा, थोड़ा जल्दी है। गिरधारी लाल को बाबू साहब की रुखाई पर क्रोध आ गया, वे गुस्सा हो गए। आपको जल्दी नहीं है, मुझे तो है, 200 रुपए मासिक की मेरी हानि हो रही है। मिस्टर राम रक्षा ने असंतोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी, पार्टी का समय बहुत करीब था। वो बहुत विनीत भाव से बोले, भाई साहब मैं बड़ी जल्दी में हूँ, इस समय मेरे ऊपर कृपा करो, मैं कल स्वयं उपस्थित हूँगा। सेठ जी एक माननीय और धन संपन्न आदमी थे, वे राम रक्षा के इस कुरुचिपूर्ण व्यवहार पर जल गए। उन्होंने कहा, मैं इनका महाजन हूँ, इनसे धन में मान में ऐश्वर्य में बड़ा हूँ, चाहूँ तो ऐसे को तो मैं नौकर रख लूँ, इनके दरवाजे पे आऊँ और आदर सत्कार की जगह ऐसा रूखा बर्ताव। वो हाथ बांधे मेरे सामने ना खड़ा रहे, किंतु क्या मैं पान इलायची इत्र आदि से भी सम्मान करने के योग्य नहीं। वो तिनक गए और बोल उठे, अच्छा तो कल हिसाब साफ हो जाए। राम रक्षा ने भी अकड़कर उत्तर दे दिया, हो जाएगा। राम रक्षा के गौरवशील हृदय पर सेठ जी के इस बर्ताव के प्रभाव का कुछ खेदजनक असर ना हुआ। इस काठ के कुंदे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी, वो मेरा अपमान कर गया। अच्छा तुम भी इसी दिल्ली में रहते हो और हम भी यहीं हैं, निदान दोनों में गांठ पड़ गई। बाबू साहब की तबीयत ऐसी गिरी कि हृदय में ऐसी चिंता उत्पन्न हुई कि पार्टी में जाने का ध्यान जाता रहा और वो देर तक इसी उलझन में पड़े रहे। फिर सूट उतार दिया और सेवक से बोले, जा मुनीम जी को बुलाकर लाओ। मुनीम जी आए, उनका हिसाब देखा गया, फिर बैंकों का अकाउंट। किंतु जैसे जैसे इस घाटी में उतरते गए वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता गया, बहुत कुछ टटोला गया, कुछ हाथ नहीं था। अंत में निराश होकर वो आराम कुर्सी पर पड़ गए और उन्होंने एक ठंडी सांस ले ली। दुकानों का माल बिका, किंतु रुपया बकाया था वो डूब गया। कलकत्ते के व्यापारियों से जो माल मंगाया था, रुपया चुकाने की तिथि सिर पर थी और रुपया वसूल नहीं हुआ। रात भर करवटे बदलते रहे चिंता में। अब क्या करना चाहिए, गिरधारी लाल सज्जन पुरुष हैं, यदि सारा कच्चा हाल उन्होंने सुना तो अवश्य मान जाएंगे, किंतु ये कठिन कार्य है। जैसे जैसे सुबह हो रही थी वैसे ही उनका दिल बैठा जा रहा था। कच्चे विद्यार्थी की जो दशा परीक्षा के निकट आने पर होती है, वही हाल अब राम रक्षा की थी। वो पलंग से ना उठे, हाथ मुंह भी नहीं धोया, खाने को कौन कहे। इतना जानते थे कि दुख पढ़ने पर कोई साथी नहीं है, इसलिए एक आपत्ति से बचने के लिए कई आपत्तियों का बोझ नहीं उठाना पड़े। इस ख्याल से मित्रों को इस मामले की खबर तक नहीं थी। रोगी को जब जीने की आशा नहीं होती तो औषधि भी छोड़ देता है। मिस्टर राम रक्षा जब इस कुत्थी को ना सुलझा पाए तो चादर तान ली और मुंह लपेट कर सो गए। शाम को एकाएक उठकर देखा, सेठ जी के यहाँ पहुंच गए और कुछ असावधानी से बोले, महाशय मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता। सेठ जी ने भी घबरा कर बोला, क्यों, क्या हो गया। राम रक्षा ने कहा, इसलिए कि मैं इस समय दरिद्र निहंग हूँ, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, आप अपना रुपया जैसे चाहे वैसे वसूल कर लें। जब ये हाल था तो आपको उचित नहीं था कि मेरे गले पर छुरी फेरते, सेठ जी ने भी कह दिया। तब राम रक्षा ने अभिमान से कहा, मैं आपके यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ। ये कहकर मिस्टर राम रक्षा वहां से चले गए। सेठ जी ने तुरंत नालिश कर दी, 20,000 रुपए मूल, 5,000 रुपए ब्याज, डिग्री हो गई, मकान नीलाम पर चढ़ गया, 15,000 की जायदाद 5,000 में निकल गई, 10,000 की मोटर 4,000 में बिक गई, सारी संपत्ति उड़ जाने पर कुल मिलाकर 16,000 से अधिक रकम न खड़ी हुई। सारी गृहस्थी नष्ट हो गई, तब भी 10,000 के ऋणी वो रह गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली म्यूनिसिपलिटी के मेंबरों का चुनाव हुआ। सेठ गिरधारी लाल के मोहल्ले में उनके एक और प्रतिवादी थे, नाम था मुंशी फैजुल रहमान खां, बड़े जमींदार और प्रसिद्ध वकील थे। बाबू राम रक्षा ने अपनी दृढ़ता, साहस, बुद्धिमानी और मृदु भाषण में मुंशी साहब की सेवा करनी आरंभ कर दी। सेठ जी को परास्त करने का ये अपूर्व अवसर हाथ आया। वे रात और दिन इसी धुन में लगे रहते, उनकी मीठी और रोचक बातों का प्रभाव उपस्थित जनों पर बहुत पड़ता। एक बार अपने असाधारण श्रद्धा उमंग में उन्होंने कहा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मुंशी फैजुल रहमान से अधिक योग्य आदमी आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। ये वो आदमी है जिनकी गजलों पर कवि जनों में वाह वाह मच जाती है। ऐसे श्रेष्ठ आदमी की सहायता करना मैं अपना जातीय और सामाजिक धर्म समझता हूँ। अत्यंत शोक का विषय है कि बहुत से लोग इस जाति और पवित्र काम को व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाते हैं। धन और वस्तु है, श्रीमान वायसराय के दरबार में प्रतिष्ठित होना और वस्तु, किंतु सामाजिक सेवा और जाति चाकरी और चीज है। वो मनुष्य जिसका जीवन ब्याज प्राप्ति, बेईमानी, कठोरता और निर्दयता और सुख विलास में व्यतीत होता है, इस सेवा के योग्य कभी नहीं है। सेठ गिरधारी लाल इस अनियुक्तिपूर्ण भाषण पर हाल सुनकर क्रोध से आग हो गए। क्या मैं बेईमान हूं, ब्याज का धन खाता हूं, विषयी हूं, कुशल हूं, जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया, किंतु अब भी तुम मेरे हाथ में हो। मैं अब भी तुम्हें जिस तरह चाहूं नचा सकता हूं। खुशामदियों ने आग पर तेल डाल दिया। इधर राम रक्षा अपने काम में तत्पर रहे, यहां तक कि वोटिंग डे आ गया। मिस्टर राम रक्षा को उद्योग में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई। आज वो प्रसन्न थे। गिरधारी लाल को नीचा दिखाऊंगा, आज उसको पता पड़ेगा कि धन संसार में सभी पदार्थों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जिस समय फैजुल रहमान के वोट अधिक निकलेंगे और मैं तालियां बजाऊंगा, उस समय गिरधारी लाल का चेहरा देखने योग्य होगा। मुंह का रंग बदल जाएगा, हवाइयां उड़ने लगेंगी और वो मुझसे आंख न मिला पाएगा। शायद फिर मुझे मुंह ना दिखा सके। इन्हीं विचारों में मग्न राम रक्षा शाम को टाउन हॉल में पहुंच गए। उपस्थित जनों ने बड़ी उमंग के साथ उनका स्वागत किया। वोटिंग आरंभ हुई। मेंबरी मिलने की आशा रखने वाले महानुभाव अपने अपने भाग्य का अंतिम फल सुनने के लिए आतुर थे। 6 बजे चेयरमैन ने फैसला सुना दिया। सेठ जी की हार हो गई। फैजुल रहमान ने मैदान मार लिया। राम रक्षा ने तो हर्ष के मारे आवेग में टोपी हवा में उछाल दी और स्वयं भी कई बार उछल पड़े। मोहल्ले वालों को अचंभा हुआ। चांदनी चौक से सेठ जी को हटाना, मेरू को स्थान से उखाड़ना था। सेठ जी के चेहरे से राम रक्षा की जितनी आशाएं थी वो सब पूरी हो गई और उनका रंग फीका पड़ गया। खेद और लज्जा की मूर्ति बन गए। सेठ जी ने बहुत रोकना चाहा, परंतु आंखों से आंसू डबडबा ही गए। किंतु बाबू राम रक्षा बहुत देर तक इस आनंद का मजा ना लूट पाए। सेठ जी को बदला लेने के लिए बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करना पड़ा। सभा वर्जित होते ही जब बाबू राम रक्षा सफलता की उमंगों में ऐठते, मूछों पर ताव देते और चारों ओर गर्व की दृष्टि डालते हुए बाहर आए, तो दीवानी के 3 सिपाहियों ने आगे बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया। आपकी बाबू राम रक्षा के चेहरे का रंग उतर गया और सेठ जी के इस मनोवांछित दृश्य से आनंद उठाने की बारी थी। गिरधारी लाल ने आनंद की उमंग में तालियां तो नहीं बजाई, परंतु मुस्कुरा कर मुंह फेर लिया और रंग में भंग पड़ गया। मिस्टर राम रक्षा के घर पर जो ही ये खबर पहुंची, कोहराम मच गया। उनकी स्त्री पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश में आई तो रोने लगी। रोने से छुट्टी मिली तो उन्होंने गिरधारी लाल को कोसना शुरू कर दिया। मिसेज राम रक्षा बहुत देर तक अपने विचारों में डूबी रही। रात करवटे बदलने में बीत गई। गिरधारी लाल बड़ा बदमाश और घमंडी है, मेरा सब कुछ लेकर भी उसे संतोष नहीं है। इतना भी इस निर्दय कसाई ने नहीं देखा। भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों से मिलकर एक रूप धारण हुआ और क्रोधाग्नि को दहलाकर और प्रबल हो गई। ज्वालामुखी शीशे में जब सूर्य की किरणें एक होती हैं तब अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी तरह इस स्त्री के हृदय में रह रहकर क्रोध की एक असाधारण लहर उत्पन्न हो रही थी। बच्चे ने मिठाई के लिए हट किया, उस पर बरस पड़ी। मेहरी ने चौका बर्तन करके चूल्हे में आग जला दी तो उसके पीछे पड़ गई। मैं तो अपने दुखों को रो रही हूँ। इस चुड़ैल को रोटियों की धुन सवार है। और हुआ ये कि 9 बजे उससे रहा नहीं गया और उसने एक पत्र लिखकर अपने हृदय की ज्वाला ठंडी कर ली। सेठ जी, तुम्हें अब अपने धन के घमंड ने अंधा कर दिया है, किंतु किसी का घमंड इसी तरह सदा नहीं रहता। कभी न कभी सिर अवश्य नीचा होता है। अफसोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे को पकड़वाया, मैं वहां मौजूद नहीं थी, नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूल गए हो, मैं उसी समय तुम्हारा नशा उतार देती। एक स्त्री के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर मिलेगा। मेरा कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब तुम निर्वश हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा। सेठ जी पर यह फटकार पड़ी तो वो क्रोध से आग बबूला हो गए। ये भी ध्यान नहीं रहा कि एक सताई हुई स्त्री की ये मानसिक दुर्बलता का विचार है। उसकी धनहीनता विवशता पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई। मरे हुए को मारने का उपाय वो फिर सोचने लगे। तीसरे दिन सेठ गिरधारी लाल पूजा के आसन पर बैठे। मेहरा ने आकर कहा, सरकार कोई स्त्री आपसे मिलने आई है। सेठ जी ने कहा, कौन स्त्री? नौकर ने कहा, सरकार मुझे क्या मालूम, लेकिन है कोई भले मानुष, रेशमी साड़ी पहने हैं, हाथ में सोने के कड़े हैं, पैरों में टाट के स्लीपर हैं, बड़े घर की स्त्री जान पड़ती है। यूं तो साधारण सेठ जी पूजा के समय किसी से नहीं मिलते, कोई भी कितना ही काम क्यों ना हो, ईश्वर उपासना उनके लिए जरूरी है। किंतु ऐसी दशा में जबकि किसी बड़े आदमी की स्त्री उनसे मिलने आई है तो वो थोड़ी देर के लिए पूजा में विलंब करना उचित समझ बैठे। ऐसा विचार करके वो बोल दिए, बुला लाओ। जब स्त्री आई तो सेठ जी स्वागत के लिए खड़े हो गए। अत्यंत कोमल वचनों में, कारुणिक शब्दों में बोले, माता कहाँ से आना हुआ? जब ये उत्तर मिला कि वो अयोध्या से आई हैं, तो आपने उन्हें फिर एक बार दंडवत किया। चीनी और मिश्री से भी अधिक मधुर और नवनीत से भी अधिक चिकने शब्दों में कहा, अच्छा आप श्री अयोध्या से आई हैं, आपकी नगरी का क्या कहना, देवताओं की पूरी है, बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए, और यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ माते? तब उस स्त्री ने उत्तर दिया, घर तो मेरा यही है। सेठ जी का मुख पुनः मधुरता का चित्र बन गया। वो बोले, अच्छा तो मकान आपका यही इसी शहर में है, तो आपने माया जंजाल को त्याग दिया। ये तो मैं पहले ही समझ गया था, ऐसी पवित्र आत्माएं संसार में बहुत थोड़ी हैं, ऐसे देवियों के दर्शन दुर्लभ होते हैं, आपने मुझे दर्शन दिया, बड़ी कृपा की। मैं इस योग्य नहीं जो आप जैसी विदुषियों की सेवा कर सकूं, किंतु जो काम मेरे योग्य हो, जो कुछ मेरे लिए हो सकता हो, उसे करने के लिए मैं सब भांति तैयार हूं। यहां सेठ साहूकार ने मुझे बदनाम कर रखा है, मैं सबकी आंखों में खटकता हूं। इसका कारण सिवा इसके और कुछ नहीं कि लोग जहां लोभ का ध्यान रखते हैं वहां मैं भलाई रखता हूं। यदि कोई बड़ी अवस्था का वृद्ध मनुष्य मुझसे कुछ कहने सुनने के लिए आता है तो विश्वास मानिए, मुझसे उसका वचन टाला नहीं जाता। कुछ बुढ़ापे का विचार, कुछ उसके दिल टूट जाने का डर, कुछ ये ख्याल कि कहीं ये विश्वासघातियों के फंदे में ना फंस जाऊं, मुझे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। मेरा सिद्धांत है कि अच्छी जायदाद और कम ब्याज। किंतु इस प्रकार बातें आपके सामने करना व्यर्थ है माता जी, आपसे तो घर का मामला है। मेरे योग्य जो काम हो उसके लिए मैं सिर आंखों से तैयार हूं। तब वृद्ध स्त्री ने कहा, मेरा काम आप ही से हो सकता है। सेठ जी ने तो प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, आज्ञा दीजिए। स्त्री ने कहा, मैं आपके सामने भिखारिन बनकर आई हूं, आपको छोड़कर कोई मेरा सवाल पूरा कर ही नहीं सकता। सेठ जी ने भी तत्पर होकर कहा, कहिए कहिए। तब स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, आप राम रक्षा को छोड़ दीजिए। सेठ जी के मुंह का रंग उतर गया, सारे हवाई किले जो अभी अभी तैयार हुए थे सारे गिर पड़े। उसने मेरी बहुत हानि की है, उसका घमंड तोड़ डालूंगा तब छोड़ूंगा, सेठ जी ने बोल दिया। तब स्त्री ने कहा, तो क्या कुछ मेरे बुढ़ापे का, मेरे हाथ फैलाने का, कुछ अपनी बड़ाई का विचार ना करोगे? बेटा ममता बुरी होती है, संसार से नाता टूट जाए, धन जाए, धर्म जाए, किंतु लड़के का स्नेह हृदय से नहीं जाता। संतोष सब कुछ कर सकता है, किंतु बेटे का प्रेम माँ के हृदय से नहीं निकल सकता। इस पर हाकिम का, राजा का, यहाँ तक कि ईश्वर का भी बस नहीं है। मुझ पर तरस खाओ, मेरे लड़के की जान छोड़ दो बेटा, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा, मैं जब तक जीऊँगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूँगी। सेठ जी का हृदय कुछ पसीज गया। पत्थर की तह में पानी रहता है, किंतु तत्काल ही इन्हें मिसेज राम रक्षा के पत्र का ध्यान आ गया। तो वो बोल उठे, मुझे राम रक्षा से कोई उतनी शत्रुता नहीं है, यदि उन्होंने मुझे ना छेड़ा होता तो मैं ना बोलता। आपके कहने से मैं अब भी उनका अपराध क्षमा कर सकता हूँ, परंतु उनकी बीवी साहिबा ने जो मुझे पत्र भेजा है उसे देखकर मेरे शरीर में आग लग गई है, दिखाऊं आपको? राम रक्षा की माँ ने पत्र लेकर पढ़ लिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो भीगी आंखों से बोली, बेटा इस स्त्री ने मुझे भी दुख दिया है। उसने मुझे देश से निकाल दिया। उसका मिजाज और जुबान उसके वश में नहीं है, किंतु इस समय उसने जो गर्व दिखाया है उसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम उसे भुला दो। तुम्हारा देश देश में नाम है बेटा। ये नेकी तुम्हारे नाम की और भी फैल जाएगी। मैं तुमसे प्रण करती हूँ कि सारा समाचार राम रक्षा से लिखवाकर किसी अच्छे समाचार पत्र में छपवा दूंगी। राम रक्षा मेरा कहना नहीं टालेगा। तुम्हारे इस उपकार को वो कभी नहीं भूलेगा बेटा। जिस समय ये समाचार संवाद पत्रों में छपेंगे उस समय हजारों मनुष्यों को तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा होगी। सरकार में तुम्हारी बड़ाई होगी और मैं सच्चे हृदय से कहती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें कोई ना कोई पदवी जरूर मिल जाएगी। राम रक्षा की अंग्रेजों से बहुत मित्रता है, वे उसकी बात नहीं टालेंगे। सेठ जी के हृदय में अब गुदगुदी हो गई। यदि व्यवहार में वो पवित्र और माननीय स्थान प्राप्त हो जाए जो माता जी कह रही हैं, जिसके लिए हजारों खर्च किए, हजारों डालियां दी, हजारों अनुनय विनय की, हजारों खुशामदे की, खानसामों की झिड़कियां सही, बंगलों के कई चक्कर लगाए, तो इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार में खर्च कर सकता हूँ। निसंदेह मुझे इस काम में राम रक्षा से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, किंतु इन विचारों को प्रकट करने से क्या लाभ। उसने कहा, माताजी मुझे नाम नमूद की बहुत चाह नहीं। बड़ों ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। मुझे तो आपकी बात का ख्याल है। पदवी मिले तो लेने से इनकार नहीं और ना मिले तो तृष्णा नहीं, परंतु ये तो बताइए कि मेरे रुपयों का क्या प्रबंध होगा। आपको मालूम होगा कि मेरे 10,000 रुपए आते हैं, वो कैसे मिलेंगे। तब राम रक्षा की माँ ने कहा, तुम्हारे रुपए की जमानत मैं करती हूँ। ये देखो बंगाल बैंक की पासबुक है, इसमें मेरा 10,000 रुपया जमा है। उस रुपए से तुम राम रक्षा को कोई व्यवसाय करा दो। तुम उस दुकान के मालिक रहोगे, राम रक्षा को उसका मैनेजर बना दो। जब तक वो तुम्हारे कहे पर चले निभाना, नहीं तो दुकान तुम्हारी। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। मेरी खोज खबर लेने वाला ईश्वर है। मेरा राम रक्षा अच्छा रहे, इससे अधिक मुझे और नहीं चाहिए। ये कहकर पासबुक सेठ जी को दे दी। माँ के अतः प्रेम ने सेठ जी को विहल कर दिया। पानी उबल पड़ा और पत्थर के नीचे ढक गया। ऐसे पवित्र दृश्य देखने के लिए जीवन में कम ही अवसर मिलते हैं। सेठ जी के हृदय में परोपकार की लहर उठ गई, आंखें डबडबा आई। जिस प्रकार पानी के बहाव से कभी कभी बांध टूट जाता है, उसी प्रकार परोपकार की एक उमंग ने स्वार्थ और माया के बांध को तोड़ दिया। वे पासबुक वृद्ध स्त्री को वापस देकर बोले, माता जी ये अपनी किताब ले लो, मुझे अब अधिक लज्जित ना करो। ये देखो राम रक्षा का नाम वही से उड़ा देता हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना सब कुछ पा लिया। आज तुम्हारा राम रक्षा तुमको मिल जाएगा। इस घटना के 2 वर्ष बाद टाउन हॉल में बड़ा जलसा हुआ। बैंड बज रहा था, झंडियां और ध्वजाएं वायुमंडल में लहरा रही थी। नगर के सभी माननीय पुरुष उपस्थित थे। एकाएक मुश्की घोड़ों की एक फिटन अहाते में प्रवेश हुई। सेठ गिरधारी लाल बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। उनके साथ फैशनेबल नवयुवक अंग्रेजी सूट पहने मुस्कुराते हुए उतरा। ये मिस्टर राम रक्षा थे। वे अब सेठ जी की एक खास दुकान के मैनेजर हैं। केवल मैनेजर ही नहीं, किंतु उनके मैनेजिंग प्रोप्राइटर ही समझ लीजिए। दिल्ली दरबार में सेठ जी को राय बहादुर का पद मिला है। आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे और सूचित करेंगे कि नगर के माननीय पुरुषों की ओर से सेठ जी को धन्यवाद देने के लिए ये बैठक हुई है। सेठ जी की ओर से धन्यवाद का वक्तव्य मिस्टर राम रक्षा करेंगे। जिन लोगों ने उनकी वक्तृताएं सुनी वो बहुत उत्सुकता से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। बैठक समाप्त होने पर सेठ जी राम रक्षा के साथ अपने भवन पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज वही वृद्धा उनसे मिलने आई है। सेठ जी दौड़कर राम रक्षा की माँ के चरणों से लिपट गए। उनका हृदय इस समय नदी की भांति उमड़ रहा था। राम रक्षा एंड फ्रेंड्स नामक चीनी बनाने का कारखाना अब बहुत उन्नति पर है। राम रक्षा अब भी उसी ठाट बाट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु पार्टियां कम देते हैं। दिन भर में 3 से अधिक सूट नहीं बदलते। वे अब उस पत्र को जो उनकी स्त्री ने सेठ जी को लिखा था संसार की एक बहुत अमूल्य वस्तु समझते हैं और मिसेज रामरक्षा को भी अब सेठ जी के नाम को मिटाने की अधिक चाह नहीं है, क्योंकि अभी हाल में जब लड़का पैदा हुआ तब मिसेज रामरक्षा ने अपना सुवर्ण कंकन धाय को उपहार दिया था और मनो मिठाई बांटी थी। ये सब हो गया, किंतु वो बात जो अब होनी चाहिए थी नहीं हुई। रामरक्षा की माँ अब भी अयोध्या में रहती है और अपनी पुत्र वधु की सूरत कभी नहीं देखना चाहती।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: गली में मारे फेरे, पास आने को मेरे।
3: मैं हूँ सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन सुनंदा शर्मा का, और उसके बाद प्रस्तुति दी जाएगी सितार वादन की अलीफ लैला द्वारा। तो आइए पहले आपको सुनवाते हैं गायन सुनंदा शर्मा का।
1: थोड़ी सी दो तीन लाइन्स में ये बताना चाहूंगी, बचपन हिमाचल में था, पिताजी से शिक्षा ली और पंजाब के गुणियों से मैंने बचपन से सीखा। कुछ बंदिशें थी जो मैंने बचपन से उनसे सीखी थी। जब मैं बनारस में अप्पा जी के पास, श्रीमती गिरजा देवी की जी के पास गई, तो वो जब शिक्षा शुरू हुई तो उन्होंने बोला, बेटा एक बंदिश है, उसके बोल थोड़े पंजाबी के हैं लेकिन अपभ्रंश हो गया है। तो उन्होंने वो बंदिश मुझे सिखानी शुरू की। मैंने कहा, अप्पा जी ये तो मैंने बचपन में सीखी है, तो कैसे बंदिशें ट्रैवल करती हैं? वो पंजाब की बंदिश थी और बनारस में गाई जाती थी। उन्होंने बोला, हमारे गुरुजी बहुत पुराने टाइम में कहीं से सीखे थे। तो क्यों आपा जी के पास बहुत रेयर चीज़ें थी जिसमें ख्याल और क्लासिकल और सेमी क्लासिकल, जिसमें ख्याल, टप्पा, टप ख्याल, गुल, बैंत, नक्श, रुबाई, कौल, कलवाना, ये सब कितनी रेयर चीज़ें, जो एक एक एक एक गीत धरू, एक एक एक एक चीज़ें थी जो आपा जी के पास थी, और प्रसाद स्वरूप मुझे उनसे मिली हैं। तो मैं वो बंदिश से शुरू करूंगी जो मेरे लिए बड़ा अचरज का विषय था कि कहाँ मैं पंजाब में ये सीख रही थी और फिर मैं इसको गा भी नहीं रही थी। फिर अप्पा जी के पास ये थोड़ा सीखा जाकर, तो फिर अप्पा जी ने बोला, अच्छा अच्छा तो इसके बोल ये हैं। और उनका बड़प्पन देखिए, कुछ भी शब्द होते थे, अरे पंजाबी है तो इसका सही क्या होगा, तो पूछती थी सबसे। तो इतना गुरु होने के बावजूद भी कई बार बोलती थी, जाओ अपने नाना जी से पंजाबी के पुराने शब्द पूछ के लाओ या पंजाब के लोगों से। तो ये खोजी प्रकृति उनकी थी। तो मैं उसी एक बंदिश से शुरू करूंगी और उसके बोल भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस एक बार फिर, तबले पर जो मेरे साथ संगत करेंगे वो वैसे तो डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर, पंजाब घराने के बहुत गुणी कलाकार डॉक्टर जयशंकर, एक बार स्वागत करें। और भोपाल के ही हमारे माजिद भाई मेरे साथ संगत करेंगे, माजिद खान साहब हारमोनियम पर। भोपाल की ही दो बच्चियां मेरे साथ तानपुरे पे संगत करेंगी, अंतरा, तो मेरे साथ पहले भी बैठी हैं अंतरा, और आप अश्लेषा। और मैं सुनंदा शर्मा, आपका बड़ों का आशीष और छोटों से स्नेह चाहते हुए मैं इस सफ़र को शुरू करती हूँ। इसमें मैंने पहला राग जो चुना है, जो मैंने कहा ना मेरे अचरज का विषय था, राग भीम पलासी की ये बंदिश, जिसके बोल हैं, साडे मन भाव दियाँ दिलबर यार सज्जन दियाँ रमज़ां। हमारे दिल को मेरा दिलबर और जो यार है, मेरा रब, मेरा ईश्वर, मेरा प्रेमी, मेरा मुर्शिद, उसकी हर बात मेरे दिल को अच्छी लगती है। त्रिंजन एक फेस्टिवल होता है नॉर्थ में, त्रिंजना दे विच नचन सहेलियाँ, एक रोवण एक गाव दियाँ। त्रिंजनों में सहेलियाँ नाच रही हैं, कोई कढ़ाई कर रही है, कोई गा रही है, और कोई नाचते हुए, कोई रोते हुए उसको याद कर रही है। तो सब लोग अपने पिया को याद करते, उस ईश्वर को याद कर रहे हैं। साडे मन भाव दियाँ, हमारे दिल को बहुत भाता है ये, उस दिल भर यार की सारी बातें। और उसी में इसी कड़ी में मैं फिर बनारस घराने की एक बहुत ही पुरानी बंदिश जो मैंने कभी नहीं गाई, बोलन लागी कोयलिया अमुआ की डारी, बहुत ही रेयर कंपोजिशन है, आपको सुन के मालूम पड़ेगा। तो मैं इसी राग में दो बंदिशें पहले आपको सुनाती हूँ, राग भीम पलासी में थोड़ा सा आलाप और ये बंदिशें। थैंक यू।

गाते हैं, पहले मैं ठुमरी सुनाती हूँ। राग मिश्र खमाज की ये ठुमरी बहुत पुरानी ठुमरी है बनारस की। राग मिश्र

0: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत भारती में गायन सुनंदा शर्मा का और सितार वादन का आनंद लिया, जिसकी प्रस्तुति दी अलीफ लैला ने। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
0: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: संध्या वंदन, आइए सुनवाते हैं आपको सबसे पहले कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 9वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद, भार्गव शौनक, देवता हैं
2: नी होता होत्री शदने विदानस्त्वेशो दीदिवाम असदत्सु दक्षः अदब्धव्रत प्रमतिर्वसिष्ठः सहस्रम्भरः शुचिजिह्वो अग्निः। हे अग्निदेव, होता, मेधावी, प्रदीप्त, पोषक, बलशाली, तेजस्वी, उत्तम बल से युक्त, नियमों पर आरूढ़, आश्रयदाता, हजारों का भरण पोषण करने में समर्थ तथा सत्यवक्ता हैं, ऐसे अग्निदेव होता के सदन में प्रतिष्ठित हों। त्वं दूतस्त्वं नः परस्पास्त्वं वस्य आवृषभ प्रणेता अग्ने तोकस्य नस्तने तनूना मप्रयुच्छन्दीद्य द्वो वधि गोपाः। हे बलशाली अग्निदेव, आप ही हमारे दूत तथा आप ही हमारे रक्षक हैं, आप धन प्रदाता हैं, अतः हमारी संतति को

0: पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत।